ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 सितंबर 2026। सुबह के 5:53 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। 6:02 पर समय रहेगा प्रोग्राम सुप्रभात का, लेकर आपके साथ रहेंगी भावना। सात बजकर 2 मिनट पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आपके साथ रहेंगी नेहा बेलीवाल। 8 बजे आप हिंदी में मुख्य समाचार सुनेंगे और 8:02 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपके साथ भावना रहेंगी। 9 बजे आप हिंदी में मुख्य समाचार सुनेंगे और 9:02 पर समय रहेगा प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने। 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक लेकर आपके साथ रहेंगी अदिति बिस्ट।

11 बजे समय रहेगा हिंदी में मुख्य समाचारों का और 11:02 पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स का समय रहेगा और आपके साथ रहेंगी बबीता। 12 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में न्यूज हेडलाइंस और 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक लेकर आपके साथ रहेंगी अदिति।

0: कमल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, यह 102.6 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो। पेश है इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चौथा भारत जर्मन पर्यावरण फोरम आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज दो सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। जल शक्ति मंत्रालय सहकारी संघवाद को मजबूत करने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देने और केंद्र राज्य के घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से परिणामों में तेजी लाने के लिए आज नई दिल्ली में दो दिन के विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरण

171 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। नेपाल में बाढ़ से अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मृत्यु, 4,247 से अधिक लोग लापता, उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कल हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हादसे में 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हुई। दुर्घटना पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। मणिपुर सरकार ने जनगणना कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में मणिपुर की वर्तमान स्थिति का आकलन करने संबंधी एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि और 2,911 लोगों की मृत्यु। और खेल की खबरों में, फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ये थे इस वक्त के मुख्य समाचार। नमस्कार।

0: वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी लेकर हाजिर है कार्यक्रम सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सितंबर की पहली सुबह अब अपने चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि सुबह पहली तारीख की ये जो सुबह है वो हो चुकी है और हमारा आपका साथ भी शुरू हो चुका है। ये है गुड मॉर्निंग और ये 1 सितंबर 2026 मंगलवार का दिन है। मंगल में हूँ इसी मनोकामना के साथ आज एक नई महीने का शुभारंभ हो रहा है। सितंबर की पहली सुबह और सुबह के ठीक 6 बजे का ये खूबसूरत वक्त, 6:04 हो रहे हैं, जहाँ रात पीछे छूट रही है और दिन धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है। दिल से दिल तक बातें होने वाली हैं और आज की पहली बात बहुत सीधी सी मैं आपसे करने वाली हूँ। हमारा मन आखिर लगे तो लगे कहाँ, बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है क्योंकि मन कई जगह लग रहा होता है और कभी फ़ोन की घंटी उसे खींच ले जाती है, कभी कोई मैसेज, कभी कोई ईमेल और कभी कोई काम की याद, और कभी बिना किसी वजह के हमारे मन में एक ही जगह से दूसरी जगह हमारा मन ये भटकता रहता है है ना। मन चंचल होता है, हर जगह कहीं ना कहीं लगा ही रहता है और हम कहते हैं कि हम एक साथ कई काम कर लेंगे, मल्टीटास्किंग कर लेंगे, लेकिन आखिरकार क्या होता है दोस्तों, एक काम शुरू किया, बीच में दूसरा याद आ गया और दूसरे पर गए तो तीसरे का नोटिफिकेशन आ गया और दिन खत्म होने लगता है। काम बहुत किया लेकिन पूरा हुआ या नहीं हुआ, आज सुप्रभात में बात यही होगी। ध्यान को सही दिशा कैसे दें, मन को एक जगह टिकाएं कैसे और सबसे जरूरी अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाएं कैसे। तो चलिए सितंबर की पहली सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने मन की। मन जो बहुत जगह आजकल लगा रहता है, एक जगह एकाग्र हो ही नहीं पाता। तो कभी कभी आपने गौर किया है कि हम जहाँ बैठे होते हैं हमारा मन वहाँ नहीं होता है। ऐसा हो रहा होता है कि सामने वाला बोल रहा होता है, आप नज़रें तो वहीं हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है, मन कहीं और होता है। ऐसा क्यों होता है? चाय हाथ में है, मन ऑफिस में है, ऑफिस में है तो मन घर में है, घर पर है तो फ़ोन में है, और फ़ोन हाथ में है तो पता नहीं दुनिया हमारे सामने खुली हुई है। तो आज सुबह एक छोटा सा सवाल ना मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इस वक्त क्योंकि सुबह हो चुकी है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका मन कहाँ है? क्या वे आज के कामों की सूची बना रहा है? क्या वे किसी पुरानी बात में उलझा हुआ है या आने वाले दिनों की चिंता कर रहा है? या फिर क्या वे सचमुच इस सुबह के साथ है? सोचिए। अगर आप चाहें ना तो बस एक काम कीजिए, बस एक गहरी सांस ले लीजिए और अपने आप से कहिए, अभी मैं सिर्फ इस पल में हूँ, बस यही हूँ। और 102.6 FM पर भावना को सुन रहा हूँ सुप्रभात में, या सुन रही हूँ। क्योंकि ध्यान लगाने का मतलब ना ये नहीं है कि दुनिया की सारी आवाज़ें बंद हो जाएं। ध्यान लगाने का

मतलब है कि उन तमाम आवाजों के बीच ये तय करना कि मुझे सुनना आखिर कैसे है, यही बात होती है। और इसी वजह से आपका मन एकाग्र कैसे हो और मन में कैसे एक चित आप बात जो है वो सोच सकें, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो बस सुबह का ये वक्त है तो इसी पल में रह लीजिए, और साथ ही साथ ये जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स का सिलसिला है ना, खूबसूरत गानों का, वो सुनते रहिए। इस बेहतरीन दिन की शुरुआत कीजिए। मंगलवार का दिन है, मंगलमय ये दिन हो, और एक नए महीने की शुरुआत हो चुकी है, पहली तारीख है, और बहुत सारे गोल्स आपको बनाने हैं और उनको अचीव करना है। तो बस इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम सुप्रभात।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि हम ये जो मन हमारा भटकता रहता है ना, उसको कैसे हम एकाग्र करें, कैसे फोकस करें। पता है टेक्निकली क्या होता है? टेक्निकली तो हम को लगता है कि हम बहुत सारे एक साथ काम कर सकते हैं और एक ही वक्त में, और इसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं। और आजकल हो भी यही रहा है कि हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग से ये होता है कि बहुत सारे काम एक साथ हम कर पाते हैं। तो टेक्निकली तो हम एक साथ दो काम कर सकते हैं, खाना बनाते हुए टीवी देखना या फिर फ़ोन पर बात करते हुए किसी ईमेल का जवाब देना। स्वाभाविक है कि ये बहुत संभव है। जो चीज़ संभव नहीं है ना, वो ये है कि एक समय में हम दो कामों को पूरी एकाग्रता के साथ नहीं कर सकते हैं। टीवी देखते हुए ईमेल का जवाब देना गौण हो जाता है, ईमेल का जवाब देते समय टीवी देखना, और स्थिति में मन एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता रहता है, और यही बदलाव हमारी ऊर्जा और कीमत दोनों की परीक्षा लेता है ना। होता है ना कभी कभी ऐसा कि आप कर तो मल्टीटास्किंग रहे हैं, बहुत सारे काम आप एक समय पर कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आपकी जो एनर्जी है और आपकी जो कैपेसिटी है और टाइम है, कहीं ना कहीं वो सैक्रिफाइस होता है, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होता है इन सब मल्टीटास्किंग में। और होता क्या है कि कभी कभी इतने मल्टीटास्किंग करते करते हमें बहुत सारा स्ट्रेस भी हो जाता है, और मन में एक चिंता होने लग जाती है कि क्या ये इतने सारे काम जो हम एक समय पर कर रहे हैं वो सब सफल हो पाएंगे, उसमें मैं जितनी फोकस लगाने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। क्योंकि मल्टीटास्किंग में आप बहुत सारे काम एक समय पर कर रहे होते हैं, और किसी ईमेल के बीच फ़ोन आ जाए या फिर किसी अन्य कारण से काम रुक जाए, तो दोबारा फिर उसी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में लौटना में टाइम लगता है, समय लगता है। और अगर साइंटिफिक भाषा में इसको देखें तो इसको स्विचिंग कास्ट कहते हैं। पता है स्विचिंग कास्ट क्या होता है? कि उस व्यवधान को कहते हैं, यानी कि उस रुकावट को कहते हैं जो तब पैदा होता है जब हम अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे काम पर लगाते हैं। तो हर बार ईमेल देखने के साथ आप बहुत सारे काम जब साथ कर रहे हैं तो उसको स्विचिंग कास्ट कहते हैं, क्योंकि फिर एक समय में मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो वापस लाने में समय लगता है। और यही वजह है कि हम एक जगह कभी भी एकाग्र हो ही नहीं पाते। तो होता क्या है कि आपको रास्ते चुनने पड़ेंगे, और वो रास्ते आप ही के पास हैं। तो कैसे वो रास्ते चुन सकते हैं, बताऊंगी आपको कि कैसे अपने समय को बांटें और कैसे अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें। क्योंकि जब तक आपने अपने आप के बारे में नहीं सोचा ना, फिर तो ये मल्टीटास्किंग का क्या ही काम है ना। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो मेरे साथ, यानी भावना के साथ। कार्यक्रम है सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: तो दोस्तों, हमारे बीच क्या बातचीत हो रही है? हमारे बीच बातचीत हो रही है, बताइए, मन हमारी तरफ है या नहीं है आपका? या अभी भी आप चार जगह अपना मन लगाए बैठे हैं? हालांकि ये सुबह का समय होता है और बस खिड़कियां खोल दीजिए, ठंडी ठंडी हवा आने दीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए। और कई लोग तो इस समय एक्सरसाइज को निकल चुके होंगे और हेडफोन्स पहन के हमें सुन रहे होंगे, और कई बस अभी अभी अपना उन्होंने आँखें खोली होंगी और हमारे साथ इस सुबह को इन्जॉय कीजिए। हम बात कर रहे हैं कि ये जो मन बहुत जगह भटक रहा है ना आजकल हमारा, उसको हम एकाग्र कैसे करें, फोकस कैसे करें? तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने रास्ते ना खुद ही तलाशने होंगे। सबसे पहले तो आप अपने फेवरेट हैं, है ना? ये है ना, ये एक मूवी में भी डायलॉग है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो आप अपने फेवरेट हैं मान लीजिए ना, तो प्रायोरिटाइज कर लीजिए फिर अपने आप को। प्राथमिकताएं आपको खुद तय करनी होंगी, है ना, कि कैसे इनको अपनी जो डिमांड्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको आप कैसे प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि पता है क्या होता है मेरे दोस्त, कि हर काम ना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार हम ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों को एक ही कतार में खड़ा कर देते हैं। चलो आ जाओ, काम भी आ जाओ, गैर ज़रूरी काम भी आ जाओ, आउटकम क्या होता है दोस्त? ध्यान बट जाता है। और यही होता है कि हम जो अचीव करना चाहते हैं ना, वो हम कर ही नहीं पाते। वो जो टाइमलाइन हमने सेट करी होती है कि इस टाइम मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा, नहीं हो पाता। तो अगर आज मुझे सिर्फ आप एक महत्वपूर्ण काम करना हो तो आप क्या करेंगे? बस वही एक काम, है ना, एक काम को करके देखिए, शायद उसमें ज़्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी निकली आपकी। और अपने जो प्रगति है ना, उसको मापिए, वो आप खुद ही माप सकते हैं कि आपकी ग्रोथ कैसी चल रही है। हम अक्सर पूछते हैं कि मेरा काम कितना बाकी है। कभी कभी आपने ये पूछ कर देखा कि मैं अब कितना आगे आ चुका हूँ? हाँ, छोटी प्रगति भी प्रगति है मेरे दोस्त। और साथ ही क्रिया पर ध्यान दीजिए, सफलता कैसे दिखेगी, लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा, इन सब के बारे में हम सोचने से बेहतर है कि अगला छोटा कदम क्या है उसे कीजिए। क्योंकि छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। दोस्त एक बात बताऊं, बड़े परिणाम ना अक्सर छोटे छोटे फोकस्ड एक्शन से ही बनते हैं। तो अगर छोटे कामों पर फोकस किया जाए मेरे दोस्त आज से, तो शायद जो आपको लग रहा है कि मैं वो अचीव ही नहीं कर पा रहा, इतने समय से मैं ट्राई कर ही जा रहा हूँ, मेहनत कर ही जा रहा हूँ, इतने सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो चाहता हूँ वो हो ही नहीं रहा, तो शायद उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपने बहुत सारे काम एक साथ पकड़े हुए हैं और आप उन सारे कामों को एक साथ अचीव करना चाहते हैं और हो कुछ भी नहीं रहा। तो चलिए फिर आज से थोड़ा सा चेंज ला के देखते हैं। पहली तारीख है और पहली तारीख में लेट्स ट्राई वाला कि छोटे काम पर फोकस करेंगे और प्रायोरिटाइज करेंगे और खुद से प्यार ज़रूर करेंगे। क्यों, है ना, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि मन को एकाग्र कैसे करें। यहाँ एक कहानी भी आपको सुनाती हूँ। पता है क्या हुआ कि एक बार एक गर्भवती शेरनी शिकार की तलाश में भेड़ों के एक झुंड पर झपट गई। झपटने के उत्साह और भागदौड़ में शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और खुद उसने दम तोड़ दिया। वह नवजात शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड के बीच बड़ा होने लगा। और क्या हुआ कि वे भेड़ों के साथ रहता, उन्हीं की तरह घास खाता और मिमियाना भी सीख गया, और वे खुद को पूरी तरह से एक भेड़ी मानता था। वे शेर का बच्चा बड़ा डरपोक था, क्योंकि उसने भेड़ों से केवल डरना और भागना ही सीखा था। तो एक

क्या हुआ कि एक बूढ़े शेर ने उस भेड़ों के झुंड पर हमला किया। उसने देखा कि झुंड के बीच एक जवान शेर भी भेड़ों की तरह डर से मिमिया रहा है। ये देखकर बूढ़े शेर को बड़ा अचरज हुआ। उसने भेड़ों का पीछा छोड़ा और उस जो युवा शेर था ना, उसको दबोच लिया। तो क्या हुआ, वो जो युवा शेर था वो कांपने लगा। गिड़गिड़ाता हुआ बोला बूढ़े शेर से, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, मैं तो बहुत छोटी सी भेड़ हूँ। बूढ़ा शेर मुस्कुराया और उसने उसे खींचते हुए पास की एक साफ पानी की झील के किनारे उसे ले गया। साफ पानी के एक जो झील था ना, उसके किनारे ले गया। उसने युवा शेर से कहा, रोना बंद करो और इस पानी में हम दोनों के चेहरे को देखो। तो वो देखने लगा, अपना चेहरा भी उसने देखा। और उसके बाद क्या हुआ कि युवा शेर ने पानी में अपनी परछाई देखी। उसने देखा कि उसका चेहरा भेड़ जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उस बड़े शेर जैसा है। उसी पल उसके अंदर एक गहरी समझ कौन थी। उसे एहसास हुआ कि वह भेड़ की संगत में रहने के कारण खुद की पहचान ही भूल बैठा था। उसकी मिमियाहट गायब हो गई और उसने अपनी जिंदगी की ना पहली दहाड़ लगाई, और जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। तो हम में से ना ज्यादातर लोग उस शेर के बच्चे की तरह ही जी रहे हैं। समाज, डर और दूसरों की धारणाओं के बीच रहते रहते हम ये भूल ही जाते हैं। वी मोस्टली फॉरगेट कि हमारे अंदर जो है ना असीम क्षमता है, बहुत कैपेसिटी है, बहुत कैपेबिलिटी है और बहुत सारे दिव्यता छिपी है। बस अपने आप को उस शीशे में देखने की ज़रूरत है। फिर देखिए, तो अपनी पहचान तो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वही जो एकाग्रता है, वही जो मन बहुत जगह भटक रहा है, वो अपनी पहचान ही भूल गया है। सो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को तलाशिए और उसे निखारिए। सुनते जाइए 102.6 FM रेनबो, दिल से दिल तक। सुप्रभात।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: तो दोस्त, सुबह का वक्त ना सिर्फ जल्दी उठने का नहीं है, सुबह की शुरुआत हम किस चीज़ से करते हैं ये बड़ा ही मायने रखती है। अगर दिन की शुरुआत ना ईमेल नोटिफिकेशन या दूसरी प्रायोरिटी से होगी तो हो सकता है कि दिन का सबसे अच्छा जो मेंटल एनर्जी वाला हिस्सा होता है ना वो दूसरों के काम में चला जाए। इसलिए आज सितंबर की पहली सुबह एक छोटा सा बदलाव करके देखते हैं। सुबह का सबसे एक्टिव समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दीजिए, और अगर आपका काम सुबह नहीं हो पाता तो अपनी दिनचर्या में वह समय ज़रूर पहचानिए जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। उस समय खुद को सबसे ज़रूरी काम के लिए बचा कर रखिए, क्योंकि समय सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, समय के साथ हमारी ऊर्जा भी बदलती जाती है। तो इसी ऊर्जा को बनाए रखें, एनर्जी मेंटेन रखें, और अगर और एनर्जेटिक होना है तो फिर तो फोकस चाहिए चाहिए। मन को एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मन भटकता रहेगा तो फिर आप वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। सुनते रहिए सुप्रभात।

और इसी के साथ वक्त हो चला है अब आपसे अनुमति लेने का। सुनते रहिए कार्यक्रम सुप्रभात के साथ, और बहुत सारे क्रम आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर नेहा आ चुकी हैं स्टूडियोज़ में, और आप अपने मन को एकाग्र रखिए और इस बेहतरीन सुबह को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बेहतरीन सुबह नई एनर्जी लेके आई है, नई पॉजिटिविटी लेकर आई है, और यूं ही 102.6 एफएम के साथ आपका साथ हमारा साथ चलता रहे। बाय बाय, सी यू इन माना।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। पेश है एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमेरिका के एशविले में आयोजित हो रही 2 दिवसीय G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। चौथा भारत जर्मन पर्यावरण फोरम आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे। अखिल भारतीय शरणार्थी और धर्मनिरपेक्ष मिशन मोर्चा समेत 4 संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय सहकारी संघवाद को मजबूत करने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देने और केंद्र राज्य के घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से परिणामों में तेजी लाने के लिए आज नई दिल्ली में 2 दिन के विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और

नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल 171 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कल हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हादसे में 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया।

मणिपुर सरकार ने जनगणना कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में लिया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6041 मामलों की पुष्टि और 2911 लोगों की मृत्यु। और अंत में फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: है अगर कामयाबी का जुनून तो हौसला रखिए, हर एक मोड़ पे अपना रास्ता रखिए। क्या बात है भाई, देखिए कामयाबी किसको नहीं चाहिए जिंदगी में। हम सभी जिंदगी में किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से कामयाब होने के लिए आए हैं, और कामयाबी हमें तब मिलती है जब हम हर नए मौके का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर है, एक नया मौका है, और ऐसे ही आकाशवाणी के सब साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो आप और हम साथ मिलकर नए हौसलों पर विचार करते हैं और किस तरीके से जिंदगी को आगे लेकर चलना चाहिए, इन बातों पर भी गौर फरमाते हैं। नमस्कार, सुप्रभात। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का ये सफर शुरू हो चुका है मेरे साथ। मेरा नाम है नेहा और आज के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह बहुत सी खास बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बता दें कि आज के मेन्यू कार्ड में क्या क्या आपके लिए शामिल है, तो बस अब से कुछ ही देर बाद हम बात करेंगे आज के इतिहास के बारे में। भाई एक तारीख है, सितंबर का महीना शुरू हो रहा है आज से, और बहुत ही महत्वपूर्ण और खास दिन है क्योंकि अपने आसपास आप देख रहे होंगे बहुत सी खास चीजें आज के दिन हो रही हैं। तो क्या है आज का इतिहास, इतिहास के पन्नों में आज का दिन किस तरह से दर्ज है, उन बातों पर गौर फरमाएंगे। इसके साथ साथ हम याद करेंगे उन सभी लोगों को जो आज के दिन इस दुनिया में तो आए थे लेकिन आज जिस्मानी रूप से हमारे बीच शामिल नहीं है, तो जिनकी जयंती है उन्हें याद करेंगे, उनके बारे में आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। जिनका बर्थडे है उनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही जो लोग आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए थे उनके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ खास और नया हो रहा है, ये बातें तो आप इस कार्यक्रम में हमेशा ही सुनते हैं, तो वो सारी बातें भी आज के इस कार्यक्रम में होने वाली है। तो चलिए भाई, मैं समझती हूँ कि जब किसी अच्छी बात की शुरुआत करते हैं तो ईश्वर का नाम जरूर ले लेना चाहिए ताकि आज का हमारा ये मंगलवार का दिन बहुत ही मंगलमय तरीके से शुरू हो जाए। वैसे आकाशवाणी के माध्यम से हमारे दिन की शुरुआत तो बहुत पहले से अच्छी हो चुकी होती है जैसे ही कार्यक्रमों का आगाज होता है, लेकिन हर कार्यक्रम एक नया रूप, एक नई आवाज और नए अंदाज में आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो आइए अमित त्रिवेदी की आवाज में नमो नमो से शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का ये सफर।

सुबह के 7:10 और लीजिए 11 मिनट पूरे हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। और देखिए, मैं तो हूँ दिल्ली में और मेरी घड़ी बता रही है कि सुबह के 7:11 और लीजिए 8 सेकंड पूरे हो गए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भारत देश के किसी भी क्षेत्र में हैं तो वहाँ समय क्या हुआ है, तो आप कहेंगे भाई हमारे यहाँ भी यही समय हुआ है। तो क्या कभी इस बात पर विचार किया है कि हम पूरे भारत में हमारी जो घड़ी होती है वो एक ही समय क्यों दिखाती है? हम अलग अलग जगहों पर रहते हैं, वहाँ पर सूर्योदय का वक्त अलग है, सूर्यास्त का समय अलग होता है, लेकिन हमारी जो क्लॉक होती है या वॉच होती है वो एक ही समय क्यों बताती है? भाई इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण एक वजह है जिसे हम कहते हैं भारतीय मानक समय, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और आप जानते हैं कि इसे 1 सितंबर 1947 से पूरे देश में आधिकारिक रूप से अपनाया गया और ये समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर तय किया गया है। और इस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय समय में अंतर होने के बाद भी पूरे भारत में एक ही मानक समय चलता है। तो इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं तो इस तरह से पता चलता है कि हर दिन ऐसी क्या खास बातों को लेकर बैठा है और वो बातें इतिहास के पन्नों में लिख दी जाती

रहती हैं और उनके बारे में हम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में बातचीत करते हैं। और बड़ा ही मज़ा आता है जब कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो हमें डेफिनेटली नहीं पता थी। और अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और बात करें 1956 की, तो इसी वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना हुई थी, आज ही के दिन यानी कि 1 सितंबर को। और साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और 1997 की बात करेंगे। 1997 में साहित्यकार महाश्वेता देवी और पर्यावरणविद MC मेहता को रेमन मैगेसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इतिहास के पन्नों में वो बात दर्ज हो गई। और हमारी जानकारी में इजाफा हो जाता है जब हम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के माध्यम से ये जानते हैं कि जो करंट डेट है वो डेट कैसे हिस्ट्री में रजिस्टर्ड है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो इसी तरीके से आकाशवाणी के माध्यम से आपकी जानकारी में कुछ ना कुछ एडिशन होती रहेगी। आप कहीं ना जाएं, सुनते रहें FM रेनबो दिल्ली मेरे साथ। मेरा नाम है नेहा। अगला बहुत ही सुंदर सा गाना आपके लिए आ रहा है, इसे एंजॉय करें और कहीं ना जाएं क्योंकि आगे हम मनाएंगे बहुत सारे बर्थडेज और उन लोगों को याद करेंगे जिनकी आज जयंती है।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का पहला घंटा आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है नेहा और वादे के अनुसार अब आपको बताएं कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं जिनका आज बर्थडे है आपके अलावा। मैं जानती हूँ आज आपका भी बर्थडे है तो आपको भी हम बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, लेकिन साथ में उनके बारे में भी जान लें जिनके बारे में यहाँ बातचीत हो रही है। भाई आज 1 सितंबर के दिन सोना मवांगचुक का बर्थडे है। लद्दाख के जाने माने इंजीनियर और शिक्षा सुधारक हैं जिनके नवाचार ने शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी हमें नई राह दिखाई और आइस स्तूप जैसी अनूठी पहल के लिए इन्हें जाना जाता है। तो हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे टू सोनम वांगचुक। साथ ही उनके अलावा कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो आज के दिन जन्मी तो थीं लेकिन आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण उपाध्याय के बारे में। 1 सितंबर को प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण उपाध्याय की जयंती है। उन्हें भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य उन्होंने किया और लंबे समय तक शिक्षण एवं शोध से वो जुड़े रहे। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और उनके ज्ञान और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए आकाशवाणी दिल्ली उन्हें नमन करता है। साथियों साथ ही हम याद कर रहे हैं पीए संगमा को। आप देश के वरिष्ठ राजनेता रहे और साथ ही मेघालय के मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत रहे। पूर्वोत्तर भारत की आवाज को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती से रखने वाले नेताओं में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है और महत्वपूर्ण स्थान उनका होता है। उनके राजनीतिक योगदान के लिए आकाशवाणी उन्हें स्मरण कर रहा है, नमन करता है।

0: और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और बाकी हस्तियों के बारे में आपको बताएं। चलिए एक छोटा सा एड ब्रेक लेते हैं, आप कहीं ना जाएं, सुनते रहे आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। इस छोटे से एड ब्रेक के उस पार हम आगे बात करेंगे उन हस्तियों के बारे में जिनकी आज जयंती है। आप कहीं मत जाइएगा और आपको समय बताते चलें, हम सुबह के 7:21 हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार हो चुके हैं।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: मंगल भवन मंगलहारी,
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 और दोपहर 12:30 DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

साथियों, साहित्य क्षेत्र में आगे बढ़े तो आज हम जयंती जिनकी है उनके बारे में बात करते हैं। दुष्यंत कुमार, जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो दुष्यंत कुमार को बहुत प्यार से याद किया जाता है। आइए उनके बारे में जानें। वो प्रसिद्ध हिंदी कवि रहे हैं और गजलकार भी रहे हैं। आज इनकी जयंती है। उनकी रचनाओं में आम आदमी की पीड़ा, सामाजिक बदलाव और व्यवस्था के प्रति साफ उनके जो सवाल थे वो साफ दिखाई देते थे। उनके जो कार्य हैं हम लोगों ने पढ़े हैं। साथ ही साए में धूप उनका बेहद चर्चित काव्य संग्रह भी रहा है और हिंदी गजल को भी उन्होंने नहीं पहचान दी। आज उनकी जयंती पर दुष्यंत कुमार को हम आकाशवाणी दिल्ली की ओर से नमन करते हैं। अब रंगमंच की ओर आगे बढ़े तो हबीब तनवीर की भी आज जयंती है। 1 सितंबर को प्रसिद्ध रंगकर्मी, नाटककार और निर्देशक हबीब तनवीर जन्मे थे। उन्होंने भारतीय रंगमंच को लोक कला और लोक कलाकारों से जोड़ा। आगरा बाजार और चरणदास चोर उनके प्रसिद्ध नाटकों में शामिल हैं। उन्होंने नया थिएटर की स्थापना कर भारतीय रंगमंच को एक नई दिशा दी। साथियों, आज हम याद कर रहे हैं राही मासूम रजा को। आप प्रसिद्ध लेखक रहे, शायर और पटकथा लेखक भी रहे और उनके उपन्यास आधा गांव और टोपी शुक्ला हिंदी उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में शामिल किया जाता है और वे लोकप्रिय टीवी धारावाहिक महाभारत के संवाद लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। और साथियों, अब चलते हैं हिंदी सिनेमा की ओर। 1 सितंबर को भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता केएन सिंह की भी जयंती है। अपने दमदार अभिनय, भारी आवाज और खास अंदाज के कारण उन्होंने हिंदी फिल्मों में खलनायक की भूमिका को एक अलग पहचान दी। हम सभी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और उनकी फिल्मों को हम पसंद भी करते हैं। उन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें सिकंदर, आवारा, CID और चलती का नाम गाड़ी जैसी बहुत ही जानी मानी फिल्में शामिल हैं। उनके योगदान के लिए आज हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं और नमन करते हैं उनकी जयंती के अवसर पर। और आइए उन्हीं के फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज है, साथ में आशा भोसले भी हैं। ये बहुत ही मस्ती भरा गाना हम सभी के लिए आज इस मौके पर।

0: सुबह के 7:32 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का पहला घंटा, मेरे साथ मेरे नाम है नेहा। साथियों, आज सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने समाज में समानता, सेवा और मानवता का संदेश दिया। जाति भेद मिटाने के लिए उन्होंने लंगर की परंपरा को बढ़ावा दिया, जहां सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। समाज सुधार के उनके प्रयासों और उनके दूरदर्शी विचारों के लिए आकाशवाणी दिल्ली गुरु अमरदास जी को नमन करता है।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

ही उम्र का कोई भी मोड़ हो, लेकिन जब बात चॉकलेट्स की आ जाती है तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जैसे कि मेरे चेहरे पर यहाँ पर एक बड़ी सी स्माइल है। जब चॉकलेट्स की बात हो, खाने पीने की बात हो, तो कौन एक्साइटेड नहीं होता, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन पता है क्या, वो जो हम बातें सुनते आ रहे हैं ना बचपन से कि भाई ज़्यादा चॉकलेट्स खाएं तो दांत खराब हो जाएंगे और सेहत को नुकसान भी पहुँच सकता है अगर एक्सेस में आप कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो नहीं खानी चाहिए, तो वो बात देखो कहीं ना कहीं अब बड़े हो गए ना तो अब समझ में आता है कि हाँ यार दैट वॉज राइट, हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और जब खाने की बात आती है ना तो हमारा खाना पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, ये बात सच में अब समझ में आती है। जब कुछ कुछ तकलीफें बॉडी में होने लगती है ना तो इसलिए लगता है कि पहले अगर ध्यान दे लेते तो कितना अच्छा होता, कि जितनी जल्दी अगर हम अपने खाने को बेहतर बनाते हैं वो हमारे लिए जीवन भर काम आता है। तो भाई जिस तरह प्रकृति के हर रंग का अपना महत्व होता है ना, उसी तरह हमारे भोजन की थाली में भी जितने ज़्यादा प्राकृतिक रंग होते हैं उतना ही बेहतर हमारा पोषण बन जाता है। अब देखिए, हरी सब्जियाँ, पीले फल, लाल टमाटर, नारंगी गाजर और रंग बिरंगे अनाज, हमारी थाली के ये रंग सिर्फ उसे सुंदर नहीं बनाते, खूबसूरत नहीं बनाते, बल्कि उसे पोषक भी बनाते हैं। इसी संदेश के साथ हर वर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। संतुलित और विविध आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा हम बनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन की नींव है सही पोषण। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2026 पोषण को दे प्राथमिकता, स्वास्थ्य को बनाएं अपनी ताकत, और फिर देखिए हम अपनी जिंदगी को कितनी सारी खुशियों के साथ जीना शुरू कर देंगे।

किसी खुमार में न रहें, आप सिर्फ आकाशवाणी के साथ रहें। यहीं पर मिलती है आपको ताज़ा तरीन जानकारी और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के पहले घंटे में हम बातें करते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में क्या खास हो रहा है। भाई जैसा नाम वैसा काम हम करते हैं, बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं करते हैं। फिलहाल समय बता दूं आपको, सुबह के 7:45 और लीजिए 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। और अब अगर आप दिल्ली से कानपुर या कानपुर से दिल्ली का सफर कर रहे हैं रेल द्वारा, तो आपके लिए चलाई जा रही हैं 2 विशेष ट्रेनें। चलिए इनके बारे में आपको बता दूं, नई दिल्ली और कानपुर सेंट्रल सुपर फास्ट विशेष ट्रेन, इसकी संख्या भी मैं आपको बता, गाड़ी संख्या क्या है, 02456 और 02455, ये है गाड़ी का नंबर। और ये विशेष ट्रेन 7 सितंबर से 30 नवंबर तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को चलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये सुबह 7:45 रवाना होकर दोपहर 1:15 कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाएगी और वापसी में ये 2:03 कानपुर सेंट्रल से चलकर 8:20 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। ये थी जानकारी पहली विशेष ट्रेन के बारे में। दूसरी ट्रेन के बारे में बात करें तो आनंद विहार टर्मिनल कानपुर सेंट्रल ये ट्रेन है, और गाड़ी संख्या की बात करें तो 02458 और 02457, ये है गाड़ी संख्या। ये विशेष ट्रेन 8 सितंबर से 29 नवंबर तक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चल रही है। आनंद विहार टर्मिनल से ये सुबह 8:20 पर चल रही है और 2:15 कानपुर सेंट्रल पहुंच जाएगी। और वापसी की बात की जाए तो कानपुर सेंट्रल से 3:00 दोपहर को रवाना होकर 8:10 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंच जाएगी। तो आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जो ऑफ कोर्स दिल्ली में है, वहां से आप कानपुर की ये 2 विशेष ट्रेन्स लेकर अपने सफर पे जा सकते हैं और कानपुर में जाकर अपने घर में, आहा क्या बात है, बहुत सारी मस्ती से धमाल कर सकते हैं। और अब

हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना, मस्ती धमाल से भरा हुआ ये गाना। भाई रोड ट्रिप्स जब हम करते हैं तो इस तरह के गाने मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं बताओ ना मुझे, कैसे बताओगे? भाई आकाशवाणी सुनते रहो, आपकी प्रेजेंस ना मुझे यही फील हो जाती है।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

7:52 बाय द रेनबो क्लॉक। और अब आपको बता दें कि आगे कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद आप लेने वाले हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 के माध्यम से। तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक सुबह 8 बजे होंगे हिंदी में समाचार, और 8 से 9 के बीच में भावना नायर आपके साथ रहेंगी। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर कार्यक्रम जारी रहेगा उनके साथ भी, और 9 बजे समाचारों के बाद 9 से 10 बजे के बीच में मैं नेहा रहूंगी आपके साथ दिल की तरह ने गाने नए पुराने कार्यक्रम लेकर। सुबह 10 बजे समाचारों के बाद आप सुनेगा कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर। अदिति बिष्ट इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी, और सुबह 11 बजे समाचार होंगे, और समाचारों के साथ साथ 11 से 12 के बीच में बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ आप एंजॉय करेंगे, जिसमें होंगी बहुत सी चटपटी बातें, बॉलीवुड की मसाला खबरें आपके साथ होंगी। और दोपहर 12 बजे एक बार फिर से हम आपको अवगत कराएंगे कि देश दुनिया में क्या हो रहा है समाचारों के साथ, और 12 से 1 के बीच में कार्यक्रम रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक प्ले इट कूल। ये कार्यक्रम अदिति बिष्ट आपके लिए लेकर आएंगी। चलिए साथियों, आपको बता दूं कि हमारा फोन इन कार्यक्रम जो रहता है दोपहर 3 से 4 के बीच में रेडियो डॉक्टर, उसमें आज का विषय क्या है? आज का विषय रहेगा स्पेशल प्रोग्राम ऑन न्यूट्रिशन वीक। भाई न्यूट्रिशन सप्ताह मनाया जा रहा है, तो उस पर विशेष बातचीत आज होगी, जिसमें आज का विषय रहेगा अर्ली चाइल्डहुड एंड न्यूट्रिशन। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय रहेगा, जिसमें एक्सपर्ट्स होंगी डॉक्टर राधिका सचदेवा, आप पीडियाट्रिशियन है, साथ में रहेंगी स्वप्ना जी, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो ये जानकारी आप जरूर सुनिएगा दोपहर 3 से 4 के बीच में, आप फोन और मैसेजेस के माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, इसी तरीके से आकाशवाणी दिल्ली पर कार्यक्रमों का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, हर घंटे एक नया कार्यक्रम, नई जानकारी और बहुत सारा मनोरंजन आकाशवाणी दिल्ली आपके लिए लेकर आता है। और अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे अनुमति लूं, चलते चलते कार्यक्रम का आखिरी गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की मधुर आवाजों में आपके लिए लेकर आ गए हैं हम, फ्रॉम द मूवी दिल तो पागल है। बहुत प्यारा सा गाना, और आपके चेहरे पर ये जो प्यारी सी मुस्कुराहट है ना, इसे कभी फीका मत पड़ने दीजिएगा। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने आसपास सफाई बना के रखिएगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे शहर में हैं, हमारे देश में हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ हम फॉलो करें, इसी से पहचान होती है कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दे अनुमति, नमस्कार।

नमस्कार, यह 102.6 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो पेश है इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत ने विश्व बैंक द्वारा गठित सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। अमेरिका के एशविले में आयोजित हो रही 2 दिवसीय G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। चौथा भारत जर्मन पर्यावरण फोरम आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण प्रकृति संरक्षण जलवायु संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 7.8% की वृद्धि दर्ज होने के बाद अमरीका ने भारत को एक गतिशील मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था बताया। अखिल भारतीय शरणार्थी और धर्मनिरपेक्ष मिशन मोर्चा समेत 4 संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल 171 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कल हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हादसे में 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ में 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,925 लोग लापता हैं। इन लापता लोगों में 592 विदेशी नागरिक शामिल हैं। मणिपुर सरकार ने जनगणना कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में लिया गया। नेपाल में आई बाढ़ और बिहार में नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने लोगों को बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का सेवन न करने की सलाह दी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6041 मामलों की पुष्टि और 2911 लोगों की मृत्यु।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, कैसे हैं आप सब। सुबह का ये वक्त बहुत ही एनर्जेटिक होता है और मैं भी फुल एनर्जी से भरपूर हूँ, क्योंकि एक बार फिर से ना आपसे मुलाकात हो रही है। वादे के अनुसार आ चुकी हूँ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का दूसरा पार्ट लेकर, सिर्फ और सिर्फ 102.6 एफएम पर, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। और जब हमारे दिल मिलते हैं तो फिर जो दिन की शुरुआत होती है ना, और बेहतरीन हो जाती है। सितंबर का पहला दिन, महीने की पहली तारीख और मंगलवार का दिन, इसी शुभकामना के साथ कि मंगलवार आपका मंगलमय हो, यानी नई तारीख, नया महीना और नई शुरुआत। और साथ ही साथ जब सितंबर की शुरुआत हो गई है तो मन में बात आने लग गई होगी कि बहुत सारे फेस्टिवल्स अब आने वाले हैं और एक के बाद एक अब फेस्टिवल्स होंगे और खूब सारी तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। और ये जो फेस्टिव सीज़न होता है ना, एक अलग सी पॉजिटिविटी आ जाती है, एक अलग सी उत्सुकता आती है, एक अलग सी खुशी होती है कि अब बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। गणेश चतुर्थी आने वाली है, जन्माष्टमी आने वाली है और त्योहारों की रौनक बाज़ारों और घरों दोनों में दिखने लग गई है, है ना। लेकिन आज त्योहारों के साथ साथ बात बहुत सारे होने वाली है। दिल्ली में क्या बदल रहा है, दिल्ली क्योंकि हमेशा बदलती रहती है और दिल्ली वालों का दिल बड़ा, बहुत बड़ा होता है, तो कहाँ आपका काम की खबर है वो भी आपको बताएंगे। मौसम क्या करवट ले सकता है, बारिश फिर से आ सकती है, आज का मौसम कैसे रहने वाला है। और ये वक्त ना जब 8 से 9 का होता है, ये सबसे ज़्यादा आई मस्ट से बिजिएस्ट डे इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट लग रही होती है और ऑफिस जाने की तैयारी होती हो रही होती है, नहीं तो फिर हो रहा क्या होता है कि किचन में खुशबूदार ब्रेकफास्ट बन रहा होता है और उसकी खुशबू पूरे घर में महक रही होती है और भूख अपने आप जागृत हो जाती है। होता है ना ऐसा, जब किचन में गर्मा गर्म नाश्ते की खुशबू आ रही हो और मन कर जाए कि बस सब छोड़ छाड़ के चलो अब नाश्ता कर लेते हैं, या फिर वो जो पहली चाय की चुस्की गर्मा गर्म धुएं के साथ अदरक और तुलसी मिलाकर अगर पहली चुस्की ले ली जाए दिन की, तो कईयों का तो दिन इसकी शुरुआत इसी वजह से होती है। और बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं तो लगता है कि चलो अब जो है सांस ले लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और 102.6 एफएम के साथ तो आपका पूरा दिन चलता ही रहता है। तो मेरे दोस्त, हफ्ते की शुरुआत हुई है, घबराना क्यों है, अभी तो मंगलवार है और वीकेंड बहुत दूर है, आगे बहुत कुछ करना है, बहुत सारी बातें हमको करनी है। जुड़े रहिए आप 102.6 एफएम के साथ और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। किसके साथ, मेरे साथ, मेरा साथ यानी भावना के साथ।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: तो दोस्तों, हमारी और आपकी बातचीत लगातार चल रही है ये गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

और गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर का दूसरा पार्ट है जो मेरे साथ चल रहा है, भयानक की भावना के साथ चल रहा है। और एक बेहतरीन दिन की शुरुआत हो चुकी है, मंगलवार का ये दिन है और ये वो वक्त होता है जब मेट्रो में आप अपनी सीट ढूंढ रहे होते हैं, आपकी आंखें घूम रही होती हैं कि बस वो एक सीट मुझे मिल जाए और ये जो लंबा सफ़र है बैठ कर तय हो जाए, है ना, हो रहा होता ना। या फिर अगर बस की सवारी आप कर रहे हैं तो भी आपका और मेरा साथ लगातार चल रहा है, और गाड़ी में बैठ चुके हैं तो दोस्त ये मत सोचेगा कि आज आपको ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आराम से चलाइए ना, और पहले निकले, मुझे पता है आपने बफर टाइम निकाल के आप पहले निकल चुके हैं, और अगर आप नहीं निकले हैं ना तो फिर निकल जाइए, क्योंकि आपको दिन भर की जो हसल बसल रहनी है उसमें ट्रैफिक भी अगर बीच में मिल गया तो फिर कहीं ना कहीं मूड थोड़ा सा स्पॉइल हो जाता है। और साथ में अगर पीछे वाला लगातार हॉर्न बजाया जाए बजाया जाए बजाया जाए, रेड लाइट होने के बावजूद बजाया जाए, तो बहुत, आई नो इट्स गेट्स वेरी अनोइंग। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे मौसम चल रहा है। कल भी बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, जैसे ही मैं सुबह दरवाजे खोले थे, ओह जो पेड़ थे और उनके जो पत्ते थे वो और हरे दिख रहे थे मुझे, और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी कूल ब्रीज चल रही थी, तो इट वॉज़ फीलिंग वेरी नाइस। लेकिन अगर आज की बात करें, क्या आज मौसम करवट ले सकता है, तो हाँ मेरे दोस्त, राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर बारिश या फिर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। दिन की बात करें तो दिन के तापमान में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बादल और बारिश के मौसम से सुहावना मौसम ज़रूर आपको मिल सकता है। और साथ ही मौसम के साथ उमस जो हो रही थी ना कुछ दिनों से, उसमें बदलाव महसूस हो सकता है। अगर आपको ताज़ा पूर्वानुमान बताऊँ जो IMD ने दिया है, तो दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना जरूर जताई गई है और अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो दिल्ली में मौसम करवट बदल सकता है और सितंबर की शुरुआत हुई है, ऐसे में अगर पहले ही दिन मौसम सुहावना और मिल जाए महीने की पहली तारीख को, तो ऐसा लगता है कि बस पूरा महीना और अच्छा निकलेगा और सुहावना निकलेगा और पॉजिटिविटी के साथ जाएगा। सुनते रहिए 102.6 FM, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

तो दोस्तों, तुम तक ये सारी बातें हैं और तुम तक ये सारी आवाज़ें हैं जो पहुंच रही हैं। और अगर ये 8 से 9 बजे का समय जब देखें तो बहुत ट्रैफिक से भरा हुआ भी होता है। तो आज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जो आप जान लीजिए। घर से निकलने से पहले ट्रैफिक का हाल ज़रूर जान लेना चाहिए। आपको बता दें कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 आने वाला है और उसकी तैयारियां लगातार दिल्ली में चल रही हैं। और नई दिल्ली में आज मोटर कार के रिहर्सल होने वाली है और इसके चलते सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कई प्रमुख सड़कें हैं उस पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और वाहनों की आवाजाही को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया गया है। तो पुलिस ने खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है और साथ ही साथ कुछ ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी सड़कों पर असर रहने वाला है। सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड। और जिन रास्तों पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा वो भी आपको बता देती हूँ। सत्यमार्ग, शांति पथ, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंबा रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, कमाल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, प्रेस इनक्लेव रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जोसेफ ब्रिज, टीटो मार्ग, लाला लाजपत राय मार्ग। इन सभी रास्तों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मोटर कारकेड की रिहर्सल के दौरान यह आवाजाही प्रभावित रह सकती है। तो इस समय में मेट्रो से सफ़र करना बेहतर हो सकता है और ट्रैफिक पुलिस ने भी यही सलाह दी है। और रिहर्सल के दौरान बस कुछ बसों के रास्ते बदले जा सकते हैं, वहीं मेट्रो सेवाएँ सामान्य रूप से चलती रहेंगी। टैक्सी और ऑटो को भी कुछ रास्तों पर अस्थायी डायवर्जन का सामना करना पड़ सकता है। खासकर ज़रूरी गाड़ियों को यहाँ प्राथमिकता मिलेगी, जिसमें एम्बुलेंस, मेडिकल सेवाएँ और दूसरी ज़रूरी सेवाएं वाली गाड़ियों का रास्ता साफ होगा और जरूरी सामान और उपयोगी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों की आवाजाही भी जारी रहेगी। इसके साथ पार्किंग को लेकर भी सावधानी बरतें। नियंत्रित किए गए जो रास्ते मैंने आपको बताए हैं, वहां से 200 मीटर के दायरे में सड़क किनारे पार्किंग की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है और लोगों से केवल तय पार्किंग जगहों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। और इन ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों को जरूर माने, तभी आपका जो डिस्टेंस है वो सामान्य रूप से चलता रहेगा और हमारे और आपके बीच जो ये बातें हैं उसका सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आप सुन रहे हैं और गानों का सिलसिला लगातार जारी है। बस सुनते जाइए, एंजॉय करते जाइए और यूं ही अपने ट्यूसडे की मॉर्निंग को बेहतरीन बनाइए।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देख

0: लेते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर, आपको और मेरा साथ लगातार चल रहा है और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगातार दे रही हूँ। और अगर दिल्ली वालों, अगर आपका सफ़र शिवाजी स्टेडियम या एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ और ये अपडेट जो मैं आपको देने वाली हूँ बड़े काम की हो सकती है। शिवाजी स्टेडियम स्टेशन के निर्माण का काम शुरू हो गया और ख़ास बात यह है कि ये स्टेशन मौजूदा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के भूमिगत कॉरिडोर के नीचे बनाया जाएगा। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि ऊपर दिल्ली की सड़कें और आवाजाही और नीचे नया ट्रांजिट कनेक्शन। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि स्टेशन पर चार गेट होंगे, यानी आने वाले समय में इस इलाके में यात्रियों की आवाजाही और कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और मेट्रो की कहानी तो है ही कुछ ऐसी कि आपका सफर बहुत आसान कर देती है, समय को बचाती है और ट्रैफिक से निकलने और शहर को जोड़ने की कहानी भी कुछ इस मेट्रो के साथ ही जुड़ी हुई है, है ना। और साथ ही साथ एक आपके हेल्थ से जुड़ा अपडेट भी है। H1N1 से बचाव कर रहे हैं ना आप, क्योंकि छोटी छोटी सावधानी ना बड़ी सुरक्षा लेकर आती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में बच्चे, बुजुर्ग या परिवार के सदस्य रोज बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में आते हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से H1N1 को लेकर जागरूकता और सावधानी की जानकारी दी गई है। बुखार हो, खांसी हो, गले में खराश हो या फिर बहती या बंद नाक हो या सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है ना, अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स अगर आपको नजर आते हैं तो ज़रूर सलाह लीजिए। और बचाव की सबसे आसान शुरुआत पता कहाँ से होती है? आपके खुद के हाथों से। हाथों को साबुन और पानी से धोना, खांसते या छींकते समय मुंह नाक ढकना, आंख नाक और मुंह को बार बार ना छूना और लक्षण होने पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रखना, ये छोटी छोटी आदतें काफ़ी अहम हो सकती है और आपको जो ये अनेक वायरस आसपास घूम रहे हैं ना उससे आपको बचा सकती है। और बताऊँ आपको एक खास बात, ये जो भी सिम्टम्स आपको अगर दिख रहे हैं अपने आसपास किसी में भी, तो बिल्कुल भी उसे नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और ख़ुद की अपनी इंस्टिंक्ट्स पर प्लीज़ दवाइयाँ ना लें। ऐसे ही एंटीबायोटिक्स मत खाते जाएं क्योंकि उसका बहुत बुरा असर होता है आपकी आज की हेल्थ पे भी और आपके आने वाले भविष्य पे भी। तो सावधानी रखें, लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टरों की सलाह जरूर लें। साथ ही साथ सुनते रहिए 102.6 FM। वेरी गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। इट्स अ ट्यूसडे।

0: नहीं, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: मंगल भवन मंगलहारी
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

पता है दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले ना फिल्मों के गाने बड़े प्रचलित होते थे और वो आज भी होते हैं, और पहले गाने फिल्मों से आते थे और हम उनसे जुड़ जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ओटीटी की कहानियां भी अपने साथ ऐसा संगीत लेकर आ रही है ना, जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहता है। ऐसा ही खूबसूरत गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, तेरा हुआ साहिबा फ्रॉम मुसाफिर कैफे। बहुत सॉफ्ट, बहुत रोमांटिक और बिल्कुल ऐसा एहसास जैसे कि आपको धीरे धीरे से कह रहा हो तुम मेरे करीब हो और बस इतना ही काफ़ी है। मुझे पर्सनली ना ये गाना बहुत पसंद आ रहा है और आज सुबह मैंने सोचा कि क्यों ना इस खूबसूरत मेलोडी को आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो अगर आपकी सुबह में थोड़ा सा रोमांस की जगह है ना मेरे दोस्त, थोड़ी सी सॉफ्टनेस है और कोई ऐसा शख्स है जिसकी याद आपको मुस्कुराने की वजह दे रही है, तो ये गाना आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तेरा हुआ साहिबा फ्रॉम मुसाफिर कैफे। खूबसूरत रोमांटिक ट्रैक है जिसे गर्वित सोनी, प्रियांश श्रीवास्तव और हंसिका पारिक ने गाया है। संगीत गर्वित और प्रियांश का है और लिरिक्स प्रियांश श्रीवास्तव और अनिकेत शुक्ला के हैं। इस गाने को आप इंजॉय कीजिए, सुनते रहिए 102.6 FM। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर

0: एमटी बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
3: पता का चाय गजब का स्वाद।
4: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे और ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग है। और अगर मौसम की बात करें तो कहा जा रहा है कि सितंबर में भी खूब भिगोने वाला है, तो मज़ेदार रहने वाला है सितंबर भी। देखते हैं कि किस तरीके से आईएमडी की प्रेडिक्शंस ट्रू होती है कि नहीं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है फॉर फीमेल पैसेंजर्स जो कि दिल्ली में ट्रैवल करती हैं डीटीसी बसों के द्वारा। दिल्ली में महिलाओं के लिए जो मौजूदा पेपर आधारित पिंक टिकट है ना, उसके जरिए जो डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा है उसको लेकर दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से 17 सितंबर तक के लिए उसको बढ़ा दिया। इस दौरान सभी जो महिलाएं हैं, सभी फीमेल पैसेंजर्स जो हैं, पहले की तरह कुछ दिन और पिंक टिकट के माध्यम से मुफ्त बस सेवा यात्रा कर सकेंगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि त्योहार आने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, और महिला यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसी वजह से यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि 17 सितंबर के बाद मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिस्टम पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। और जब ऐसे समय में ये फैसला लिया गया है जब जन्माष्टमी है, तीज है, गणेश चतुर्थी, ऐसे कई महत्वपूर्ण जो त्यौहार हैं वो लगातार आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब तक जो 19 लाख महिलाएं हैं उन्होंने पिंक कार्ड बनवाए हैं। हाँ, दिल्ली की माताओं और बहनों ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया है और अब तक 19 लाख फीमेल ने पिंक कार्ड रजिस्टर कर लिया। और पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाने और जारी रखने की प्रक्रिया अब 17 सितंबर के बाद भी जारी रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फीमेल पैसेंजर्स के लिए। सुनते रहिए 102.6 FM।

ना अब थोड़ा सा रंग संस्कृति और हमारी विरासत की बात भी हो जाए। श्रीराम भारतीय कला केंद्र की चर्चित नृत्य नाटिका कृष्ण अपने 50 साल पूरे कर रही है और इस खास अवसर पर विशेष मंचन 29 अगस्त से 4 सितंबर तक कमानी ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। और आपको बताएं कि ये रोज़ शाम 6:30 बजे प्रस्तुति होती है, जबकि 30 अगस्त और 4 सितंबर को दोपहर 3 बजे एक और एक्स्ट्रा शो रखा गया है। 50 साल यानी एक ऐसी प्रस्तुति जिसने कई पीढ़ियों को भारतीय नृत्य संगीत और कृष्ण की कथा से जोड़ा है। तो दिल्ली में त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले ही संस्कृति का रंग भी गहरा चुका है और यही तो है हमारी दिल्ली की खूबसूरती। एक तरफ आधुनिक शहर आपको दिखेगा तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी संस्कृति।

और इसी के साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर मेरे साथ यहीं आपका समाप्त होता है, लेकिन फिर मिलेंगे ना इसी होप के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन अगला कार्यक्रम लेके दिल की तरह ने गाने नए पुराने, जिसमें आपको मिलेगा रेट्रो का तड़का भी और नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक भी, जिसको लेकर स्टूडियो में हाजिर है नेहा। सुनते रहिए 102.6 FM. हैव अ वंडरफुल ट्यूजडे एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो 102.6 FM, दिल से दिल तक।

नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। अब सुनिए एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमरीका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने विश्व बैंक द्वारा गठित सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से खारिज किया। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,925 लोग लापता हैं। इन लापता लोगों में 592 विदेशी नागरिक शामिल हैं। चौथा भारत जर्मन पर्यावरण फोरम आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। जल शक्ति मंत्रालय सहकारी संघवाद को मजबूत करने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देने और केंद्र राज्य के घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से परिणामों में तेजी लाने के लिए आज नई दिल्ली में 2 दिन के विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। मणिपुर सरकार ने जनगणना कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में लिया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि और 2,911 लोगों की मृत्यु। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत हुआ। ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

पर मैं जानती हूँ कि आप बेसब्री से इंतजार करते हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने सुनने का। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ नेहा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार, ते सस्रियकाल, गुड मॉर्निंग मेरी जान। भाई, ये कार्यक्रम सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी बहुत फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पुराने ज़माने के वो प्यारे प्यारे गाने सुनने को मिलते हैं जो मैं डेफिनेटली सुनना चाहती हूँ, और नए ज़माने के गानों का तड़का तो होता ही है। तो चलिए मस्ती भरे अंदाज में कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं इस गाने के साथ, जिसमें बहुत सारी मस्ती हो रही है, और ऐसे ही आगे भी कार्यक्रम में इतने प्यारे गाने मैंने आपके लिए चुन चुन के ये पूरा जो गुलदस्ता है गानों का ये सजाया है। और हाँ, थोड़ी देर बाद पुराने जमाने के गाने भी आएंगे आपके लिए।

सुबह के 9:14 और अब दिल के तराने गाने नए पुराने में चलिए आपको लेकर चलते हैं पुराने जमाने की गलियों में, जहां पर इतनी मस्ती और इतना धमाल हो रहा है ना कि भाई आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आइए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं ये मस्ती भरा गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मधुर आवाजों में।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी,

कितनी मीठी और कितनी प्यारी बात है ना ये कि कोई आपसे कहे कि मुझे तुमसे प्यार है और उसमें कोई भी दोगलापन ना हो, उसमें कोई भी शक या गुंजाइश इस बात की ना हो कि कहीं हमें डाउट है किसी भी तरह का। भाई प्यार बहुत ही प्यारी सी फीलिंग है और मैं तो यही समझती हूँ कि जब हम किसी को ये कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है तो उसमें सच में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें पूरा भाव होना चाहिए और हम अपने हृदय की गहराइयों से उस बात को कहें तभी वो बात सार्थक होती है। और जब हमें जिनसे प्यार होता है उनसे मिलके तो ऐसा लगता है कि दिल के अरमान पूरे हो गए हैं। ये प्यारा सा गाना आशा भोसले और सुरेश वाडकर की मधुर आवाजों में पुराने जमाने की गलियों से निकलकर आपकी ओर आ रहा है। सुबह के 9:30 और 25 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: साथियों, कुछ गाने ऐसे होते हैं, उनके कितने भी नए वर्जन्स बन जाएं, लेकिन जो ओरिजिनल है ना, वो ओरिजिनल ही रहता है। तो ओजी हमेशा हमें पसंद आता है। तो अब पुराने जमाने से एक ऐसा ही गाना मैं आपको सुनवा रही हूँ, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। भाई ये गाना इतना प्यारा लगता है ना मुझे, और इसके जो कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग कई बार हमें समझ नहीं आते। तो अगर गाना सुनने के बाद फुर्सत मिले तो ज़रा समझिएगा कि आखिर शब्दों का मतलब क्या है।

0: सुबह के 9:54 हो गए हैं और अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। मैं आशा करती हूँ दिल के तराने, गाने नए पुराने का आज का सफर आपको पसंद आया होगा। और मुझे तो देखिए हमेशा की तरह जब आपका साथ होता है और गाने भी साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत बहुत मजा आता है। और अब वक्त है आपसे अनुमति लेने का। अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 10 समाचारों के बाद, और ऐसे ही आकाशवाणी दिल्ली पर कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा। और अब एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। सवाल क्या है? सवाल ये है,
1: लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती।
0: तो भाई इस सवाल का जवाब आप ढूंढें इस गाने के दौरान, और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: All right, taking a very short break and we will be back before you know it.
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: Well, you hear that falsetto and you just know it's Barry Gibb. It is one of the most recognizable sounds of pop music. He could just make his natural voice that incredibly high so seamlessly. And that became, of course, a huge part of the Bee Gees' signature sound. All right, with that, we're slipping into a very, very short break. But yes, happy birthday, Barry Gibb, as some of you are also sending happy birthday gifts for him. That is just adorable. Stay tuned.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। भारत ने विश्व बैंक द्वारा गठित सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। अमेरिका के एशविले में आयोजित हो रही 2 दिवसीय G20 विश्व वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अखिल भारतीय शरणार्थी और धर्मनिरपेक्ष मिशन मोर्चा समेत 4 संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल 171 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कल हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हादसे में 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,925 लोग लापता हैं। नेपाल में आई बाढ़ और बिहार में नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने लोगों को बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का सेवन न करने की सलाह दी है। उत्तराखंड में येलो अलर्ट को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने जनपद के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज एक दिन का अवकाश घोषित किया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर हुआ। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि और 2,911 लोगों की मृत्यु। और फुटब�ल में AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी। शुरू हो चुका है आकाशवाणी रेनबो का खास शो, जिस पर हम सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की गाड़ी में सवारी करते हैं, यानी बॉलीवुड की बातें करते हैं, बॉलीवुड के रंग में रंग जाते हैं हमेशा की तरह। बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ एक बार फिर से धमाका और बहुत सारी मस्ती के साथ ढेर सारी बॉलीवुड की इन्फॉर्मेशन को लेकर हाजिर है। तो आप हैं एंटरटेनमेंट के लिए तैयार, फुल टू एंटरटेनमेंट।

जी बीटी विद बीटी चल रहा है बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। यहाँ होती है बॉलीवुड की ढेर सारी बातें इस घंटे और साथ में आपके लिए एक सरप्राइज भी होता है, यानी एक सवाल होगा 11:30 बजे जिसका जवाब अगर आपने सही दे दिया ना तो बॉलीवुड सरताज बन सकते हैं, यानी हमसे बात करने का मौका मिल सकता है। और साथ में आपके लिए एक सरप्राइज ये भी है कि इन केस आप बॉलीवुड सरताज नहीं बने, क्योंकि आंसर्स तो बहुत सारे आएंगे, तो आपका नाम, आपके शहर का नाम जरूर शामिल होगा। तो फटाफट आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए और फटाफट अपना काम जो कर रहे हैं ना वो भी करते रहिए। वैसे हाँ, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें कोई फटाफट करने की जरूरत नहीं है, आराम से चलाइए, देर से चला जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमेशा के लिए देर हो जाए बहुत दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। तो अपना ध्यान रखिए और सुनते रहिए बीटी विद बीटी बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ। और हाँ, सवाल आएगा 11:30 बजे, व्हाट्सएप मैसेज करना है, बस बॉलीवुड सरताज बनाने की गारंटी आकाशवाणी रेनबो की होती है, कोई एक तो जरूर बनता है हर दिन। आप बनना चाहेंगे? बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जवाब

अजी ये कैसे नखरे होते हैं जो आपको सोने लगते हैं। फिलहाल टॉक्सिक भी लोग हमें बहुत पसंद नहीं आते हैं, लेकिन जब फिल्म की बात आती है तो हमें जाने क्या हो जाता है, हम थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग जाते हैं। और टॉक्सिक लोग अगर हमारे आसपास ना हो, किसी और की लाइफ में हो, तो हमें सुनने में बड़ा मजा आता है। आता है कि नहीं आता है, दिल से बताइएगा। और यहाँ पर टॉक्सिक फिल्म की बात हो रही है, टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, 6 दिन पहले रिलीज हुई और हम सबको इंतजार था कि यश की ये मूवी क्या जबरदस्त परफॉर्म करेगी, कितना यश और नाम कमाएगी। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म हो गया, 6 दिन हो गए, मंडे टेस्ट में फेल हुई, अब पास, थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। वैसे तो शुरुआत धमाकेदार ही हुई थी, धुआंधार कमाई करते हुए 101.10 करोड़ का कलेक्शन तो पहले दिन ही कर लिया। अरे, रुकिए, आप कभी सोच रहे हो कि हिंदी में ही ऐसा किया, तो नहीं, मैं टोटल कमाई की बात कर रही हूँ। इसने कई फिल्मों, कई भाषाओं में ये एक साथ रिलीज हुई, जैसे कि तेलुगू में, कन्नड़ में, और हिंदी बेल्ट की अगर बात करें तो हिंदी बेल्ट में तो इस मूवी ने सबसे ज़्यादा कमाई की। पहले दिन 3.69 करोड़ को इस मूवी ने मंडे को कमाया है, और उसके बाद बाकी की और मूवीज़ की जो और जो भाषाएं हैं उनमें अगर देखा जाए तो इस मूवी ने अब तक 220.28 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लेकिन ग्रॉस इंडिया कलेक्शन की बात की जाए तो 263.24 करोड़ लगभग कमाई कर ली है। यानी अभी फ़िलहाल मंडे टेस्ट में हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कह सकते कि पास हुई या फेल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन आगे क्या होगा, थोड़ा वेट करते हैं, फिर वॉच करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आखिर इस मूवी ने क्या परफॉर्म किया, कैसी रही ये मूवी अगले वीक। फिलहाल आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी, बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ। तो सवाल के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना आपकी मजबूरी है, अगर आप बनना चाहते हैं बॉलीवुड सरताज। 11:30 बजे हम सबको है इंतजार

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
4: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
3: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
5: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
6: इग्नोर नहीं, याद करो।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

बीटी विद बीटी चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। और विक्रांत मैसी की लॉटरी लग गई है, आप सबकी तो लगी है क्योंकि आप बीटी विद बीटी सुन रहे हैं। लेकिन विक्रांत मैसी की लॉटरी कैसे लगी है वो मैं बता देती हूँ। मुसाफिर कैफे की सफलता तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन अब इसके बाद एक दिग्गज डायरेक्टर के साथ जब एक और लव स्टोरी में नजर आने वाले हैं तो इसे लॉटरी कहेंगे। और ख़ासतौर से तब जब राकेश ओम प्रकाश हेरा बना रहे हो और वो भी उनकी अच्छी वाली फिल्म हो जिसकी उन्होंने बहुत पहले से तैयारी की थी, उनकी इच्छा थी कि ऐसी वो फिल्म बनाए और ऐसी ही फिल्म वो बना रहे हैं विक्रांत मैसी के साथ। तो बता दूं कि आखिर ये मूवी क्या है, एक शॉर्ट फिल्म है लेकिन हाँ लव स्टोरी है। और क्योंकि राकेश ओम प्रकाश मेहरा बना रहे हैं तो कुछ खास तो ज़रूर है। तो इस खास बात के साथ आपको बता दूं कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा फिलहाल काम क्या कर रहे हैं, महत्वाकांक्षी उनकी एक फिल्म कर्ण है उस पर काम कर रहे हैं। बहुत पहले से इसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और लगभग 5 साल से इस पर तैयारी चल रही है, काम चल रहा है और अब इसकी शूटिंग के

खबरें आ रही हैं 2027 में, और किसके साथ जानना चाहेंगे? हम भी बताना चाहेंगे, सलमान खान के साथ। मूवी कर्ण में मेन रोल सलमान खान का होने वाला है, और वो हम सब के लिए इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि हम सब सलमान खान के फैन हैं और कर्ण की कहानी हम सबको पता है। तो ऐसे में किस तरह से इस मूवी में वो सूट करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दूँ, 2027 में इसकी जो शूटिंग है वो शुरू हो जाएगी। और रही बात विक्रांत मैसी के साथ, तो इसी बीच एक छोटी सी स्टोरी है जिसका शूट लगभग 30 दिन में कर लिया जाएगा, और इस मूवी की और अपडेट आएगी तो आप तक पहुंच ही जाएगी। आप बस ऐसे सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

तो आपको बता दूं कि करीना कपूर आजकल क्या कर रही हैं। भाई आप सब जानते हैं दायरा का ट्रेलर रिलीज हो गया है, नहीं जानते तो आपको बता दूं, दायरा का ट्रेलर रिलीज हो गया है भाई, उनकी आने वाली जो मूवी है उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। जान गए, अब आपको उसके बारे में बता देती हूँ, करीना कपूर खान इस मूवी में क्या कर रही हैं। तो आपको बता दूं कि DCP अजूनी कोहली का किरदार वो निभा रही हैं, और पृथ्वीराज सुकुमारन की बात करें तो वो DCP रमन कुमार का रोल कर रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत में पुलिस एनकाउंटर से जुड़े मामलों पर दोनों अधिकारियों के बीच देखा जाता है कि अलग अलग उनका नज़रिया होता है, और जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ती है ड्यूटी न्याय और उनके नज़रिए में टकराव होने लग जाता है। इन सब को लेकर बनाई गई ये मूवी कैसी रहेगी, ये टकराव आपको कितना पसंद आएगा, पुलिस ऑफिसर के रोल में ये दोनों कैसे आपको भाएंगे या नहीं भाएंगे, वो सब देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात होगी कि इन दोनों को डायरेक्ट मेघना गुलजार ने आखिर किया कैसे है, और टोटल मिलाकर ये थ्रिलर मूवी कानून न्याय और जवाबदेही के टकराव को किस प्रकार दिखा पाती है। देखना चाहेंगे तो ज़रूर देखिएगा, जल्द ये मूवी सिनेमाघरों में दिखाई देगी। जल्द का मतलब क्या होता है, बस 18 सितंबर।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

समय है 11:30 बजे, यानी वो समय जब आपके लिए सवाल आता है और उसका जवाब आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए देते हैं और फिर आप सबके नाम शामिल होते हैं, शहर का नाम शामिल होता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन, एक शर्त जरूर होती है, ये कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है और आंसर लिखना है जो मैं सवाल पूछूंगी। इतना सा नियम आप फॉलो कर लेंगे तो आपका मैसेज जरूर शामिल होगा और क्या पता बॉलीवुड सरताज भी आप ही बन जाएं आज। तो देखते हैं, किस्मत आजमाते हैं और सवाल का जवाब देते हैं। तो तैयार है ना? तो आज का सवाल एक छोटा सा सवाल जिसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं अपने शो के दौरान। अब आपको बताना है कि आपने कितने ध्यान से सुना, आपका टेस्ट है। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल निकालिए और अपना नाम, शहर का नाम टाइप करके रखिए। अब मैं सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब दीजिए। सवाल ये है कि आने वाली एक फिल्म कर्ण की मैंने बात की थी, आपको बताना है कि इसमें मुख्य भूमिका में कौन होने वाला है, जिसकी मैंने बात ऑलरेडी आपको बता दी है। बस इतनी सी बात आपको बताना है, आज का आंसर यही है। जो आप आंसर देंगे ना, वही बन जाएगा बॉलीवुड सरताज के लिए सवाल का जवाब, और बॉलीवुड सरताज बनने के लिए यही कंडीशन है। बस आपको बताना है कि आने वाली जो मूवी है ओम प्रकाश मेहरा की कर्ण, उसमें किरदार, लीड रोल कौन निभा रहा है, कर्ण का किरदार कौन निभा रहा है, वो नाम आपको लिखकर भेजना है। 9868107070 वही वाला व्हाट्सएप मैसेज नंबर, मैसेज करने का नंबर है जो हमेशा के लिए यूज होता है, हमेशा से यूज होता है। 9868107070। आपके साथ हूँ मैं, बबिता त्रिपाठी, शो बॉलीवुड ट्रेल्स, यानी बीटी विद बीटी।

और आपको बता दूं कि हमारे हमारे जो फेवरेट स्टार हैं वो अगर थोड़ा सा भी हर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा भी ना, इन्ना सा भी, तो हमें चिंता हो जाती है कि वो ठीक हो जाएं, जल्दी से मूवी शूवी बनाते रहें और अच्छा अच्छा काम करते रहें, हमारे लिए एंटरटेनमेंट लाकर देते रहें, अच्छी अच्छी फिल्में करते रहें, ऐसी दुआ करने लग जाते हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग बॉस, और ऐसी ही फैन फॉलोइंग है कार्तिक आर्यन की, और उनके लिए सब दुआ कर रहे थे जल्दी से वो शूटिंग पर वापस लौट आए। तो वापस लौट आने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो फिल्म है कैप्टन इंडिया, वो अब शूटिंग उसकी शुरू हो चुकी है। अब थोड़ी दिन के लिए अब अटक गई थी इस मूवी की शूटिंग, क्योंकि कार्तिक को चोट लग गई थी, लेकिन अब कैप्टन इंडिया की शूटिंग फिर से वो शुरू करेंगे जल्द ही, और अभी वो चोट से उबर चुके हैं। ये है आज की खबर। फिलहाल आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी, आपके लिए सवाल पूछा जा चुका है, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा पूछा जाए तो आप लिख कर भेज दीजिए, नहीं तो इसी सवाल से काम चला लिया जाएगा।

0: थे।
1: ठीक है, नाचने देते हैं आप सब कुड़ियों को, और मैं भी तो एक कुड़ी ही हूँ ना, तो मैं भी नाची रही हूँ आप सब के साथ, क्योंकि आप सब शो के जो रिस्पांस दे रहे हैं वो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देखकर पढ़कर। और फिलहाल आपको बता दूं कि आपके लिए सवाल पूछा जा चुका है, अगर आपने सवाल नहीं सुना है तो मुझे क्या, आपने रिक्वेस्ट भी नहीं करी है कि मैंने नहीं सुना है, तो ठीक है मैं सवाल क्यों दोहराऊँ, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि आज है दीपक डोबरियाल का बर्थडे, तो मुझे कोई पार्टी वार्टी में बुलाया नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं तो उनको मैं, उनके मेरे फेवरेट कैरेक्टर

उन्होंने निभाए हैं, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी दिल से, और हैप्पी बर्थडे भी दिल से ही कहना चाहूंगी। आप सब आई एम श्योर मेरे साथ हैप्पी बर्थडे टू यू गाना पसंद करेंगे, तो गाएं। उससे पहले आपको बता दूं कि उन्होंने इतनी सारी मूवीज में जो जबरदस्त रोल करे हैं ना, मुझे लगता है उनकी लिस्ट बहुत लंबी नहीं होगी हिट फिल्मों की, बहुत ज्यादा लंबी ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत लंबा करियर है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस भी मूवी में उन्होंने काम किया है अपनी जो छाप छोड़ी है, अपनी एक्टिंग की जो छाप छोड़ी है, लास्ट में आपने उनको याद जरूर किया होगा। खास तौर से ओमकारा का जो रोल था रज्जू वाला, वो और साइड में जो एक मतलब हीरो के साइड में जो पप्पी तनु वेड्स मनु में कैरेक्टर निभाया है उन्होंने, पप्पी सिंह का, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में भी, दोनों में भी, भाई साहब जब मैं सिनेमाघरों से बाहर निकली ना जब ये दोनों मूवीज देख के, तो दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि मतलब पप्पी सिंह ने क्या कमाल कर दिया भाई। ऐसा लग रहा था कि हीरो तो यही थे, जो एक्टिंग का की जो मिसाल छोड़ी थी वो इसमें एक से बढ़कर एक सबने अपने परफॉर्मेंस निभाई, लेकिन पप्पी से ये उम्मीद नहीं थी। क्या ज़बरदस्त रोल निभाया था, और बहुत ज़बरदस्त रोल उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में भी, जैसे दबंग 2, चोर चोर, सुपर चोर, तनु वेड्स मनु का तो मैंने जिक्र कर ही दिया, प्रेम रतन धन पायो, अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही कमाल के कैरेक्टर्स इन्होंने निभाए हैं, और हम चाहते हैं ऐसे ही वो निभाते रहे। तो फिलहाल उनके लिए हम गाना गाते हैं एक साथ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।

मैं ना कहती थी कि मैं सवाल तभी पूछूंगी जब आप सब रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा पूछने के लिए। तो ठीक है, सुदर्शन मुखी और अनीता मुखी और सिमरन मुखी ने एक बार कहा है कि सवाल दोहरा दीजिए, मैंने सुना नहीं। हो जाता है, कोई बात नहीं। आज का सवाल अगर आपने नहीं सुना तो एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रही हूँ, इस बीच आपको आंसर दे देना है क्योंकि उसके बाद आप सबके नाम अनाउंस करना मैं शुरू कर दूंगी। तो अपकमिंग मूवी कर्ण में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, यही है आज का सवाल। और इसका जवाब आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए देना है 9868107070 पर, अपना नाम, अपने शहर का नाम, आंसर उसके बाद भेज दीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आती हूँ, आप सबके नाम शामिल करती हूँ।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

और आकाशवाणी रेनबो पर अब ये रहे आप सबके नाम जिन्होंने सही या गलत जवाब दिया है। आप सबके नाम शामिल करती हूँ, उसके बाद लौट कर आती हूँ बॉलीवुड सरताज को लेकर। फिलहाल आपको बता दूं मेरे पास सवालों की के जवाबों की झड़ी लग गई है। सवाल तो मैंने एक ही पूछा था भाई, जवाब इतने सारे, माई गुडनेस। 11 o'clock जब मैंने ज्वाइन मतलब शुरू किया शो, तभी से आंसर्स आने लग गए थे तुक्के वाले। फिलहाल आपको बता दूं कि मुझे जो आंसर दिख रहा है, नाम जो दिख रहा है, वो अभी दिख ही नहीं रहा है। मतलब इतना लंबा चौड़ा मैसेज किया है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिवशंकर का नाम शायद दिख रहा है, ये पुराना मंदिर कुछ जगह का नाम है शायद, ये इतना लंबा जगह का नाम भी इतना लंबा रहता है ना कई बार कि वो नाम गुम हो जाता है। और अब मैं ढूंढने वाली इसको भी नहीं हूँ। तरुण कोहली सूरजकुंड से लिख रहे हैं, और नेक्स्ट मैसेज दिख रहा है मुझे पूजा और कोमल का हरिनगर से, और सही जवाब के साथ ही ये सारी शुरुआत हो रही है। सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं, कान्हा मेरठ से लिख रहे हैं, अमित पालम से लिख रहे हैं, पंकज डोगरा चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, शिव मेरठ से लिख रहे हैं, बसंत तोमर मेरठ से लिख रहे हैं, विजय कुमार शालीमार बाग से लिख रहे हैं, भावना मेरठ से लिख रहे हैं, हरीश गौर मेरठ से लिख रहे हैं, मतलब पूरा मेरठ हमें सुन रहा है, राजीव श्रीवास्तव दिल्ली से, थैंक गॉड, निकिता पारेकर पुणे से, दिनेश नागर नाहर अमर कॉलोनी समथिंग समथिंग, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, प्रवीण चौहान भी मैसेज कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, और शैलजा का मैसेज कहीं से तो आया है, तरुण भारद्वाज से लिख रहे हैं, तरुण भारद्वाज हल्द्वानी से लिख रहे हैं, और राजकुमार संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, और आंसर दिख रहा है भाई नाम अपने लास्ट में क्यों लिखा प्रियांशु, अगली बार ध्यान रखिएगा, ये भी मेरठ से लिख रहे हैं। प्रियांशु मेरठ वालों को तो बताए ना कैसे आंसर देना है, आप मेरठ के नहीं लगते मुझे। एसडी बिजनौर से लिख रहे हैं, और उदय देसाई गोवा से लिख रहे हैं, मेहर लिख रहे हैं कहां से, एड्रेस डाला है इन्होंने और वही दिख रहा है मुझे। तो फिर अगला मैसेज कौन सा है उस पर जाते हैं। अनिल शाह का उत्तम नगर दिल्ली से मैसेज आया है, और अगला मैसेज किसका है भाई, पंजाब भटिंडा से तारा सिंह का है, सुदर्शन मुखी अनीता मुखी का मैसेज आया है, ऋषु कटारिया पवन कटारिया का भी मैसेज आया है, और अगला मैसेज किसका है, अपना नाम भी तो लिख दीजिए राजेश यादव, मैंने ढूंढ निकाला, और रवि जोशी मेरठ से लिख रहे हैं, कांट से मोहम्मद फरकान लिख रहे हैं, और अगला मैसेज विवेक सिंह चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, और अगला भाई मैसेज अपना नाम आपने इतना छुपा के क्यों लिखा है इंद्रजीत जी, लास्ट में नहीं लिखना सबसे पहले लिखना है, विवेक सिंह चंडीगढ़ से, अलका गुड़गांव से, और अगला मैसेज कौन है, उमेश कुमार ख्याला से। इतने सारे मैसेजेस, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। लौट कर आती हूँ बॉलीवुड सरताज बनाती हूँ आप में से किसी एक को, तो कृपया नेटवर्क में रहिए।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: बीटी विद बीटी में सबको इंतजार रहता है कि लास्ट में बॉलीवुड सरताज आखिर कौन होगा, और अब ये इंतजार हो गया है खत्म। मुझे खुद इंतजार होता है क्योंकि आप सब में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल होता है, और बॉलीवुड सरताज अब हमारे समक्ष मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते मैडम, मैं राम अवतार बोल रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर। कहाँ से बोल रहे हैं राम जी?
1: मैं जेवर से बोल रहा हूँ।
0: जेवर से, बहुत स्वागत जी। और एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस भी पहले बोल देती हूँ क्योंकि आपका नाम शामिल हुआ है, और उसके बाद जवाब पूछती हूँ। तो आज का जो सवाल है वो मैंने पूछा था कि आने वाली मूवी कर्ण में मुख्य भूमिका में कौन होने वाले हैं, ये आंसर आपको देना है। तो एक बार फिर से ऑन एयर दे दीजिए।
1: जी जी, सलमान खान मैडम।
0: सलमान खान, बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस आंसर देने के लिए।
1: थैंक यू।
0: और बॉलीवुड सरताज के लिए भी। तो कैसा लग रहा है राम जी, आपको पहले बनाया गया है बॉलीवुड सरताज हाल फिलहाल में?
1: मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैंने 5 महीने पहले बना था, लेकिन मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन आज क्वालिफाइड हो गया।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं आप?
1: मैं जॉब करता हूँ।
0: तो जॉब के बीच में आकाशवाणी रेनबो सुनने का समय कैसे निकालते हैं?
1: जी जी,
0: आपने जॉब के दौरान ही मतलब आकाशवाणी रेनबो ट्यूनिंग
1: किया है?
0: आधा दिमाग आपका काम करने में लगा हुआ है मुझे लगता है।
1: जी जी जी,
0: बहुत अच्छी बात है।
1: काम अच्छा हो जाता है।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप काम करिए और ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो से दिल तक जुड़े रहिए, ठीक है? ओके, बाय बाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो ये थे राम अवतार जेवर से, आज के बॉलीवुड सरताज, जिनसे बात की। और आपसे अभी फिलहाल मैं बबीता त्रिपाठी कहती हूँ टाटा बाबाए, लेकिन लौट कर आऊंगी 1 घंटे बाद 1 बजे आपके लिए कुछ खास लेकर आऊंगी। मैं हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी मोनी दीपा तालुकदार, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो आपको काफ़ी कुछ समझाने वाली हैं फूड पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप मिस मत कीजिएगा, आप अपने सवालों के साथ हाजिर हो जाइएगा 1 बजे। फिलहाल आप आकाशवाणी रेनबो से जुड़े रहिए। 12 बजे भी कुछ खास कम बात नहीं होने वाली है, क्योंकि प्ले इट कूल में आपके फेवरेट गाने बजने वाले हैं। तो आप सब आकाशवाणी रेनबो से इसी तरह से जुड़े रहिए, एंजॉय करते रहिए दिल से दिल तक। बाय बाय।

0: अरे रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
6: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
5: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
6: हैं? इतनी जल्दी?
5: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme,

और अब एफएम रेनबो पर पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगारों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। केंद्रीय गोबरधन योजना आज से प्रभावी हो गई है। ये योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। अखिल भारतीय शरणार्थी और धर्मनिरपेक्ष मिशन मोर्चा समेत 4 संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल 171 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कल हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हादसे में 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर के बर्फ से ढके इलाकों में 1 महीने तक चलने वाली जनसंख्या गणना आज से हो रही है। गणनाकर्ता केंद्र शासित प्रदेश के 16 जिलों में घरों का दौरा करके विवरण दर्ज करेंगे। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,925 लोग लापता हैं। नीदरलैंड के यूट्रेक्ट शहर में बलूच नेशनल मूवमेंट ने प्रदर्शन किया। इसके माध्यम से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघनों, हजारों लोगों के जबरन गायब किए जाने और हत्याओं सहित गंभीर मानवाधिकार हनन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज जैन संत तरुण सागर महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अपने तेजस्वी, निडर और प्रेरणादायक प्रवचनों के माध्यम से तरुण सागर महाराज ने यह सिद्ध किया कि धर्म ही धार्मिक आचरण, आत्मसंयम और मानव कल्याण का मार्ग है। नागालैंड में कैप्टन एन केंगुरु से महावीर चक्र स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का 10वां संस्करण 2 से 10 नवंबर तक आयोजित होगा। और फुटबॉल में एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर समय है रेनबो हेल्पलाइन का। और रेनबो हेल्पलाइन में आज किस टॉपिक पर बात होगी, किसके साथ बात होगी वो बता देती हूँ। फिलहाल बता दूं कि मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से।

बबिता त्रिपाठी और रेनबो हेल्पलाइन में आज बात होने जा रही है कि किस तरह से हम फूड को समझें जो हम बाहर से खरीद रहे हैं वो कितना सेफ है हमारे लिए, उसकी लेबलिंग पर ध्यान दें, डिस्प्ले पर ध्यान दें, ताकि जो भी खाएं और अगर फ्रेश नहीं है तो बेहतर तो हो ही, है ना। तो इसके लिए हम सबको ज़रूरी है जानना कि क्या क्या हमें देखना है कोई भी पैकेज्ड

0: भी हम बाहर से खरीद कर खाते हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं इस बात में, हमारी पूरी मदद करने वाली हैं, और वो हैं मोनीदीपा तालुकदार, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। तो मोनीदीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और बबीता जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप आती हैं, क्योंकि सेहत की इतनी सारी बातें बताती हैं, और हम सब इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ना अपनी सेहत को ही कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। तो ज़रूरी हो गया है कि हम पैकेज्ड फूड खाएँ, ज़रूरी हो गया है, या आज की नीड कह सकते हैं। कई बार टाइम नहीं रहता है, हमें ख़रीदना पड़ता है बाहर की चीज़ें, तो ऐसे में जब पैकेज्ड फूड आ रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि उनको समझें, उनकी लेबलिंग को समझें, और उस पर क्या लिखा हुआ है वो समझें, क्या डिस्प्ले है वो समझें। और ऐसे में आप हमारी कितनी मदद करने वाली हैं आप इस घंटे में, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए हमारे लिसनर्स को।
1: जी, तो हम शुरू करते हैं फूड लेबलिंग क्या है, ताकि लिसनर्स को समझ में आए कि आखिरकार उन्हें पैकेट पर किन चीज़ों को खास तौर पर गौर से देखना है। तो फूड लेबलिंग की यदि हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब है कोई भी फूड से रिलेटेड जानकारी, इन्फॉर्मेशन, चाहे वो रिटन है, चाहे वो प्रिंटेड है, या ग्राफिक के फॉर्म में है, जो फूड पैकेट के साथ और फूड के साथ डिस्प्लेड है या प्रिंटेड है। तो पहली बात यह है कि फूड लेबल एक्चुअली कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसके माध्यम से उनको ना केवल फूड का नाम या कस्टमर केयर नंबर पता चलता है, जबकि उनको फूड में पाए जाने वाले किन किन इंग्रेडिएंट सामग्रियों से मिलकर वो पदार्थ बना है, उसकी बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी कब है, और उसमें किस प्रकार की एडिटिव्स या फूड प्रोसेसिंग एड्स पड़े हैं, तो ये सारी, और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी फूड लेबल पर रहता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म चॉइस लेने में मदद कर सकता है कि क्या उसको वो फूड प्रोडक्ट जिसमें इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें इस प्रकार के एडिटिव्स हैं, उसको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए या नहीं।
0: और आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो मोनीदीपा जी अभी तो मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है बताने के लिए कि उनको क्या जानना है इस शो से। तो इससे रिलेटेड आपके जो सवाल हैं वो फटाफट बताइए, क्योंकि आपके पर्सनली आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप बताएंगे तो शो में और चार चांद लग जाएगा, क्योंकि हम शो आप ही के लिए लेकर आते हैं। तो आपकी किस तरह की इस प्रॉब्लम्स आती हैं इस टॉपिक पर से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई सवाल है तो फटाफट आप लिख कर भेजिए, लौट कर आते हैं। और लिखना कहाँ है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9868107070 पर, हमेशा की तरह 9868107070 पर। आप बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है किसी भी फूड प्रोडक्ट को खरीदते वक्त, अगर आप कहीं कुछ चेक नहीं कर पाए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आई, तो आप किस तरह से उसका निपटारा कर सकते हैं, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, किस हेल्पलाइन पर फ़ोन कर सकते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आप भी जानना चाह रहे होंगे। तो इन नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए जो मैं बता रही हूँ, और अपना सवाल पूछ डालिए। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए मैंने बताया 9868107070, और अगर आपको लगता है कि नहीं डायरेक्टली मुझे मोनीदीपा जी से बात करनी है, तो नंबर्स इस तरह से हैं, उनको लिख लीजिए 2342-1080 या 2342-1084, ये दो नंबर हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी अपना जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: और आकाशवाणी रेनबो पर चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी और आज रेनबो हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द फूड लेबलिंग एंड डिस्प्ले हमारी एक्सपर्ट मोनीदीपा तालुकदार जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप सब के सवालों के लिए बिल्कुल हैं तैयार, तो फटाफट अपने सवाल भेजिए 2342-1080 पर कॉल करके या कॉल कीजिए 2342-1084 पर या सिंपली व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए अपने सवाल 9868107070 पर। लेकिन सवाल ज़रूर भेजिए, सवाल आने शुरू भी हो गए हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरा एक सवाल है, मैं पर्सनली बताऊं मोनीदीपा जी, तो मैं क्या करती हूँ जब भी कुछ ख़रीदने जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा चेक किया तो एक्सपायरी डेट चेक कर लिया, उसके बाद ख़रीद लिया और लगा कि हमने तो मेरा काम हो गया, इससे भी ज़्यादा कुछ चेक करना होता है क्या?
1: जी, जैसे मैंने बताया लेबल पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन इतनी वाइटल है जो ये डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद कर सकती है। तो केवल नाम और नेम ऑफ द फूड के अलावा हमें लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार नाम जो होता है प्रोडक्ट का, उत्पाद का, उसमें बहुत ही फैंसी फ्लारी एडजेक्टिव्स लगे रहते हैं, रियल, ओरिजिनल, प्योर जैसे, लेकिन जब आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हैं तो कई बार प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन एक्सपोज हो जाता है, उसमें हमें पता चलता है कि उसमें इस प्रकार के एडिटिव्स हैं या इस तरह के इंडस्ट्रियल केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, और जो हमें फैंसी या फ्लारी लैंग्वेज में जो प्रोडक्ट का नाम है उसको जस्टिफाई नहीं करता। इसके अलावा न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन ज़रूर चेक करनी चाहिए, और अब नए प्रावधान के हिसाब से FSSAI ने जो ये नए प्रस्ताव दिए हैं जिसमें वो विजुअल लेबल वार्निंग्स लाने का सुझाव दे रहे हैं, जिससे हमें इनफैक्ट ये जानकारी भी मिल जाएगी कि क्या वो उत्पाद हाई इन फैट, हाई इन शुगर, सॉल्ट या HFSS की कैटेगरी में पड़ रहा है। और इस प्रकार की जो ये विजुअल लेबल वार्निंग है ये इतनी कारगर साबित हो सकती है जिससे एक बच्चा भी, इवन एक अशिक्षित आदमी भी या कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस हेक्सागनल लाल रंग के डिब्बे से आसानी से पहचान लेगा कि इस उत्पाद में अधिक चीनी है, अधिक नमक है या अधिक तेल है। इसके अलावा लेबल में फूड एडिटिव्स का डिक्लेरेशन मैंडेटरी है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कितने प्रकार के एडिटिव्स गए हैं, क्योंकि कई बार लोग ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, लोग नहीं चाहते कि उनके खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार का एडिटिव या प्रोसेसिंग एड हो। तो जब आप एडिटिव्स की लिस्ट चेक कर लेंगे और आपको लगेगा कि इसमें काफी एडिटिव्स है तो आप उस प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है उसके लिए कस्टमर केयर कंप्लेंट नंबर दिया जाता है, उसके लिए FBO का कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट नाम दिया जाता है, नेट क्वांटिटी मेंशन रहती है कि आपको सही मात्रा में वो प्रोडक्ट क्वांटिफाइड हो, उसका रिटेल प्राइस मेंशन रहता है ताकि आपको एक्सेस प्राइस चार्ज ना किया जाए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, साथ में लॉट कोड और बैच आइडेंटिफिकेशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए भी नंबर प्रोवाइड किया जाता है, और जैसे आपने बताया डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट बिफोर एक्सपायरी डेट या यूज बाय डेट तो इम्पोर्टेंट है ही।
0: लेकिन ये कई जो आपने लिखा बोला ये कई सारी चीजें विजिबल नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसमें क्या ही पढ़े, चलो छोड़ो उस समय ले लिया, लेकिन वो विजिबल नहीं है तो इसके लिए क्या करें फिर, वो पता ही नहीं चल रहा लिखा क्या है उसमें।
1: जी, प्रोविजंस के हिसाब से, FSS लेबलिंग एंड डिस्प्ले प्रोविजंस रेगुलेशंस के हिसाब से ये जो प्रिंटिंग रहती है लेबल पर ये अमिट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इरेज्ड या इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि सामान्य खरीदने और इस्तेमाल करने की जो परिस्थितियां हैं उसमें उपभोक्ता उसको पढ़ ही ना सके। पढ़ जाने सकने वाला प्रिंटेबल मैटर होना चाहिए, और लेबल पैकेट के साथ अच्छे से पेस्टेड या चिपका होना चाहिए, अलग से उखड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के लिए खासकर 3 मिलीमीटर का फॉन्ट साइज डिसाइड कर रखा है कि इससे छोटा फॉन्ट साइज नहीं होना चाहिए। और ये जो नए विजुअल लेबल वार्निंग फ्रंट ऑफ द पैनल आए हैं, इसका जो वार्निंग फॉन्ट साइज होगा वो 3 मिलीमीटर, यानी न्यूट्रिशन लेबल का जो फॉन्ट साइज रखा गया है उससे एक साइज ऊपर रखने का रिक्वायरमेंट है। तो अब नए प्रोविजंस के माध्यम से ये तय किया जा रहा है कि फॉन्ट साइज रीड रीडेबल हो, प्रिंटेबल हो, सही जानकारी दी जाए, क्लेम्स या एडवर्टाइजिंग मीनिंगफुल हो और किसी भी प्रकार का भ्रम

0: कंज्यूमर्स के मन में पैदा ना करें।
1: हाँ तो ठीक है, बस सवाल तो मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जब लिसनर्स इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं तो वो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको हम शामिल करें। SD बिजनौर से लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि वो बाहर से बाजार से किशमिश और बादाम की खरीद कर लेकर आए थे पैकेट्स में, और उसमें उन्होंने कुछ देखा नहीं था, लेकिन घर पर जब बादाम का पैकेट खोला और देखा तो उन्होंने टेस्ट अलग महसूस किया, और कहते हैं कि हमें कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए, कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिए।
0: बादाम एक फैटी फूड प्रोडक्ट है, यानी कि नट्स एंड सीड्स की कैटेगरी में आता है, जो फैट रिच, ऑयल रिच, उसमें नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं। और क्योंकि इस कॉमोडिटी में काफ़ी मात्रा में नेचुरल ऑयल्स होते हैं, इनफैक्ट हम बादाम खाते ही उसके अच्छे फैट की वजह से हैं। लेकिन यदि इसकी पैकेजिंग और इसकी स्टोरेज कंडीशंस पे को मेंशन्ड जो स्टोरेज कंडीशंस है उस पे नहीं स्टोर किया गया ड्यूरिंग इट्स का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेल आउटलेट, यदि वो स्टोरेज कंडीशंस या पैकेट की जो इंटैक्टनेस है उसको मेंटेन नहीं किया, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो पैकेजर हो या ट्रेडर हो या रिटेल आउटलेट में, उन कंडीशंस को मीट नहीं किया गया, तो जो बादाम के अंदर पाया जाने वाला नेचुरल फैट है वो ऑक्सीडेशन के लिए ससेप्टिबल होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसको रेंसिडिटी कहते हैं। तो नेचुरल फैट्स बड़ी आसानी से सनलाइट के एक्सपोजर से, यूवी एक्सपोजर से, ऑक्सीजन से, लाइट में इम्प्रॉपर फ्लक्चुएट टेम्परेचर्स के दौरान वो ऑक्सीडेशन के लिए ससेप्टिबल रहता है। तो आपका बादाम हो सकता है प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस में नहीं रखने के कारण, या ट्रांजिशन के दौरान किसी भी फेज में हो सकता है उसके पैकेट में कोई जो उसका टाइटनेस है, जो उसका उसमें वैक्यूम रहना चाहिए वो उसमें प्रॉपर नहीं रहा होगा, इसलिए बादाम ऑक्सीडाइज हो गया होगा और रेंसिडिटी डेवलप हो गई होगी, जिससे टेस्ट में फर्क आ जाता है और उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है।
1: ओके, एक सवाल और आया है कि नो एडेड शुगर, शुगर फ्री क्लेम वाले प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं और हर जगह मिलते हैं, परंतु उसमें मिठास बराबर होती है, तो क्या उसमें सच में किसी भी प्रकार का शुगर नहीं मिलाया जाता?
0: आजकल शुगर फ्री क्लेम करके अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट्स से बेहतर दिखाना, हेल्दियर दिखाना एक आम बात है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हम लोग शुगर अवॉइड कर रहे हैं, प्योर शुगर अवॉइड करते हैं, बट केवल शुगर फ्री क्लेम पे भरोसा करना सही नहीं होगा, आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट बिल्कुल चेक करनी चाहिए। यदि उसमें शुगर फ्री है और प्योर शुगर नहीं डाली गई तो उसमें शुगर का कोई दूसरा फॉर्म भी नहीं होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज या हनी, शहद, गुड़ या डेक्सट्रोज या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या मोलासेस, इस तरह की चीज़ें भी इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप चेक करें, नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में कोई शुगर का कोई प्रोडक्ट, यानी कि शुगर मेड कोई इंग्रेडिएंट भी नहीं होना चाहिए, जैसे जैम, जेली या चॉकलेट सिरप यदि इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिस्टेड है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट शुगर फ्री नहीं है।
1: okay.
0: इसके अलावा आजकल कई एंजाइम्स अवेलेबल हैं जो प्रोसेसिंग एड का काम करते हैं, तो कई बार इन एंजाइम्स का क्या काम होता है कि ये नेचुरल स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके नेचुरल शुगर रिलीज कर देते हैं।
1: okay.
0: तो ये नेचुरल शुगर प्रोडक्ट में बराबर मिठास बनाए रखता है, तो इस तरह से भी उसमें प्रोडक्ट में चीनी बराबर रहती है, लेकिन क्लेम के लिए शुगर फ्री डालना कंपनी के लिए आसान हो जाता है।
1: ओके, सवाल तो बहुत सारे और आ रहे हैं, लेकिन उन सबको लेने से पहले मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और लौट कर आते हैं। तो आप सब को भी कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही है फूड लेबलिंग और डिस्प्ले को लेकर, तो फटाफट इन नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए। व्हाट्सएप करने के लिए 9868107070 और कॉल करने के लिए नंबर है 2342-1080 या 2342-1084। लौट कर आती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद, आप सुनते रहिए रेनबो हेल्पलाइन।
2: अरे अंजलि, अब क्या तुम मेरठ से नहीं आ रही रोज?
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
4: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।

फूड जितने भी आ रहे हैं, हम सब की आज नेसेसिटी बन गए हैं। क्यों? क्योंकि भागदौड़ वाली लाइफ है, कितना भी हम कोशिश कर लें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी ही पड़ जाती हैं। और ऐसे में हमें डर अंदर सता रहा होता है कि क्या ये उतना सही है, हमारी हेल्थ पर कोई नुकसान तो नहीं होगा। मोनी दीपा जी, कई बार तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बाद में पता चलता है इसके बजाय ये खाओ। जैसे ब्रेड के लिए सुनते हैं कि वाइट ब्रेड अच्छी नहीं होती, ब्राउन ब्रेड खाओ। फिर थोड़े दिन बाद हमें समझ में आता है, कोई बोलता है कि नहीं नहीं ब्राउन ब्रेड में सिर्फ कलर ही मिला होता है और कुछ ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में कैसे डिसाइड करना है कि क्या खाना है और क्या ये ब्राउन ब्रेड हेल्दी है या नहीं है, कुछ

0: के बारे में भी बताइए।
1: ब्रेड से रिलेटेड आपने इतना उपयुक्त सवाल पूछा है क्योंकि बाजार में
0: बहुत तरह के स्पेशलिटी ब्रेड्स अवेलेबल है। ब्राउन ब्रेड है, होल व्हीट फ्लावर ब्रेड है, आटा ब्रेड है, ओट्स ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है। तो कंज्यूमर कैसे इन सबको समझ सके कि इनमें आखिरकार कुछ स्पेसिफिक या स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट है भी, या ये वही सफ़ेद ब्रेड है। ब्राउन ब्रेड के लिए रेगुलेशंस के हिसाब से जो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट है, जो कि आटा होता है ब्रेड्स में स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट, वो कम से कम 50% भाग पूरे आटे का या फ्लावर का आटा होना चाहिए ब्राउन ब्रेड के लिए, 50%। इसी तरह से जो होल व्हीट फ्लावर ब्रेड है, या हम जिसको आटा ब्रेड कहते हैं, उसके लिए प्रोविजन है कि कम से कम 75% भाग स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट, जो कि आटा, यानी कि 75% आटा होना ही चाहिए होल व्हीट फ्लावर ब्रेड के लिए। तो यदि आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने होल व्हीट फ्लावर या आटा कितना ऐड किया हुआ है। यदि इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन है कि 50%, या सपोज उन्होंने आपको 100 ग्राम आटा लिखा हुआ है, और टोटल क्वांटिटी ऑफ द फ्लावर जब आप सारे इंग्रेडिएंट प्लस करके देखेंगी वो आ रहा है 200 ग्राम, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इन्होंने एटलीस्ट जो प्रोविजंस है उसके को कंप्लाई किया है। कई बार 20% आटा डालकर अगर ये क्लेम किया गया है कि ये ब्राउन ब्रेड है, तो आप समझिए कि उसमें ब्राउन कलर ही एडेड है, कैरामल कलर ही एडेड है, और वो ब्राउन ब्रेड वाले हेल्थ बेनिफिट्स आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। मल्टीग्रेन ब्रेड के लिए भी रिक्वायरमेंट स्ट्रिंजेंट है कि ये जो मल्टीग्रेन्स हैं, जैसे अगर आप बाजरा, मिलेट या कोई भी मल्टीग्रेन डाल रहे हैं, कम से कम 20% भाग इस मल्टीग्रेन का होना चाहिए बाकी इंग्रेडिएंट्स के अलावा। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करने से आपको थोड़ी जानकारी मिलती है, और यदि यदि निश्चित मात्रा में उसमें वो आटा या मिलेट डाला गया है, तो निश्चय ही वो सफेद ब्रेड खाने से बेहतर रहेगा।
2: एक बिहार से सवाल आ रहा है, और अनुभव का ये सवाल है। उन्होंने कहा है कि हम लोग, इन्होंने बोला है कि वो जो मिल्क बेस्ड कुछ चीज़ें आती हैं बेवरेजेस में मिलाने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि इसको ख़रीदते हैं जब भी, तो उसमें शुगर की मात्रा कितनी होती है और कितना सेफ़ है ये लेना।
0: हाँ, ये आप मॉल्ट बेस्ड, सीरियल बेस्ड हम बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, सीरियल मिल्क बेस्ड बेवरेजेस की बात कर रहे हैं। ये प्रोप्राइटरी फ्रूट्स के कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब है कि इसका फॉर्म्यूलेशन फूड बिजनेस ऑपरेटर खुद डिसाइड करता है। ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो इनका कोई फॉर्म्यूला स्टैंडर्ड में या रेगुलेशंस में नहीं दिया जाता। ये फूड बिजनेस ऑपरेटर का अपना फॉर्म्यूला होता है, और वो खुद ये डिसाइड करता है कि उसको अपने कॉम्पोजिशन में कितनी चीनी डालनी है, कितना शुगर सब्स्टिट्यूट डालना है, कितना मॉल्ट डालना है, कितना मिल्क पाउडर डालना है। तो ये कंप्लीटली फूड बिजनेस ऑपरेटर का डिसीजन होता है। परंतु ये पाया गया है कि इस प्रकार के प्रोप्राइटरी फूड्स या मिल्क बेस्ड या सीरियल बेस्ड बेवरेजेस में चीनी की मात्रा काफ़ी अधिक डाली जाती है, ताकि और फिर इनको एनर्जी ड्रिंक या हेल्थ ड्रिंक करके इनको डिस्प्ले किया जाता है। और ये एनर्जी आप जानिए कहाँ से आती है, ये शुगर से ही प्राप्त की जाती है।
2: और जिस चीज़ को अवॉइड किया कर रहे हैं वही चीज़ उसमें मिल रही है
0: जी। और बच्चों की कैटेगरी में हेल्थ सप्लीमेंट्स या इस तरह के हम ड्रिंक्स काफ़ी प्रेफर करते हैं कि बच्चों को
2: बिल्कुल।
0: एनर्जी देगा, बट ज़्यादातर वो एनर्जी सिंपल शुगर से आती है।
2: अभी एक सवाल और इन्होंने लिखकर भेजा। उन्होंने लिखा है कि मिल्क, दही ये सब बाहर से खरीदते हैं, तो वो कितना हेल्दी है अगर वो पैक्ड खरीद रहे हैं तो?
0: पैक्ड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता के लिए कुछ मानक दिए गए हैं, जैसे आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखेंगे, एक्सपायरी बेस्ट बिफोर देखेंगे, उसकी रिटेल प्राइस देखिए, नेट क्वांटिटी के न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन देखिए, और देखिए कि कोई खास लेबल पे कोई क्लेम या एडवर्टाइजिंग तो नहीं की गई है। और यदि आप किसी ब्रांड का पैकेज मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो और इन्हीं गुणवत्ता के जो मानक हैं इन पर वो खरा उतरना चाहिए, और उनकी प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस में, चाहे वो रिटेलर ने रखा हो या आप खरीदने के बाद घर पे उनको उन मेंशन स्टोरेज कंडीशंस में उनको रखेंगे, तो इनकी फूड सेफ्टी सेफ मानना चाहिए जब तक कि इनको यदि आपको खास कोई डाउट हो तो आप इनकी जांच करवा सकते हैं अपने नियरेस्ट फूड

0: लेबोरेटरी से, लेकिन ज़्यादातर बेस्ट बिफोर डेट, एक्सपायरी डेट और प्रोडक्ट की लेबलिंग और उसकी स्टोरेज कंडीशंस और कंटेनर की कंडीशन को देख के भी आपको जानकारी मिलती है. यदि आपका कंटेनर स्वॉल्ड अप है, उसमें आपको लगता है गैस भरी हुई है, स्वल हो गया है, या डैमेज्ड कंटेनर है, तो इस प्रकार के पैकेज प्रोडक्ट्स खरीदना अवॉइड करिए और डिमांड करिए कि आपको एक इंटैक्ट कंटेनर मिले, राइट स्टोरेज कंडीशंस में रखा हो, और यदि सब कंडीशंस फुलफिल की गई हैं तो वो प्रोडक्ट सेफ है.
1: और एक सवाल इसी के साथ और होता है कि मिल्क की जब बात होती है या दही की बात होती है, तो कहा जाता है कि खरीद लो, हम तो खरीद ही लेते हैं जब जरूरत पड़ती है, तो फिर नहीं देखा जाता कि ये जो है फ्रेश, क्योंकि अवेलेबल नहीं है शहरों में जगह जगह पे, तो वो पैक्ड फूड ही या मिल्क या दही तो खरीदा ही जा रहा है. तो ऐसे में जब हम बहुत सारी चीज़ें सुन चुके होते हैं कि पैक्ड हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे में किस तरह से इसको गारंटीड माने कि ये फ्रेश है?
0: देखिए,
1: आपने जैसे बताया हम बहुत सारी चीजें देखकर हमें समझ में आ रही होती हैं, लेकिन क्या ये फ्रेश से के बराबरी कर सकता है क्या?
0: आजकल फ्रेश प्रोडक्ट की भी गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि इवन मिल्क प्रोसेसिंग एक्चुअली मिल्क की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए और बायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी के लिए मिनिमम लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कई खाद्य पदार्थ के लिए एसेंशियल है, और खासकर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो कि पेरिशेबल फूड कैटेगरी में आते हैं, हाई रिस्क फूड कैटेगरीज में आते हैं, इनके लिए मिनिमल प्रोसेसिंग मैंडेटरी है, एसेंशियल है, नहीं तो उसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन नहीं की जा सकती और उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज रहती है. उसमें ऐसे पैथोजेंस डेवलप हो जाते हैं मिल्किंग के 5 मिनट के अंदर कि वो वैसे भी कंज्यूमर सेफ्टी का इशू बन सकता है.
1: Okay.
0: इसलिए मिल्क के केस में खासकर मिनिमल प्रोसेसिंग इज अ सेफ्टी एंश्योर्ड. मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए यदि आप पैकेज्ड मिल्क, दही के प्रोडक्ट्स में क्योंकि प्रोबायोटिक्स रहते हैं, उनकी भी पैकेजिंग, स्टोरेज कंडीशंस, इंटैक्टनेस ऑफ द कंटेनर एंड मेंटेनेंस ऑफ दैट टेम्परेचर जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर इन सभी कंडीशंस को फुलफिल किया गया है तो मिनिमली प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स लेना सेफ है, क्योंकि खुला दूध लेना भी उतना ही रिस्की है जितना आप एक पैकेज मिल्क प्रोडक्ट को न्यूट्रिशनली इंफीरियर समझ रहे हैं.
1: ओके. एक सवाल आ रहा है, किसका है? शशि का है. शशि भूषण का सवाल है, लोकल हलवाई कभी भी मिठाई के बॉक्स पर एक्सपायरी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कभी नहीं लिखते, एक्सपायरी नहीं लिखते और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखते हैं. वो कहते हैं कि ये मिठाई हमने आपके सामने पैक की है, इसलिए लेबल की ज़रूरत नहीं है. क्या ये सही है?
0: ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स की कैटेगरी की इन्होंने बात करी है, और इसके कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली रेगुलेशंस में भी ऐसा कोई मैंडेटरी लेबलिंग रिक्वायरमेंट नहीं है. जो भी लेबलिंग रिक्वायरमेंट है वो वॉलेंट्री है. तो आप देखेंगे कि जो बड़े चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं या मिठाई के हैं बड़े चेन्स, वो जो प्री पैकेज्ड मिठाई सेल करते हैं उनमें आपको ये जानकारी मिलेगी, बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी या यूज बाय. बट जो छोटे लोकल मिठाई वाले हैं जो फ्रेश आपको डब्बे में पैक करके मिठाई दे रहे हैं, वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी भी नहीं है, ये वॉलेंट्री है. और फ्रेश फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी में इसको समझा जाता है, तो रेगुलेशन
1: तो प्रॉब्लम नहीं है, हम कंप्लेन नहीं कर सकते
0: नहीं है.
1: लेकिन कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके सवाल अगर हैं तो आप पूछ डालिए, या कोई भी सवाल आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ है तो फटाफट फोन घुमाइए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल पूछिए. आज हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप अपने सवाल पूछिए, और बता रहे हैं आपको कि आज हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द फूड लेबलिंग एंड डिस्प्ले पर. तो आपके सवाल जो भी हैं आप इन नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए जो मैं बताने वाली हूँ, और कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए 2342-1080 या 2342-1084 पर आपको कॉल करनी है. व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 9868107070 इस नंबर का इस्तेमाल करना है, 9868107070. आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट मोनी दीपा तालुकदार जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं. तो आप सबके सवाल बहुत जरूरी हैं, फटाफट अपने सवाल हम तक पहुंचाइए. सुनते रहिए रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी.

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर To listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric

0: और फिलहाल रेनबो हेल्पलाइन में जब हम बात कर ही रहे हैं कि किस तरह से जो पैक्ड फूड होते हैं उसमें लेबलिंग पर ध्यान दें, डिस्प्ले पर ध्यान दें और उसको समझें, और हमारे साथ हेल्प कर रही मोनी दीपा तालुकदार, तो बहुत सारे सवाल तो आने लाजमी हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो। और फिलहाल पैंथर तोमर का सवाल मुझे दिख रहा है और उन्होंने लिखा है कि किसी खाद्य सामग्री के पैकेट पर लिखे इंग्रेडिएंट्स, उनमें जो तत्व लिखे होते हैं वो किस क्रम में लिखे जाते हैं। और दूसरा सवाल, इसका जवाब दे दीजिए फिर बताती हूँ।
1: जी, ये बहुत ही उपयुक्त सवाल पूछा है, क्योंकि केवल इंग्रेडिएंट लिस्ट के नाम चेक करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखने का एक ऑर्डर है। जो इंग्रेडिएंट या सामग्री सबसे अधिक मात्रा में कॉम्पोजिशन में है फूड प्रोडक्ट के, उसका नाम सबसे पहले आता है, और क्रमशः जो सबसे कम मात्रा में सामग्री इस्तेमाल की गई है उसका नाम अंत में आता है। और ये ऑर्डर आपको इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे प्रोडक्ट पे लिखा होता है नेचुरल फ्रूटी फ्लेवर या फ्रूट बेस्ड, और जब आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि पहले तीन इंग्रेडिएंट शुगर के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो उसमें आपको शुगर, ग्लूकोस, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और नेचुरल स्वीटनर स्टीविया, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स, यदि आपको पहले तीन इंग्रेडिएंट्स आपको इस नाम के मिलते हैं तो ये एक अलार्म है कि पहले तीन हाई वेटेज इंग्रेडिएंट्स चीनी के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसीलिए इंग्रेडिएंट लिस्ट का ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इट कुड बी अ आई ओपनर फॉर यू।
0: और एक सवाल इन्होंने और लिखा हुआ है, और वो सवाल है कि यदि किसी पैकेट पर लिखी हुई सामग्री की मात्रा वास्तविक मात्रा से कम या अधिक पाई जाती है तो इसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है, और इस पर हमें बात करनी थी डिटेल में कि शिकायत कहाँ पर करनी जाए।
1: जी, ज़्यादातर यदि पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट है, ब्रांडेड पैकेज फूड प्रोडक्ट, तो नेट क्वांटिटी की मात्रा को काफ़ी नियंत्रित किया जाता है, और आपको बहुत ज़्यादा हेर फेर की गुंजाइश कम रहती है उसमें। किंतु न्यूट्रिशनल लेबलिंग में न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ की मात्रा में हेर फेर का स्कोप ज़्यादा रहता है, कि आप उन्होंने मेंशन किया हो कि इसमें आपको प्रोटीन 20 ग्राम मिलेगा लेकिन पाया गया 10 ग्राम है, तो वहाँ पे वो न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि आपने कोई प्रोटीन बार लिया किसी पर्पस से लेकिन आपको उतनी मात्रा में प्रोटीन नहीं मिली जितनी मेंशन थी। ये एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है।
0: लेकिन वो पता कैसे चलेगा?
1: इसके लिए फूड प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में एनालाइज कराना पड़ेगा। अच्छा। वो कंज्यूमर को अपने एंड पे कराना पड़ेगा, लेकिन यदि जांच करने के बाद ये पता चलता है कि वाकई में टॉलरेंस लिमिट होती है, एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स की भी टॉलरेंस लिमिट होती है, तो यदि 20 ग्राम मेंशन्ड है तो प्लस माइनस 20% का टॉलरेंस दिया जाता है। अच्छा। क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, शेल्फ लाइफ, न्यूट्रिटिन वैल्यूज में हेर फेर हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस 20% के बियॉन्ड यदि न्यूट्रिशन वैल्यूज में डिफरेंस पाया जाता है तो फिर उस लेबोरेटरी रिपोर्ट के साथ कंज्यूमर फाइनली फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप, जो एक ऑथराइज्ड ऐप है FSSAI का, अच्छा। उसमें जाकर विद ऑल अटैचमेंट्स, पिक्चर्स आप अपलोड करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, और यदि आपकी आपका कंप्लेन जेन्युइन पाया गया है, उसको इवैल्यूएट करके उसमें मेरिट पाया जाता है, तो आपका कॉम्पनसेशन भी बनता है, और आपका ये जो लेबोरेटरी खर्चा होता है उसको कॉम्पनसेट किया जाता है।
0: एक ऐप बता रही हैं आप, उस ऐप का नाम एक बार और बता दीजिए अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ हो।
1: जी, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप। जब आप FSSAI की साइट पे जाएंगे, आपको फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हेल्पलाइन नंबर भी है कोई?
1: ये आपको फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप में ही मिल जाएगा।
0: ओके, ठीक है। तो इतनी सारी सेफ्टी के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम क्या होता है कई बार हमारी वो लापरवाही होती है, कंज्यूमर के एंड से कई बार लापरवाही होती है, जब हम गलत चीज़ें घर ले आते हैं या उनका इस्तेमाल करने के बाद भी हम कई बार कंप्लेन नहीं कर पाते हैं अगर गलत आ गया है तो। और इस अगर हम सब अवेयर हो जाए ना तो शायद प्रॉब्लम्स कम होती चली जाएंगी। अभी एक सवाल मेरे पास आया है कि

0: भी पैक्ड कोकोनट मिल्क में क्या करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए? नंदिनी नायक लिख रही हैं।
1: जी, जस्ट लाइक एनी अदर पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट, कोकोनट मिल्क इज़ अ प्लांट बेस्ड मिल्क। तो प्लांट बेस्ड मिल्क होने के कारण रेगुलेशंस के हिसाब से कोकोनट मिल्क को भी उन्हीं सारे प्रोविजंस को अडेयर करना चाहिए या पड़ेगा जो किसी भी पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए लेबलिंग या डिस्प्ले या एडवर्टाइजिंग या क्लेम्स के जो रेगुलेशंस है, जो प्रोविजंस है, उन सभी को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको प्रोडक्ट का कंपोजिशन के कंपोजिशन इंग्रेडिएंट लिस्ट के अलावा उसमें जानकारी देख लीजिए कि उसमें वेज नॉन वेज का लोगो चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यदि आपने कोई प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट चूज किया है तो उसमें कम से कम वेज लोगो हो, क्योंकि ये इंटेंशनल चॉइस है उपभोक्ता की कि वो डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट ना चुन के प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट ले रहा है, तो कम से कम उसमें वेज लोगो होना चाहिए। एलर्जन डिक्लेरेशन ज़रूर चेक करें, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट बेस्ड मिल्क्स लोग एलर्जी कंसर्न्स के लिए शिफ्ट करते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट को प्रोटीन होने के कारण उसको एलर्जन समझा जाता है। तो वो एलर्जन डिक्लेरेशन चेक करिए कि कोई उसमें एलर्जिक सब्सटेंस तो नहीं है। और यदि आपने ऑर्गेनिक फूड कैटेगरी का प्रोडक्ट लिया है तो ऑर्गेनिक का जैविक भारत लोगो डेफिनेटली चेक करिए। और इसके अलावा एक्सपायरी बेस्ट बिफोर यूज बाय मस्ट है, क्योंकि वो एक प्रकार से प्रोडक्ट की गुणवत्ता को सीमित करता है और आपको बताता है कि मोर और लेस आपको प्रोडक्ट में की वो जो स्पेसिफिक, वो जो विशिष्ट गुण है उस उत्पाद में, वो कायम है कि नहीं है और फूड सेफ है कि नहीं है।
0: प्रकाश चंद्र रोहिणी दिल्ली से लिख रहे हैं, पहले ब्रेड पर एक्सपायरी डेट 5 दिन की होती थी, अब उसको बढ़ाकर 12 दिन कर दिया गया है, क्या ये सही है? इसका मतलब प्रिजर्वेटिव मिलाए जा रहे हैं, क्या ये हेल्थ के लिए ठीक है?
1: प्रिजर्वेटिव्स की लिस्ट चेक करने के लिए वो इंग्रेडिएंट लिस्ट में एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स का डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है, और ये डिक्लेरेशन इंग्रेडिएंट लिस्ट में रहता है। तो आप एक बार चेक करें कि क्या उसमें एडिड प्रिजर्वेटिव्स और जो फूड एडिटिव्स हैं, फूड एडिटिव्स INS नंबर के थ्रू मेंशन रहते हैं, और INS नंबर ज़्यादातर बहुत टेक्निकल है कंज्यूमर्स के लिए समझना कि INS नंबर क्या डिपिक्ट करता है। तो ये इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम डिपिक्ट करता है जो फूड एडिटिव्स को एक नंबर दे देता है। तो आप चेक करिए, यदि आपको लगता है कि आपके ब्रेड में प्रिजर्वेटिव, एडिड प्रिजर्वेटिव्स मेंशनड है, INS नंबर्स मेंशनड है, और आप गूगल में जाकर INS नंबर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा एडिटिव ऐड किया हुआ है। तो इन सारी जानकारी से कम आप एक इन्फॉर्म चॉइस ले सकते हैं कि आपको फ्रेश बेक्ड ब्रेड लेना है या आपको एक्सटेंडेड एक्सपायरी डेट वाला ब्रेड लेना है, और आपको उस आखिरी डेट तक अपने ब्रेड को एक्सटेंड करना है कि नहीं, आप उसको हफ्ते या 3-4 दिन में कंज्यूम करने का टारगेट रख सकते हैं।
0: ओके, एडवर्टाइजिंग क्लेम्स बहुत सारे आते हैं और उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि इससे हेल्दी कुछ है ही नहीं, इन्हें को फटाफट खरीद के खा लेते हैं और घर में बने इतना सारी मेहनत करने की क्या जरूरत है, उस पर कितना भरोसा करें?
1: एडवर्टाइजिंग्स और क्लेम्स पर आंख मूंद कर भरोसा करना काफ़ी रिस्की रहेगा उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि कई बार आप देखेंगे ब्रांड नेम ही अपने आप में एक क्लेम होता है। कई बार प्रोडक्ट का जो फैंसी नेम होता है उसी में ओरिजिनल, प्योर, रियल, इस तरह के एडजेक्टिव्स लगे होते हैं, और वो एक वर्ड प्ले जैसा है, वो कंज्यूमर्स को भ्रमित कर सकता है कि जैसा नाम वैसा ही प्रोडक्ट का गुण भी होगा। लेकिन जब भी इस प्रकार के ओरिजिनल, प्योर या इस तरह का लेबल नाम में क्लेम किया गया हो, तो आप तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को एक डिस्क्लेमर देना होता है कि नेम ओनली स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड डज नॉट डिपिक्ट द ट्रू नेचर ऑफ द प्रोडक्ट।
0: ओके,
1: यानी कि ट्रू नेचर प्रोडक्ट का प्रोसेस है, बट नाम के पर्पस के लिए इस प्रकार के प्योर, गुड, ओरिजिनल, रियल, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये डिस्क्लेमर काफी जानकारी दे सकता है कि प्रोडक्ट इज एक्चुअली प्रोसेस्ड।
0: ओके, एक आपने बात की थी कि नई विजुअल लेबल वार्निंग आई है, उसके बारे में आप बताना चाह रही थी, मुझे लगता है और डिटेल में हम जान सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ नया है हमारे लिए तो जानना जरूरी है।
1: ये बहुत ही ओवरड्यू एक प्रस्ताव आया है रेगुलेशंस में, जो कंज्यूमर्स के हित में है, जो बच्चों के हित में है, क्योंकि ये जो नई विजुअल वार्निंग अब एक हेक्सागनल लाल बॉक्स में दिखेगी फ्रंट ऑफ द पैकेज पे, जो ये हाईलाइट कर देगा कि प्रोडक्ट हाई इन शुगर है, हाई इन फैट है, हाई इन शुगर एंड फैट है, हाई इन शुगर फैट एंड सॉल्ट है. और इसके लिए भी जो कट ऑफ्स इस्तेमाल किए गए हैं ये बहुत ही जस्टिफाइड और साइंटिफिक है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के 2024 के डायट्री गाइडलाइंस से लिए गए हैं. तो एक फूड प्रोडक्ट को हाई इन फैट तब माना जाएगा जब 100 ग्राम सॉलिड फूड में 4.2 ग्राम से अधिक फैट होगा, तो उसको हाई फैट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. और वो लाल डब्बा आपको हाईलाइट करेगा कि दिस इज हाई इन फैट. हाई इन एडेड शुगर के लिए यदि 100 ग्राम सॉलिड फूड में 3 ग्राम से ज्यादा चीनी पाई जाएगी तो वो हाई इन शुगर की कैटेगरी में आ जाएगा. और इसी तरह से नमक यदि 0.625 ग्राम से अधिक होगा 100 ग्राम सॉलिड फूड में तो वो हाई इन सॉल्ट करके बहुत ही प्रोमिनेंटली अब डिस्प्लेड रहेगा.
0: ओके ग्रेट. तो मतलब अभी आपके लिए जितनी जानकारियां मिली हैं मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था. हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं और होप करती हूँ कि आप सबको बहुत समझ आई होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को जानने को मिली होंगी. हालांकि सवाल मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या करें, अभी टाइम कह रहा है कि हमें टाटा बाबाए कहना होगा क्योंकि आशियाना का समय होने वाला है. तो फिलहाल मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को दीजिए इजाज़त रेनबो हेल्पलाइन से. रेनबो हेल्पलाइन आज आपने सुना इस टॉपिक पर, अंडरस्टैंडिंग द फूड लेबलिंग एंड डिस्प्ले. और हमारे साथ एक्सपर्ट थी मोनी दीपा तालुकदार जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं. तो चलते चलते उनका ढेर सारा धन्यवाद उनको देते हैं.
1: बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में मुझे आमंत्रित करने के लिए.
0: बाय. One more time.

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगारों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। अमेरिका के एशविल

G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। केंद्रीय गोवर्धन योजना आज से प्रभावी हो गई है। यह योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। अखिल भारतीय शरणार्थी और धर्मनिरपेक्ष मिशन मोर्चा समेत चार संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल 171 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। जम्मू कश्मीर के बर्फ से ढके इलाकों में एक महीने तक चलने वाली जनसंख्या गणना आज से हो रही है। गणनाकर्ता केंद्र शासित प्रदेशों के 16 जिलों में घरों का दौरा करके विवरण दर्ज करेंगे। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ में 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,925 लोग लापता हैं। नीदरलैंड के यूट्रेक्ट शहर में बलूच नेशनल मूवमेंट ने प्रदर्शन किया। इसके माध्यम से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज जैन संत तरुण सागर महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नागालैंड में कैप्टन एन कैगुरोसई महावीर चक्र स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का 10वां संस्करण 2 से 10 नवंबर तक आयोजित होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और अंत में फुटबॉल में AFC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो ये थे FM रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

2:07 और पूरे 37 सेकंड वक्त आशियाना प्रोग्राम का वुमेन स्पेशल सेगमेंट आज हमारे साथ रहता है। और देखा जाए तो आज हर जगह हर क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, चाहे फिर वो क्षेत्र शिक्षा का हो, व्यापार का हो, इनोवेशन का हो या फिर कोई और क्षेत्र। महिलाएँ अपने हुनर, काबिलियत और मेहनत के साथ सफलता की नई कहानी गढ़ रही हैं। और आज सफलता की ऐसी अनूठी कहानी हमारे साथ रहेगी आशियाना प्रोग्राम में। और आज हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में, वहाँ पर हैं उमा सारस्वत जी, जो बहुत ही मेहनत के साथ आगे बढ़ रही हैं। और उन्होंने ऐसा कुछ अचीव किया जो वाकई उनके लिए बहुत मुश्किल था, वो सोच भी नहीं सकती थी, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगी।

0: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय, गजब का स्वाद।
8: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: वेलकम बैक आशियाना प्रोग्राम, आपके साथ मैं प्रियंका मामगन और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अराव ब्लॉक के धर्मई गांव की निवासी उमा सारस्वत के प्रयासों की शक्ति। उमा का परिवार गांव में रहते हुए खेतीबाड़ी के काम से जुड़ा हुआ था और अपनी पैतृक जमीन पर वो बाजरा, आलू और सब्जियों की खेती किया करते थे, लेकिन खेतीबाड़ी के काम में आमदनी बहुत कम थी और घर का खर्च चलाना, बच्चों की परवरिश, पढ़ाई के खर्चे के जोड़ तोड़ में जिंदगी पिसती हुई और बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रही थी, चल रही थी। वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना बहुत मुश्किल था और भविष्य दूर दूर तक अंधकार से भरा हुआ था। उमा सारस्वत इन विकट और विपरीत परिस्थितियों से निकलकर कुछ करना चाहती थी। ऐसे में उन्हीं के एक जानकार ने उमा को कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद के खाद्य एवं सब्जी संरक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया। इसमें कृषि विज्ञान वैज्ञानिकों अधिकारियों द्वारा महिलाओं को अचार, मुरब्बे, जैम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सके, उन्हें लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके और अधिक पैसे कमाए जा सके। उमा को कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण नजर आई और बिना देरी किए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद के खाद्य एवं सब्जी संरक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जी हाँ, अपना नाम लिखवा दिया और ट्रेनिंग शुरू कर दी।

0: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Mangal bhavan mangal hari dravahu sudash.
5: Shri Ram katha marmagya Dr. Kumar Vishwas ji ke saath Shri Ram charitmanas ki bhav ras sangeet yatra sampurna Shri Ram charitmanas somvar se shukravar subah 7 baje aur dopahar 12:30 baje DD National aur Waves OTT par.
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: साल 2017, जी हाँ साल 2017 में धर्मई गांव की उमा सारस्वत ने अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र से अचार, मुरब्बा, जैम, जैली बनाने की ट्रेनिंग ली और फिर उसी साल उन्होंने 5,000 रुपये की पूंजी लगाकर अचार बनाने के काम की शुरुआत की। शुरुआत आसान नहीं थी, आसपास के लोगों ने ताने दिए, बातें सुनाए कि अब ये दरवज्जे दरवज्जे जाकर अचार बेचेगी, कौन खरीदेगा इसका अचार। अधिकतर लोग तो घर पर अचार बनाना जानते ही है, ऐसे में कोई ग्राहक नहीं मिलेगा इसे। लेकिन उमा सारस्वत ने इन बातों के आगे हार नहीं मानी और आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने घर पर बने शुद्ध मसालों का इस्तेमाल करते हुए अचार बनाना शुरू किया। अपने अचार की क्वालिटी को हमेशा उन्होंने बेहतर रखा, कभी भी अपने अचार की शुद्धता क्वालिटी से समझौता नहीं किया और जब कभी उन्हें कोई दिक्कत आती तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से सलाह मशवरा करती। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी भी उमा सारस्वत की मेहनत, लगन और विश्वास को देखते हुए उन्हें भरपूर सहयोग देते हुए अपने ज्ञान की शक्ति से

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी आशियाना प्रोग्राम आपके साथ। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अराव ब्लॉक के धर्मई गांव की उमा सारस्वत के प्रयासों की शक्ति। शुरुआत में उमा ने अचार बनाकर अपने आसपास के बाजारों की दुकानों पर बेचना शुरू किया। उनके अचार की क्वालिटी, शुद्धता और स्वाद लोगों को बेहद पसंद आया और उमा के बनाए अचार की डिमांड बढ़ने लगी। जब उमा का अचार ज़्यादा बिकने लगा तो उन्हें बड़ी यूनिट लगाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने व्यवसाय के लिए सरकारी लोन लिया। उन्होंने साथ ही अपने हुनर, जो अचार बनाने का व्यवसाय था, उसको भी अच्छे से तराशने के लिए कई तरीके के कोर्सेज किए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया। उन्होंने कृषि मेलों में जाकर दूसरी महिलाओं, उद्यमियों के काम को समझा, सीखा वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं। और हमेशा बढ़ने की चाहत, आगे बढ़ने की चाहत के साथ उमा सारस्वत ने सही दिशा में मेहनत की। महज 5,000 रुपये से शुरू किया अचार बनाने का काम लाखों रुपये के व्यवसाय बिजनेस में बदल चुका है। उमा सारस्वत अचार बनाने के साथ साथ अपने आप को तो सपोर्ट कर ही रही हैं, साथ ही वो 10 से 12 महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। अपनी मेहनत, लगन के बल पर उमा सारस्वत कई पुरस्कार जीत चुकी हैं, सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। उत्कृष्ट महिला कृषक पुरस्कार, जनपद का गौरव और कृषक सम्मान पत्र भी वो सरकार द्वारा प्राप्त कर चुकी हैं। आज उमा सारस्वत आगे बढ़ते हुए कई लोगों को प्रेरणा दे रही हैं और आज उनके बनाए हुए अचार मुरब्बे, जी हाँ, सिरसागंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी और कई जिलों में बेचे जाते हैं। FM रेनबो परिवार उमा सारस्वत के प्रयासों की शक्ति को नमन करता है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज NCERT के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
0: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने लिखा है।
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी।

0: ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
1: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है। सादर धन्यवाद।
0: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
1: जी जी जी श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकनाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
0: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
1: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकनाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े क्या जवान क्या बच्चे सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
0: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की जिसमें कई लोग मारे गए।
1: जी,
0: वहाँ की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
1: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
0: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
1: जी,
0: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
1: जी,
0: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
1: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
0: ए लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
1: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
0: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
1: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
0: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
1: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
0: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
1: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
0: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओ, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहां हुआ था?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
5: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.
5: My name is Fly.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माय नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता

0: शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Happy birthday to you, Stephen!
5: Thank you. How are you? Happy birthday, Stephen! Thank you,
3: congratulations!
5: Thank you, John! Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
3: Oh, fine!
5: Thanks for coming in. Please come in.
4: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
3: Come! John, please come here.
4: Oh, sure.
5: Join us for a drink, please.
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
4: हाँ।

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं नहीं,
2: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका

0: और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
1: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ।1985 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
0: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
1: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
0: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
3: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
2: ग्रेट। धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए, सुनिए।
4: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरी

0: पेंटिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
2: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: बच्चे की थाली में जितने रंग उतना ही स्वस्थ उसका बचपन। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। कहते हैं ना, बचपन में मिली अच्छी आदतें और अच्छा पोषण पूरी जिंदगी का साथ निभाते हैं और जब बात बच्चों की हो तो उनकी सेहत और पोषण को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही उनके विकास पर असर डाल सकती है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संतुलित आहार, पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। तो आज न्यूट्रिशन वीक के इस खास मौके पर

0: बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, अर्ली चाइल्डहुड एंड न्यूट्रिशन, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था और पोषण पर। हम जानेंगे बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्षों में उसे किस तरह का पोषण चाहिए, उसकी बढ़ती उम्र में कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं और माता पिता किन किन छोटी बातों पर ध्यान रखकर अपने बच्चे को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, फॉर्मर सीनियर डाइटिशियन एम्स दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: और हमारे साथ हैं डॉक्टर राधिका सचदेव, पीडियाट्रिशियन, और आप IAP वेस्ट दिल्ली की प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच। मेरे सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: दोस्तों, हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में, जहां बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड एंड न्यूट्रिशन पर। तो डॉक्टर स्वप्ना, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्वस्थ शिशु के लिए एक माँ का स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है।
1: जो एक शिशु जब पैदा होता है दुनिया में, उसका सबसे पहले जो विकास होता है वो अपनी माँ के गर्भ में होता है। इसलिए माँ का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। माँ तभी स्वस्थ रह सकती हैं जब वो उनको अच्छा पोषण मिले, अच्छा खान पान मिले। इसलिए जो गर्भावस्था की जो स्थिति होती है, उसमें माँ को अपनी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी टाइम से मैरिज हो, उनको ठीक से, बल्कि जब वो किशोरावस्था में हों, एडोलेसेंस पीरियड में हों, तभी से उनका अच्छा न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए। घर पे आयरन रिच फूड है और कैल्शियम रिच फूड है, और उनकी उनके पेरेंट्स मॉनिटर करना चाहिए कि उनकी लंबाई और वजन वगैरह ठीक से है। उनके उम्र के हिसाब से उनको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, तो उनका सारा जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट वगैरह होता है वो एडोलेसेंस से ही शुरू हो जाता है। तो इन उसी टाइम हमको आगे देखना होता है, जब इनकी मैरिजेबल एज हो जाती है 18 साल के बाद, तो इनका पोषण बहुत ज़रूरी होता है। और ये अपना उत्तम संतुलित आहार लेके अपने बच्चे को स्वस्थ जीवन दे सकती हैं।
0: बीइंग अ पीडियाट्रिक डॉक्टर राधिका, आप क्या कहेंगे इस पे?
2: मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक 1000 डेज का कंसेप्ट है, 1000 दिन जो शुरू होते हैं प्रेगनेंसी से। तो प्रेगनेंसी के 9 महीने और शुरुआत के 2 साल बच्चे के, ये पूरे 1000 दिन होते हैं। और इसमें जो न्यूट्रिशन चलता है वो एक इन्वेस्टमेंट है, एक फ्यूचर के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए, जो उसकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी इम्यूनिटी, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसका गट डेवलपमेंट, सब में हेल्प करता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर बच्चे को हेल्दी रखना है तो एक मम्मी का स्वस्थ होना, एक यंग एडोलेसेंट फीमेल का स्वस्थ होना, क्योंकि नींव तो वहीं से पड़ती है, नींव तो बिल्डिंग की वहीं से पड़ती है। तो अगर एक एडोलेसेंट हेल्दी रहेगी तो मदर हेल्दी रहेगी तो बच्चा हेल्दी होगा। सो दिस इज़ ऑप्टिमाइजिंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन चाइल्ड। सो 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए।
0: जानेंगे इसके बारे में और भी बहुत कुछ। आज हम रेडियो डॉक्टर में बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड एंड न्यूट्रिशन पर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। कुछ गीत ऐसे होते हैं जब भी सुनो मानो दिल को छू लेते हैं। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड एंड न्यूट्रिशन की। तो डॉक्टर स्वप्ना, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे बच्चा जो हो वो स्वस्थ हो और वो हेल्दी हो।
1: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जब हम गर्भावस्था के बारे में बात करते हैं तो हम उसको पूरे 9 महीने में हम लोग मान के चलते हैं, तो वो उसको हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर लेडीज़ का वेट गेन नहीं होता है, क्योंकि उनको उस टाइम काफ़ी उल्टियाँ और जी मिचलाना इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। पर हम सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वेट गेन चाहते हैं, और टोटल वेट गेन 10 से 12 किलो आइडियली माना जाता है। और ये डिपेंड करता है, इस पे निर्भर करता है कि कितना पौष्टिक खाना ये मदर्स को मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम कैलोरीज भी बढ़ती हैं, ऊर्जा बढ़ती है, हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज देनी होती है वेट गेन के लिए। पहले ट्राइमेस्टर में नहीं है, पर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें उनकी डाइट प्लान करनी होती है। डाइटिशियंस की मदद लेके वो अपने लिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट उनको फॉलो करना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि अगर मदर्स को अपनी अच्छी क्वालिटी की बच्चों की ग्रोथ चाहिए तो उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, डिपेंडिंग कि वो वेजिटेरियन है नॉन वेज है। इसके अलावा जितने भी खनिज पदार्थ हैं और विटामिन हैं उनकी भी संख्या बढ़ती है डाइट में, तो इसलिए उनको एक संतुलित आहार में सारे फूड ग्रुप्स का यूज़ करना चाहिए, जिसमें सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं, अपने प्रॉपर जो शुगर का कितना अमाउंट लेना है ये सब। तो जिंक, आयोडीन, फोलेट, विटामिन ई, इन सब की साइंटिफिकली रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो उनको डाइट में ये सब शामिल करना ज़रूरी है जिससे कि वो एक स्वस्थ नवजात शिशु को जन्म दे सकें।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हाँ, शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। तो डॉक्टर राधिका, जैसे कि आपने बात करी थी 1000 डेज की, तो 1000 डेज क्या है और उस टाइम पर कैसे केयर करनी चाहिए?
3: 1000 डेज मतलब जब बच्चा, जैसे ही बच्चे को कंसीव करते हैं तो वो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स मतलब 270 डेज प्रेगनेंसी के और पहले 2 साल।

0: तो वो टोटल मिला के पहला साल, दूसरा साल और प्रेगनेंसी के डेज, वो मिला के अराउंड 1000 डेज होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ये 1000 डेज नींव है, बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रहा होता है बॉडी का, माइंड का, ब्रेन का, हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे गट का, बोन हेल्थ का, सारे सिस्टम्स की इस पे डिपेंड करता है। तो उस टाइम जो खाता है बच्चा, माँ खाती है, और उसके बाद जब बच्चा निकलता है तो निकलने के तुरंत बाद हमको 1 घंटे के बाद हम ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान शुरू कर देते हैं। और पहले 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, सिर्फ दूध, माँ का दूध, माँ का दूध, और ऊपर का कुछ भी नहीं। कुछ प्री लैक्टल फीड्स होती हैं, जैसे कई जगह हनी देते हैं, चाय दे देते हैं, पानी पिला देते हैं कि गर्मी है तो पानी पिला दो। बच्चे को 6 महीने तक ये बिल्कुल नहीं देना। तो ये तो हो गई 9 महीने की बात, जैसे मैडम ने बताया था, और फिर 6 महीने माँ का दूध, और उसके बाद हम पूरक आहार शुरू करते हैं, जिसको कि कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बच्चे को कॉम्प्लीमेंट करेगी ग्रोथ में। सिर्फ घर के बने हुए खाना, मैश किया हुआ खाना, मूंग दाल है, खिचड़ी है, दलिया है, फल है, सब्जियां डाल के धीरे धीरे ये सब शुरू करते हैं। और यही मतलब 1 साल का बच्चा जैसे 5 बार खा सकता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्लस 2 स्नैक्स, धीरे धीरे करके इसी को बढ़ाना है हमको। जंक फूड नहीं स्टार्ट करना, पैकेट के फूड्स नहीं स्टार्ट करने, और एक डाइटरी डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है, जैसे कि मैडम ने अभी कहा था कि सारे पदार्थ होने चाहिए, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, सीरियल्स भी, पल्सेस भी, और नट्स भी, सीड्स भी, फैट भी, सब इनकी एक पर्टिकुलर मात्रा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए।
1: डॉक्टर स्वप्ना, जैसे कि आपने हमें प्रेगनेंसी के दौरान बताया, तो जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद हमें कैसे डाइट देनी चाहिए?
2: जैसे कि अभी डॉक्टर राधिका ने बताया कि हम लोग को जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है वो 2.5 किलो होना चाहिए मिनिमम। उससे कम जो बच्चे पैदा होते हैं उनको लो बर्थ वेट बेबीज़ कहा जाता है। तो उनको फर्स्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। वो WHO का भी मैंडेट है, यूनिवर्सली फॉलो होता है कि पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध, कोई पानी नहीं, कोई प्री लैक्टियल फीड नहीं, कुछ नहीं देना है। उसके 6 मंथ्स बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सारे फूड ग्रुप्स को बहुत धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो हम लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट करते हैं जिससे कि बच्चे को निगलने में कोई दिक्कत ना है। और हम सारे फूड ग्रुप्स, जैसे अनाज है, हमें सूजी की पतली खीर बना सकते हैं, हम आटे का पतला हलवा दे सकते हैं, हम मैश्ड वेजिटेबल्स दे सकते हैं, सब्जियों को हम वेजिटेबल सूप के फॉर्म में पिला सकते हैं। और जहाँ हमें ऊर्जा बढ़ानी है, कैलोरी डेंसिटी बढ़ानी है, ऊर्जा ज़्यादा करने के लिए हमें उसमें तेल, घी या मक्खन ऐड करना ज़रूरी होता है। वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है उनकी ग्रोथ के लिए। और हमें मीठी चीज़ें भी देनी हैं, तो हमें बच्चों के टेस्ट बड्स एक्टिवेट करने के लिए हमें मीठा नमकीन दोनों देना चाहिए। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे मीठा मीठा बच्चों को देते रहते हैं कि उनका उनका वेट गेन हो जाता है, फिर वो नमकीन चीज़ें नहीं खा पाते हैं। हमें ऑल्टरनेटिवली हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे फैमिली टाइम होता है, ब्रेकफास्ट के टाइम आपको कुछ अनाज की बनी चीज़ दें, लंच टाइम पे आप थोड़ा दाल खिचड़ी या दाल चावल टाइप का दें जिसमें सब्जी भी मैश करके या सब्जियां खिचड़ी में मिला के दे सकते हैं। टी टाइम पे आप थोड़े स्नैक्स वगैरह दें, हेल्दी स्नैक्स दें बच्चों को, जैसे आपने फ्रूट्स वगैरह मैश करके दे दिए, उस तरह से कुछ नट्स हैं वो जब उनके दांत वगैरह निकल आएँ। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए, हम जितना डाइटरी डाइवर्सिटी रखेंगे, विभिन्न प्रकार के खाद्य वर्ग के जितने भी पौष्टिक फूड्स हैं हमें सब देना है। पैकेट फूड से उनको बिल्कुल दूर रखना है, कोई रेडी टू ईट खाना नहीं लाना घर में, कोई पाउडर मिल्क वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ऊपर का जो नॉर्मल दूध होता है जो भी हमारे घर में आता है वो हम इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क 2 साल तक हमें देना है बच्चे को, इन एडिशन टू द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो हमें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के आहार में शामिल होनी चाहिए, और हमें एनकरेज करना चाहिए कि बच्चा अपने आप जब खा सके तो फिंगर फूड्स वगैरह से शुरू करना चाहिए, जिससे कि वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो वो फैला के खाए। और हमें जब बच्चा प्री स्कूलर हो जाता है, स्कूल जाना शुरू करता है, हमें कोशिश करनी चाहिए उसके टिफ़िन्स में हम उसको घर की बनी चीज़ें दें और छोटे पोर्शंस पे दें, जिससे कि वो उठा के खुद खा सके और वो पौष्टिक होने चाहिए। जैसे पनीर के पीसेस हैं या पनीर का कटलेट दे दिया या वेजिटेबल कटलेट दे दिया इस तरह का, या छोटे छोटे चीला टाइप का जो रोल करके वो उठा के खा सकें। तो ये फिंगर फूड से हम शुरू कर सकते हैं कि बच्चा जब खाना शुरू करे, तो ये बच्चों की डाइट में बहुत ज़रूरी है कि हम सारे फूड ग्रुप्स को शामिल करें।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
3: हेलो जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: जी मेरा नाम ओम कुमार है, मैं यूपी से हूँ और मैं डॉक्टर साहब को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ।
0: नमस्कार जी।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: दो प्रश्न है डॉक्टर साहब।
0: जी
3: जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चा जो होता है वो 9 महीने से पहले भी क्यों हो जाता है, जैसे कि 8 महीने में और 7 महीने में, और उसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ऐसे?
0: अच्छा, बच्चे के प्रीटर्म होने के टाइम, समय से पहले होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मदर का स्वस्थ ना होना, मदर को ब्लड प्रेशर है या मदर को डायबिटीज़ हो गया है, शुगर की शिकायत हो गई है, या मदर के जो अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा हो गया है या बहुत कम है जिससे बच्चा ठीक से बढ़ नहीं पा रहा है, या बच्चे को कोई कंजेनाइटल एनामली है, या पानी लीक कर गया है। ये सब कारणों की वजह से बच्चे का वजन कम हो सकता है, बच्चा प्रीटर्म या IUGR जिसको कि बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन, उससे पैदा हो सकता है। और इसके नुकसान बच्चे को क्या हो सकते हैं? एक तो बच्चे के फेफड़े ठीक से डेवलप नहीं होते, तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, उसके लंग्स ठीक से डेवलप नहीं है, सर्फेक्टेंट एक चीज़ होती है वो पूरी तरह से मिलता नहीं है उसको, तो उसको डिस्ट्रेस के साथ साथ हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी जो आँत है वो भी मैच्योर नहीं है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर बच्चा प्रीटर्म हो, लो बर्थ वेट हो, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो, तो बहुत सारी चीज़ें इमिडिएटली आफ्टर बर्थ होती हैं और इसके कुछ कुछ इम्प्लिकेशंस बाद में भी होते हैं कि उनका मस्तिष्क कैसे डेवलप हुआ, उनका ऑक्सीजन कितनी उनको लगी, उनको कभी शुगर कम तो नहीं हुई निकल के, कैल्शियम कम तो नहीं हुआ, कभी दौरा तो नहीं पड़ा, गट कितनी मैच्योर थी, हम दूध कब से शुरू कर सकते हैं प्रीटर्म बच्चे को, तो वो बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। बट आजकल इतनी अच्छी सुविधाएं हैं और डॉक्टर्स इतने अच्छे से इक्विप्ड हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस और पीडियाट्रिशियंस भी, कि ये बच्चे भी पूरे तरह से नॉर्मल रहते हैं।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड एंड न्यूट्रिशन पे, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड एंड न्यूट्रिशन पर। तो डॉक्टर राधिका, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग जो माताएं कराती हैं, कई बार कह देंगी दूध नहीं आ रहा और वो बाहर का दूध, ऊपरी दूध देना शुरू कर देती है, तो ये कितना सही है कितना गलत है?
2: ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक मदर का डेवलपमेंट इस तरह से होता है, ब्रेन इस तरह से काम करता है कि वो एक बच्चे के लिए 2 साल या 5 साल तक सफिशिएंट दूध बना सकती है। तो और अगर बच्चा टाइम से पहले हो रहा है तो प्रीटम मिल्क अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट एक प्रीटम बच्चे की तरह होती है, प्रीटम बच्चे के हिसाब से होती है, और टर्म बच्चे की रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर तरीके से होती है। तो माँ का दूध, एक हेल्दी माँ 750 से ml से लेके 1 लीटर तक दूध बना सकती है पूरे दिन में, ये बच्चे के लिए पूरी तरह से पूरा है। बट एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि माएँ जल्दी जल्दी ब्रेस्ट स्विच करती हैं, 2 मिनट इस ब्रेस्ट से पिलाया, 2 मिनट इस ब्रेस्ट से पिलाया, ऐसे नहीं करना है। आपको एक ब्रेस्ट को पूरी तरह से कम्प्लीटली एम्प्टी करना है, क्योंकि जो मिल्क शुरू में आता है वो 4 मिल्क है, उसमें सब चीज़ें होती हैं लेकिन फैट नहीं होता है, और जो लास्ट के कुछ मिनट में मिल्क आता है वो हाइंड मिल्क होता है, उसमें फैट होता है। तो अगर हमारी एक ब्रेस्ट पूरी एम्प्टी हो जाती है तो बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ता है। दूसरी चीज़ ये, ब्रेन ब्रेस्ट मिल्क बनाता है, ब्रेस्ट सिर्फ एक मीडियम है, तो आप जैसा सोचोगे वैसा दूध बनेगा। और एक चीज़ और, बहुत सारे घरों में गाय का दूध या पैकेट का दूध शुरू कर देते हैं, तो मैं तो अपने पेरेंट्स से यही पूछती हूँ, बच्चों की मम्मियों से, कि भाई गाय का बच्चा कब चलना शुरू करता है और हमारा बच्चा कब चलना शुरू करता है? गाय का बच्चा पैदा होते ही चलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो वैसा दूध अगर बच्चे को मिलेगा तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा? अगर बच्चा माँ का दूध पिएगा तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा और एक पर्टिकुलर तरीके से उसकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए ऊपर का दूध देना बिल्कुल नहीं, 1 साल तक नहीं देना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ खीर दे रहे हैं, तो वो बेशक घर के दूध में बना के दे सकते हैं, बट मिल्क बेस्ड डाइट उतनी नहीं प्रेफर करनी चाहिए, बाकी चीज़ें देनी चाहिए और ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू करना चाहिए।
1: जैसे कि आपने कहा कि 1 साल तक माँ को अपना दूध देना चाहिए, तो डॉक्टर स्वप्ना आपसे जानना चाहेंगे कि 1 साल के बाद हमें किस तरह की डाइट बच्चे को देनी चाहिए?
3: जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री खाना शुरू होता है, बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू करते हैं। 1 साल तक उसको पारिवारिक खाने पे आना होता है, जिसमें वो सब तरह के खाद्य वर्ग खाता है, तो उसको सीरियल्स भी देने, पल्सेस भी देने, सब्जी और फल भी देना है, वसा भी देना है, चीनी भी देनी है, और प्रोटीन सोर्सेज जैसे वो वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, उसके हिसाब से सब कुछ देना है हमें।

0: बच्चे को, और हमें कोशिश करनी है कि एक साल तक जब बच्चा नॉर्मल सब खाना शुरू कर देता है तो उसको हमें आगे और थोड़ा बहुत वैरायटी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें ये देखना, जब तक वो इंडिपेंडेंटली ना खाने लगे तो हमें डाइट डाइवर्सिटी पे तो फोकस अपना बनाए रखना है, यानी सारे खाद्य वर्ग खाने हैं। इसके अलावा फिंगर फूड्स से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, वो अपने हाथ से जब तक उठा के नहीं खाना शुरू करते उनको तृप्ति नहीं होती है, तो उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए हमें उनको ऐसे फिंगर फूड्स देने हैं जो बच्चा अपने आप खा सके। और फिर धीरे धीरे जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो पैकेज टिफिन्स में बहुत पौष्टिक चीज़ें घर की बनी देनी चाहिए, जो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, पौष्टिक हो, और वो उसका पेट भरा रहे। जो बच्चे बार बार खाने के को ढूंढते हैं क्योंकि उनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता है, उनका पेट नहीं भरता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैडम नमस्ते, मैं रामनिवास गाजियाबाद से बोल रहा था।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: मैम मैं पूछना है कि जैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर लोग बोलते हैं 4, 8, 12, 32 कितने हफ्ते में बच्चा होना चाहिए, जैसे कोई कोई 8 महीने के बाद भी हो जाता है, क्या यह ठीक है या नहीं, ये पता करना है मेरे को।
3: ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आमतौर पे 9 पूरे महीने को हम फुल टर्म डिलीवरी मानते हैं, 37 कंप्लीटेड वीक्स को हम फुल टर्म डिलीवरी मानते हैं, तो 37 से 40 तक अगर हो रहा है तो वो पूरी टर्म डिलीवरी है, 37 से एक दिन भी अगर कम है तो उसको हम प्री टर्म मानते हैं, बट वो डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा 32 हफ्ते में हुआ है तो वो कम डेवलप है, लेकिन कोई 36 हफ्ते में हुआ है तो है तो प्री टर्म, बट फिर भी काफ़ी कुछ विकास और उसके दिमाग के विकास, गट का विकास, वजन काफ़ी बेटर हो जाता है, बट प्रीमेच्योरिटी के साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्रीटर्म डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, बट अगर होती है तो अच्छे से मैनेज करी जा सकती है। आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से बात करिए।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टाफ ऑन 25th एनिवर्सरी ऑफ द रेडियो फ्रॉम सरोज बंसल, अनूप कौर, गुरुग्राम से। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर स्वप्ना, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बच्चे होते हैं खाना खाने में आनाकानी करते हैं, खाना ढंग से खाते नहीं हैं, और आजकल ये पिकी ईटिंग की समस्या बहुत कॉमन हो गई है, तो ऐसे में क्या करें?
0: ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत फंसी हैं, पिकी ईटर्स हैं, उनको अपने एनवायरनमेंट से इतना इन्फ्लुएंस होता है, वो टेलीविज़न के सामने बैठ के खाते हैं और उसमें जितना भी एडवर्टिज़मेंट्स आते हैं, जैसे एक के साथ एक फ्री, उनको लगता है कि हम एक बर्गर मंगाएंगे हमें 2 फ्री मिल जाएंगे, या हम ये कोल्ड ड्रिंक पी लें, या वो आइसक्रीम खा लें, या ये चॉकलेट खा लें, ये सारी चीज़ें उनको बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, उनको टेम्प्ट करती हैं। तो हमें उनको सही एज पे, उनको हमें यही एज पेरेंट्स हमें ये रूल सेट करना है घर में कि हमें, हम आपको घर का बना ही खाना देंगे। उन्हें बर्गर पसंद है तो आप घर में पनीर और सब्जियों का टिक्की बना के उसमें लगा सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि आप किसी यू नो जंक फूड की शॉप से आप उनके लिए बर्गर ऑर्डर करें। इसी तरह अगर उनको किसी आइसक्रीम का मन है तो आप घर पे भी अपने प्योर प्रोडक्ट से दूध, आम वगैरह, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के आप आइसक्रीम बना सकते हैं। मदर्स को बहुत स्मार्ट प्ले करना होता है, उनको बहुत अच्छे फैंसी शेप्स में, बहुत कलरफुल वे में खाने को परोसना होता है, उनको टेम्प्ट करना होता है कि आप खा सकते हैं। जैसे जब काफ़ी पेरेंट्स बॉटल फीडिंग भी करते हैं बच्चे जबकि उनके बड़े हो जाते हैं, वो बहुत गलत है अपने आप में। तो जब हमें बॉटल छुड़ानी होती तब बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उस पर हम उनको अलग अलग फ्लेवर्स डाल के दे सकते हैं कि चलो आज हम पिंक दूध पियेंगे, आप दूध में रूह अफज़ा डाल के दे सकते हैं, या कोई आप यू नो स्मूदी बना के दे सकते हैं, आप उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह डाल के दे सकते हैं, उसको ब्लूबेरीज़ वगैरह, चेरीज़ वगैरह डाल के। उससे हमें बच्चों को ना अट्रैक्ट करना होता है थ्रू कलर्स, तो उनको कलर्स से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, और कलर और शेप्स, अलग अलग शेप्स के आप इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं जिससे कि बच्चे टेम्प्ट हों, और उनकी पिकीनेस हमें ख़त्म करनी है कि उन्हें एक ही तरह की चीज़ों का शौक ना डेवलप हो।
1: डॉक्टर राधिका, जैसे कि आपने हमें बताया था कि अभी एक साल तक माँ को अच्छे से दूध पिलाना चाहिए, तो ये उसमें 6 महीने का ही पीरियड क्यों सिलेक्ट किया है कि 6 महीने में ज़्यादा खास ध्यान रखना होता है, और क्या सॉल्ट और शुगर देना है एक साल तक? उस पे पेरेंट्स को काफ़ी माइंड में रहता है कि दें या नहीं दें।
3: ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 6 महीने क्यों सेलेक्ट किया गया है? क्योंकि 6 महीने पे बच्चा बैठने लायक हो जाता है। पहले जब मैंने पढ़ाई करी थी तब 4 महीने का टाइम था कि आप वीनिंग कर दीजिए। आजकल ना तो हम वीनिंग टर्म यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीड को कॉम्प्लीमेंट करे। और 6 महीने का टाइम इसलिए क्योंकि बच्चा स्वॉलो करना, निगलना सीख जाता है, उसकी टंग की मूवमेंट्स मैच्योर हो जाती हैं, उसकी जो आंतें हैं वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए मैच्योर हो जाती हैं, उसकी गर्दन का कंट्रोल आ जाता है, उसकी पीठ का कंट्रोल आ जाता है। ये तो हुई 6 महीने की बात। और नमक और चीनी, जितना खाना हम खाते हैं बच्चे को, इवन ब्रेस्ट मिल्क में भी नमक होता है, हम जो बाकी खाना दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, सब में सोडियम की मात्रा होती है, तो उनको 1 साल तक नमक नहीं देना होता। और एग्जैक्ट हम देखेंगे तो 1 ग्राम नमक पर डे इज़ अलाउड, वो पूरी चीज़ों से मिल जाता है। 1 साल के बाद हम धीरे धीरे नमक इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि 3 साल तक 3 ग्राम, फिर अडल्ट होते होते तक 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं देना चाहिए। और चीनी का ये है, 2 साल तक हमें एडिशनल शुगर ऊपर से मिली हुई चीनी, चाहे वो गुड़ हो, चाहे सफ़ेद चीनी हो, चाहे ब्राउन चीनी हो, कोई चीनी नहीं देनी चाहिए। नेचुरल शुगर्स इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स वो अलाउड है, बट ये कि हम जैगरी दे दें, जैगरी शुगर नहीं है, जैगरी इज़ ऑल्सो शुगर, तो हमें शुगर और सॉल्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि आगे जाके ऐसे बच्चों में देखा गया है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये बहुत ज़्यादा होती हैं, और एक बच्चे की किडनी नमक को हैंडल नहीं कर पाती, तो ऐसे बच्चे आगे जाके हाइपरटेंसिव ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए नमक नहीं देना। और हमारी टंग का ना नेचुरली एक प्रेफरेंस होती है शुगर के लिए, तो अगर हम शुगर खिलाना शुरू कर देंगे तो वो वैसे ही प्रेफरेंस हो जाएगी कि बच्चा मीठी चीज़ें ही खाना प्रेफर करेगा। तो हमें शुरू में बिना नमक बिना चीनी के खाना देना चाहिए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
4: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: मेरा नाम कांता देवी है। मेरे फोन में थोड़ी कम आवाज आ रही है, आप मेरा सवाल सुन लो। मेरा एक पोता है, 1.25 साल का हो चुका है मैडम
1: जी,
4: और वो आ के सिवा कुछ नहीं बोलता है, जैसे होटो को मिला के बाप अम्मा ये नहीं बोलता, और अपने उस पर खड़ा नहीं होता, पकड़ने से चलता है।
3: मैडम आपका बच्चा कितने टाइम का हो चुका है? आपने क्या कहा? 1.25 साल।
4: महीने का पूरा होकर 16 महीने में लग गया, सिर्फ आ ऐसे बोलता है।
3: अच्छा, आप क्या उसको मोबाइल और टीवी दिखाते हैं?
4: वो तो जी उसकी माँ दिखाती होगी, मैं दादी हूँ उसकी।
3: नहीं मैडम, अगर तो माँ टीवी और मोबाइल दिखा रही है तो सबसे पहले तो घर में वो बंद कर दें।
4: हाँ, क्योंकि लेकिन मतलब उसको बा बा माँ माँ कुछ बोलना चाहिए, वो आ बोलता है बस, वो सब नहीं मिलाता।
3: तो उसकी पूरी तरह से एक जांच होनी चाहिए, उसको कहीं टंग टाई तो नहीं है, दूसरा उसका कोई स्क्रीन एक्सपोजर तो नहीं है, तीसरा क्या वो टाइम से पैदा हुआ था, क्योंकि कई बार जो टाइम से पैदा नहीं होते बच्चे वो देर से चलते हैं, उनके
4: वो हंसता भी है और खाता भी है और उंगली पकड़ कर चलता है।
3: तो मैडम उसका चलना ठीक चल रहा है, वो अपने आप चल लेगा, बट उसकी स्पीच
4: उंगली छोड़कर खड़ा नहीं होता, 1.25 साल का हो गया।
3: तो आप अपने बच्चों के उसके डॉक्टर को दिखाओ, जिससे उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट एसेस कर सकें कि उसके चलने फिरने की, उसकी मांसपेशियों में कितनी स्ट्रेंथ है, वो एक बार पूरी तरह से जांच करनी पड़ेगी। तो आपके निकटतम जो भी पीडियाट्रिशियन है उनको दिखाइए।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये है जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, लिखते हैं डॉक्टर गर्ल चाइल्ड को कितने साल माँ का दूध देना चाहिए और बॉय चाइल्ड को कितने? अगर माँ सेकेंड चाइल्ड से प्रेगनेंट हो जाए जब पहला बच्चा सिर्फ 1 साल का है, तो क्या कम दूध उसके आगे की परवरिश पर असर डालता है?
3: गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड में कोई फ़र्क नहीं है, हम यहाँ से फ़र्क करना ना शुरू करें, दोनों बराबर हैं, दोनों को कम से कम 2 साल तक माँ का दूध मिलना चाहिए। और हाँ, ज़रूर डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है अगर बच्चे को माँ का दूध ना मिले, बट अगर माँ प्रेग्नेंट हो गई है और सेकेंड बच्चा रखना है, आइडियली तो 2 बच्चों के बीच का गैप 3 साल इसीलिए रखा गया है कि एक बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो सके और माँ का शरीर भी दूसरे बच्चे को पैदा करने के लिए सक्षम हो। बट अगर माँ प्रेग्नेंट हो गई है तो बेटा ये तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है, इसमें तो आप जितना दूध माँ बच्चे को पिला सकते हैं वो पिलाइए और अपना खान पान अच्छा रखें, जिससे आप अगले बच्चे को भी अच्छे से दूध पिला सकें।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
5: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
5: नमस्ते, रघुवीर सिंह ठाकुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ
1: जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
5: मैडम मेरा ये प्रश्न था कि जैसे गांव में भी कुछ, या पहले जैसे बच्चों का न्यूट्रिशन ठीक से नहीं होता, जैसे कभी कभी गांव में छोटे बच्चों को भी चाय पिला देते हैं दूध की जगह में, या उनको माँ का दूध या घर में गाय का दूध भी नहीं देते, जैसे कभी कभी देखते हैं या पुराने लोग, ये तो उसका बाद में क्या फर्क पड़ता है, या बाद में उनको दूध देने से या कोई न्यूट्रिएंट देने से उसका जो बचपन में जो उनको ये नहीं दिया गया था उसका फायदा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ये सवाल था मेरा।
0: आपका सवाल बहुत अच्छा है। कई जगहों पे अगर आर्थिक स्थिति की वजह से दूध उपलब्ध नहीं होता है तो बच्चों को चाय पिलाई जाती है, और उस चाय में दूध बहुत कम होता है, पर इतने छोटे बच्चे पे वो ये निर्भर करता है कि आप किस उम्र से बच्चे को चाय देना शुरू कर रहे हैं। अगर बहुत ही छोटा बच्चा है, 6 महीने के ऊपर का बच्चा है, तो उसको ये बहुत हानिकारक होगा कि हम उसको चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक इस तरह की कोई चीज़ हमें नहीं देनी है। जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सिर्फ स्तनपान कराना है माँ को 6 महीने तक, और 2 साल तक स्तनपान कराना है, और अगर देना है तो ऊपर का दूध जो भी घर का आता है गाय भैंस का वो देना है। पर जिन बच्चों को दूध वगैरह नहीं मिलता है, दूध या दूध के बने पदार्थ, उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है और विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, उसमें उनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, शरीर में हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी मांसपेशियाँ ठीक से विकास नहीं कर पाती, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। उससे बच्चों के उसमें टेटनी भी कहते हैं हम, कैल्शियम टेटनी जैसे सिम्टम्स भी होते हैं उनको, उनके हाथ पैर अकड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि माँ के दूध के साथ उनके उनका ऊपर का जो दूध है वो कम से कम आधा किलो लेना चाहिए, कम से कम 2 से 5 साल तक। तो आपको ये हम लोग को ये पक्की तरह सोचना है कि हमें चाय नहीं देनी है, हमें दूध उनको देना है। और जिन बच्चों को दूध नहीं सूट करता है, अगर किसी कारण उनको लैक्टेज डेफिशिएंसी है या कोई एंजाइम डेफिशिएंसी जिसमें दूध नहीं पच रहा है और बहुत ज़्यादा पेट में तकलीफ है, फिर डॉक्टर खुद ही कहते हैं कि इनको दूध नहीं सूट कर रहा है, दूध बंद कर दीजिए, तो उस केस में हम लोग ऑल्टरनेट सोर्सेज प्रोटीन के हम लोग ढूंढते हैं कि हम उन्हें सोया प्रोटीन दे सकते हैं, सोया मिल्क दे सकते हैं, बादाम का दूध दे सकते हैं, या और कोई हम छाछ लस्सी जिसमें कम लैक्टोज होता है उस तरह के हम पदार्थ दे सकते हैं। पर दूध और दूध के बने पदार्थ आधा किलो कम से कम 5 साल तक कंटिन्यू होना चाहिए अपने ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर से।
1: डॉक्टर राधिका, आप क्या कहना चाहेंगी?
3: ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, एक तो ये इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे को दूध ठीक से नहीं मिला, दूसरी एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आते हैं जो बच्चा लगभग 1 साल पे 12 किलो का है, उनसे अगर पूछो मदर से या दादी से या नानी से कि बच्चा दूध कितना पीता है, तो बहुत प्राउडली वो बताते हैं कि हमारा बच्चा तो 1.5 लीटर दूध पी जाता है। तो वो भी गलत है कि अगर बच्चा 1.5 लीटर दूध पिएगा, एक 60 किलो का आदमी 1.5 लीटर दूध ना पिए तो एक 10 किलो का बच्चा या 12 किलो का बच्चा 1.5 किलो दूध क्यों पिए? दूध पीने से, ज़्यादा दूध पीने से, या हम दूध दूध की चीज़ें देते रहेंगे, बाकी चीज़ों से सप्लीमेंट नहीं किया, तो आयरन डिफिशेंसी हो जाती है। तो आयरन डिफिशेंसी बहुत कॉमन है इंडिया में, लगभग 65% बच्चे आयरन डिफिशेंट हैं, और आयरन खून के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट ऑल्सो, तो मस्तिष्क के विकास के लिए भी आयरन की ज़रूरत होती है, और दूध में आयरन नहीं होता। और आमतौर पर बहुत सारे पेरेंट्स तो डब्बा अफोर्ड कर लेते हैं कि अगर माँ का दूध नहीं हो रहा, या जैसे इन्होंने बात करी दूध नहीं मिला, बट गाय भैंस बकरी के दूध में तो बहुत कम आयरन होता है और रिच भी नहीं होते। और जो भी आप दूध दे रहे हैं उसको कृपया पानी मिला के ना दें, डाइल्यूट करके ना दें, अनडाइल्यूटेड दूध दें जितना भी दें, बट दूध की मात्रा लिमिटेड रखें, 400-500 ml प्रतिदिन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नहीं तो आयरन डिफिशियंसी का डर होगा।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड एंड न्यूट्रिशन पे, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड एंड न्यूट्रिशन पे। तो डॉक्टर राधिका, आपसे जानना चाहेंगे कि ये फूड पिरामिड क्या होता है।
1: ये फूड पिरामिड बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें जो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ें चाहिए, हमारी थाली जो होती है ना, वो एक कलरफुल थाली होनी चाहिए। उसमें लाल, पीला, हरा सारे रंग होने चाहिए। वो बच्चे को बहुत स्टिमुलेट करता है, उसके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स की। उसके बाद आते हैं पल्सेस, फिर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, लास्ट में आता है नमक, चीनी, नट्स, सीड्स, ये सब। तो हमारी जो थाली है उसमें आजकल जो बोल रहे हैं, पहले तो बोलते थे सीरियल्स सबसे ज़्यादा होने चाहिए, अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो बोल रही हैं कि वेजिटेबल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। तो 50% थाली वेजिटेबल से भरी होनी चाहिए, और उस 50 में से भी अधिकतर वेजिटेबल्स होने चाहिए और बाकी फ्रूट्स होने चाहिए, और बाकी 50% में चावल।

0: दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सब होना चाहिए। तो ये फूड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। और एक तो मैल न्यूट्रिशन होता है, दूसरा मैल न्यूट्रिशन के साथ साथ आजकल देखा गया है कि बच्चे जंक फूड बहुत सारा लेते हैं। उनकी थाली कलरफुल होने की जगह सॉस, जैम, बर्गर से भरी होती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग समझाते हैं अपने पेरेंट्स को कि जंक्स नहीं देने चाहिए। जंक्स का एक बहुत ही सुंदर सा फुल फॉर्म है, वो मैं अपने जो 5 साल 6 साल तक के बच्चे आते हैं, एडोलेसेंट बच्चे आते हैं, उनको भी बताती हूँ। जे फॉर जंक फूड। जंक फूड वो जिसमें फैट, सॉल्ट और शुगर ज़्यादा होती है। फिर यू से अल्ट्रा प्रोसेस्ड बर्गर, पिज्ज़ा, पैटी और इवन ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, म्यूजली, और जो फूड मिक्सेस आते हैं वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं। सी से कैफिनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि अभी चाय कॉफ़ी की बात हो रही थी, कलर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इवन लड्डू में भी कलर डाला जाता है। एन से न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट, जिनमें ना आयरन है, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कुछ नहीं है। और एस से शुगरी ड्रिंक्स, फ्रूटी, ट्रॉपिकाना, रियल जूसेस, या हम बॉर्नविटा हॉर्लिक्स भर भर के देते हैं, उससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता। एक अच्छी कलरफुल थाली ही एक सक्सेस मंत्रा है आगे के लिए।
1: एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हेलो, आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी। ऑल्दो वी टीच आर चिल्ड्रेन नॉट टू ईट जंक फूड्स एज दे आर हार्मफुल, वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी टू एक्सप्लेन आर चिल्ड्रेन द प्रॉन्स प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईटिंग जंक फूड। थैंक यू।
2: हाँ, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जंक फूड के प्रोज एंड कॉन्स हैं, हमें जानना चाहिए कि अगर हम उसका देखें, फ़ायदा कुछ नहीं है उसका, तो प्रोज तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई है, एग्जिस्ट करता है। कॉन्स ये हैं कि उसके जो नुकसान हैं, उसमें देखिए फाइबर नहीं होता, उसमें नमक बहुत तेज़ होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं, उसमें चीनी बहुत होती है, उसमें अनहेल्दी फैट्स होते हैं। अगर हम घर पे कोई चीज़ बनाएंगे तो हम देसी घी या अच्छे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से के साथ बनाएंगे, पर जो बाहर जो जितना भी तला सामान मिलता है उसमें ज़्यादातर हाइड्रोजनेटेड फैट यानी विच आर रिच इन ट्रांस फैट, वो उसको इस्तेमाल करके हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं या बर्गर्स को उसमें गरम करते हैं। तो ये सारे जो है ये बहुत टॉक्सिक होता है, यंग एज से ओबेसिटी को प्रमोट करता है। तो इसीलिए हमें कॉन्स उसके देखने हैं। एक तो उसमें जैसे मैंने कहा, एंड दे आर हाईली सॉल्टी, हाईली शुगरी, तो ये सब हमारे ज़्यादा शुगर लेने से बच्चों के दांत भी ख़राब होते हैं, उनका वेट गेन भी होता है, और अगर हम ज़्यादा वसा देते हैं तो उनकी ओबेसिटी बढ़ती है। और हम लोग को ये भी देखना है कि वो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड खाना खाएं, ना कि जंक फूड की तरफ जाएं। तो हमें बच्चों को जो भी उन्हें जंक फूड पसंद है, अगर पिज्ज़ा पसंद है, ट्राई टू मेक होममेड पिज्ज़ाज जिसमें खूब सारी पनीर और सब्जियों की टॉपिंग हो, और आप घर पे बनाएं उसको। आप अपना पिज्ज़ा बेस भी घर पे बना सकते हैं। आजकल तो बहुत तरह के आटे आते हैं, व्हीट, होल व्हीट फ्लार के आटे आते हैं, आपको मैदा का बेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल यूट्यूब्स पे इतनी अच्छी रेसिपीज़ आती हैं, हेल्दी रेसिपीज़, आप मिलेट बेस्ड भी बना सकते हैं, मिलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को बर्गर पसंद है, उसमें टिक्की डालिए आप सब्जियों की और पनीर की, आप मिक्स वेजिटेबल सूप बनाइए बच्चों के लिए कि कितना कलरफुल सूप है, आप इससे बिग एंड स्ट्रॉन्ग बनोगे, है ना। स्पिनेच वगैरह को प्रमोट करिए आप उनके आटे में, आप अपना पालक गूंद दीजिए, मेथी गूंद दीजिए, दाल का पराठा बना दीजिए, और आप ऐसी पकौड़े, पालक के पकौड़े, इस तरह की हेल्दी चीज़ें अगर हम घर पे बना के उनको टेम्प्ट करेंगे, उनका शेप, और अगर हम कलरफुल, उनको जितना कलरफुल बनाएंगे, बच्चों को हमें जंक फूड से दूर रखना है क्योंकि इनके नुकसान ज़्यादा हैं। जहाँ से चाइल्डहुड ओबेसिटी शुरू होती है, इट लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो आजकल एडल्ट्स में देखी जा रही हैं, और उनसे अगर हिस्ट्री ली जाए तो यही पता चलता है कि उनका सा इन बच्चों को यंग एज से फैटी लिवर हो रहा है, उनको हाइपरटेंशन हो रहा है, उनका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं लड़कियों में, पीसीओडी, ये सब पीसीओएस हो रहा है। सो ये हमें इनको इसलिए जंक फूड से दूर रखना है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हेलो।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: हाँ नमस्कार सबको, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: मैडम हमारे घर में 15, अभी तो उसका एज 15 मंथ है, 15 महीने का है, और उसके बारे में पूछना था, उसका अभी कैसा खान पान होना चाहिए और अगले मतलब 2 साल तक कैसा उसका खाना होना चाहिए। अभी जैसे उसका रूटीन है, वो थोड़ा सा मुझे भी मतलब ऐसा है कि वो कभी उसको पराठा भी का टुकड़ा पका देते हैं खाने में, कभी सूखे चावल, कभी पैनकेक और फ्रूट और वगैरह भी देते हैं, पर प्रॉपर शेड्यूल

0: नहीं है उसका, ये अभी तो बच्चे का, बच्चे उसको मदर पीठ पे भी है वो, और अगर उसको बच्चे को अगर चलते, अगर वो जैसे अभी चल रहा है वो, तो चलते चलते खिलाना उसको, वो कितना ठीक है या नहीं है तो। और मिल्क जैसे बताया मैडम आपने कि 2 साल के बाद में बाहर दे सकते हैं क्या, बाहर का जैसे मिल्क है माल, दूध की चीज देनी है या कुछ है तो वो 2 साल के बाद में देना है या अभी भी दे सकते हैं। और एक मुझे प्रॉपर थोड़ा शेड्यूल बता सकते हैं कि फ्रूट कब लेना है और खाने का टाइमिंग कैसे होना चाहिए पूरे दिन का। थैंक यू।
1: जी, एक 15 महीने के बच्चे को लगभग 5 बार खाना है। आप जितना खाते हैं उसका आधा बच्चा खा सकता है। तो एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में 2 स्नैक्स। तो लंच और डिनर में दाल किसी ना किसी तरीके से होनी चाहिए। अधिकतर दिल्ली के घरों में या अधिकतर घरों में दाल एक टाइम बनती है, सब्जी एक टाइम बनती है। तो दाल 2 टाइम होनी चाहिए। दाल आप किसी भी फॉर्म में दें, खिचड़ी के फॉर्म में दें, दलिए के फॉर्म में दें, उसमें एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स डालें। सुबह का नाश्ता सूजी हो जाए, या सूजी बेसन आटे का शीरा टाइप हो जाए, उपमा हो जाए, पोहा हो जाए, या छोटा सा पराठा सॉफ्ट सा बना के हो जाए। फिर दोपहर के खाने में दाल, सब्जी, दही ज़रूर हो। रात के खाने में भी ये हो, जिस दिन आप राजमा, चने, सोया या पनीर या कुछ दे रहे हैं, दूसरे टाइम डालो। और बीच में 2 स्नैक्स, 2 स्नैक्स जैसे आप उबला हुआ आलू दे सकते हैं, शकरकंदी दे सकते हैं। 1 से 2 फ्रूट्स प्रतिदिन देने ही चाहिए। बट ये पार्ले जी बिस्किट दूध में गला के, रस दूध में गला के या चाय में डुबो के, रात के खाने में बहुत सारे लोग दूध रोटी देते हैं, वो नहीं देना है। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें 400-500 ml होनी चाहिए, तो वो दही पनीर में ख़त्म हो जाता है और ऊपर के ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाना दीजिए पूरा, जिससे आयरन डिफिशेंसी ना हो। और आप अपने डॉक्टर से बात करके आयरन सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। और आजकल गवर्नमेंट भी अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम चला रही है, जिसके तहत हमको हफ्ते में 2 बार 5 साल तक के बच्चों को आयरन देना ही चाहिए, और हर 6 महीने में कीड़े की दवाई देनी चाहिए, और विटामिन ए भी सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए 9 महीने से लेके हर 6 महीने में 5 साल तक। वो अपने पीडियाट्रिशियन से आप पूछिए। ऊपर का दूध आप 1 साल के बाद शुरू कर सकते हैं, बट दूध से बनी हुई चीज़ों के तौर पे। तो मुझे लगता है कि मेरा इतना समझाने पे आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत।
2: बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आपने एक चीज़ और बोली थी कि वो बच्चा चलते चलते खाना खाता है, तो आप उसको हैबिट्स डालिए अच्छे कि वो परिवार के साथ उसको सिखाइए कि वो बैठ के खाए। अगर हम लोग बच्चे को ऐसे पैम्पर करेंगे, उसको उसके नखड़े उठाएंगे और वो ऐसे घुमा घुमा के हम खाएंगे, तो उसकी वही आदत पड़ेगी। अब पूरा फैमिली टाइम होना चाहिए, जब आप ब्रेकफास्ट एक साथ सब लोग बैठ के करें तो उसको आदत पड़नी चाहिए, उसके बच्चे के दिमाग पे आना चाहिए कि जो सही तरीका है वो सबके साथ, परिवार के साथ बैठ के प्रॉपर टेबल चेयर पे खाना चाहिए, या जैसे भी दरी पे बैठ के पालती मार के बैठना है, जैसे भी आप लोग खाते हैं वैसे खाना है। ये चलते फिरते खाने में उससे किसी को उस ना बच्चे को तृप्ति होगी और जो माँ खाना खिला रही है उसको भी तृप्ति नहीं होती कि इसने ढंग से खाया है।
1: हाँ, इसको बोलते हैं फैमिली पॉट फीडिंग, कि एक साथ बैठ के पूरा परिवार खाएगा तो बच्चे का दिमाग इस तरह से ट्रेन हो जाता है कि ये मेरे खाने का टाइम है। ना भगा भगा के खिलाएं, ना टीवी में कार्टून दिखा के खिलाएं, तो ये दोनों तरीके गलत हैं। ये ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प नहीं करते, और बच्चा टेक्स्चर अप्रिशिएट करना नहीं सीखता, उसके टेस्ट बड्स डेवलप नहीं होती। अगर बच्चा टीवी देख के खा रहा है तो उसको पता ही नहीं चलेगा वो कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, और आगे का डेवलपमेंट होगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आजकल कॉन्स्टिपेशन बहुत राइज पे है। पेशेंट, बच्चे रियलाइज नहीं करते, पेरेंट्स रियलाइज नहीं करते कि जो वो जंक फूड खा रहे हैं उसकी वजह से इतना कॉन्स्टिपेशन हो रही है कि दो दो तीन तीन दिन तक नहीं होता बच्चे को, और हमें लंबे समय तक उनको दवाइयां देनी पड़ती हैं। तो इससे बचने के लिए एक प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है।
3: डॉक्टर स्वप्ना, जैसे कि आज भी न्यूट्रिशन वीक चल रहा है, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देंगे कि जिससे कि हर बच्चे का सही पोषण मिल सके और उनका बचपन स्वस्थ और खुशहाल बन सके?
2: मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि पोषक सप्ताह जो है ये तो पूरे साल चलता है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम जितना पौष्टिक खाना हम रोज़ खाएंगे, और ये हमें ये नहीं सोचना है कि अभी बच्चा छोटा है आज इसका मन नहीं है खाने का, ऐसा नहीं करना है। हमें रोज़ ही घर का बना अच्छा पका हुआ, जितनी वैरायटी हम दे सकते हैं बच्चे को, हमें कलरफुल खाना खिलाना है, सारे रंग उसमें होने चाहिए और सारी वैरायटी होनी चाहिए, सारे खाद्य पदार्थ होने चाहिए, और अपने फैमिली के साथ बैठ के खिलाना, उसको पौष्टिक आहार देना, संतुलित आहार देना, ये साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
3: डॉक्टर राधिका, आप क्या कहेंगी कि कौन सी बातें हैं जिन्हें हर माता पिता को बच्चे के सही पोषण के लिए अपनाना ज़रूरी है?

0: अर्ली चाइल्डहुड में या टीनेज में या एवरी एज में, मतलब हर एज में?
1: हम अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल हैं। जो हम करेंगे, जो हम दिखाएंगे बच्चे को, हम सिखाएंगे, वो सीखेगा, क्योंकि बच्चा पैदा होके सीख कर तो आया नहीं है। तो अगर मैं न्यूट्रिशियस खाना खाऊंगी तो मेरा बच्चा भी खाएगा, मैं सुबह रात को ब्रश करूंगी तो मेरा बच्चा भी करेगा। अगर हम मिलके खाना शांतिपूर्वक आपस में बात करके खाएंगे, न्यूट्रिशियस खाएंगे, तो वो मेरा बच्चा भी खाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन फैमिली से स्टार्ट होता है, एक सोसाइटी से हेल्दी रखने के लिए है। तो हम सब अच्छा खाना खाएं, बैलेंस खाएं, फैमिली पॉट से खाएं, मिलके खाएं, शांतिपूर्वक खाएं और हेल्दी रहें, और एक अच्छे देश का विकास इसी से होगा।
0: तो दोस्तों, आज की बातचीत से यही समझ आ गया कि बच्चे के जीवन के शुरुआती साल केवल उसके बढ़ने की उम्र नहीं, बल्कि उसके पूरे भविष्य की नींव रखने का समय है। सही पोषण, सही आदतें और सही देखभाल, यही बच्चे को स्वस्थ और मजबूत बनाने की कुंजी है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहीं डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, फॉर्मर सीनियर डाइटिशियन एम्स दिल्ली, और डॉक्टर राधिका सचदेव, पीडियाट्रिशियन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
1: थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया सबसे बात करके।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे आप और हम आपके अपने प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। जाते जाते बस इतना कहूँगी, पोषण से शक्ति, शक्ति से विकास, यही है स्वस्थ जीवन का मंत्र। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगारों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। केंद्रीय गोवर्धन योजना आज से प्रभावी हो गई है। यह योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। अखिल भारतीय शरणार्थी और धर्मनिरपेक्ष मिशन मोर्चा समेत 4 संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई का क्षेत्रफल 171 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। जम्मू कश्मीर के बर्फ से ढके इलाकों में एक महीने तक चलने वाली जनसंख्या गणना आज से हो रही है। गणनाकर्ता केंद्र शासित प्रदेश के 16 जिलों में घरों का दौरा करके विवरण दर्ज करेंगे। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ में 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,925 लोग लापता हैं। नीदरलैंड के यूटेक्स

शहर में बलूच नेशनल मूवमेंट ने प्रदर्शन किया। इसके माध्यम से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज जैन संत तरुण सागर महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और अंत में फुटबॉल में एएफसी अंडर-20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: चलने के लिए रास्तों की ज़रूरत होती है और जब सही रास्ते मिल जाते हैं तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। आकाशवाणी रेनबो पर करियर पाथवेज की शुरुआत हो चुकी है और जब हम करियर पाथवेज की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं उन रास्तों की, उन राहों की जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगी। बात उन करियर ऑप्शंस की जिन्हें जान कर, समझ कर, चुन कर आप ज़िंदगी में ऊँचाइयों को छू सकते हैं। और आज करियर पाथवे में हम बात करेंगे करियर इन सोलर पावर सेक्टर की। जी हाँ, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और आज हम इसी क्षेत्र में जानेंगे कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल आपके साथ मैं हूँ प्रियंका मामगेन और इस पूरे घंटे हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की। जी हाँ, सौर ऊर्जा में कैसे आप रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, किस तरीके की क्वालिफिकेशन आप ले सकते हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप, जानने की कोशिश तो हम जरूर करेंगे आज इस प्रोग्राम में।
1: सूरज

हमारे देश भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बेहद उज्जवल है। जी हाँ, हमारा देश भारत भौगोलिक रूप से ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ साल के अधिकतर समय में बहुत अच्छी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, धूप अवेलेबल रहती है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार देश में लगभग 5,000 ट्रिलियन किलोवाट सौर ऊर्जा पूरे साल उपलब्ध रहती है। जी हाँ, और साथ ही साथ ये भी सच है कि हमारे देश भारत में बिजली की जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में सौर ऊर्जा स्वच्छ, अक्षय और लंबे समय तक उपलब्ध रहने वाली ऊर्जा का सबसे अच्छा विकल्प है। सौर ऊर्जा सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, गांवों में भी सौर ऊर्जा, सोलर पावर जिंदगी को रोशन कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक भारत के सोलर एनर्जी सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा ग्रीन जॉब्स, जी हाँ, नौकरियों का सृजन होना तय है, जो दर्शाता है कि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

0: चाहता है।
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर To listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Sagar ki gehraiyon se parvaton ke shikhar tak, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो पर अल्फा जैन प्रोग्राम और आज हम बात करते हैं करियर पाथवे की, जिसमें हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, किस तरीके से आप तलाश सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इससे पहले थोड़ा सा हम पारंपरिक स्रोतों की बात की जाए तो एनर्जी के जो पारंपरिक स्रोत हैं वो जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस, अगर इनकी बात की जाए तो एक तो ये पृथ्वी पर लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, साथ ही लगातार कई सौ वर्षों से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ऊर्जा के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साथ विश्व के सभी देश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयासरत हैं और साथ ही हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। और यही वजह है कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। अगर बात की जाए कोर्सेज की तो कई सारे कोर्सेज हैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो आप कर सकते हैं, जिनमें डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज भी हैं। आप 10वीं के बाद भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश सकते हैं और अगर आप हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप 12वीं के बाद डिग्री कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। 10वीं के बाद जो कोर्सेज करवाए जाते हैं वो ITI होते हैं और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी रहते हैं जो अलग अलग संस्थानों द्वारा करवाए जाते हैं। इसमें सोलर पावर, जो सोलर के जो PV इंस्टॉलेशन होते हैं और सोलर टेक्नीशियंस होते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और ये जो कोर्स रहता है वो महज कुछ महीनों का भी हो सकता है, जैसे 6 महीने का, 8 महीने का या फिर 1 साल का। इसी तरीके से ITI में इलेक्ट्रीशियन का आप कोर्स कर सकते हैं 10वीं के बाद और लगभग इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 साल रहता है और आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सोलर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज भी कर सकते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप डिप्लोमा इन रिन्यूएबल और सोलर एनर्जी कर सकते हैं, सोलर PV डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। और इन कोर्सेज को करने के बाद आपको जो नौकरी के ऑप्शंस मिलेंगे उसमें सोलर टेक्नीशियन, सोलर जो इंस्टॉलर होते हैं, जो इंस्टॉल करते हैं, इसके साथ साथ सोलर पैनल मेंटेनेंस टेक्नीशियन, जो सोलर पैनल लगे होते हैं उनको जो मेंटेनेंस करने का जो काम होता है, रख रखाव देखभाल करने का काम होता है, आप उस क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं। और सोलर प्लांट हेल्पर और ऑपरेटर के तौर पर भी आप 10वीं के बाद जो कोर्सेज करेंगे उसमें आप जा सकते हैं। इसके साथ अगर 12वीं के बाद आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिग्री कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, तो 12वीं में आपके पास PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके बाद आप जो एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं उनको देकर आप अलग अलग डिग्री कोर्सेज के लिए जा सकते हैं और इस क्षेत्र में कई सारी संभावनाओं को तलाश सकते हैं। इसी के साथ साथ भारत सरकार का एक और कार्यक्रम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कुशल कामगार भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो बहुत कुछ है इस क्षेत्र में, बस ज़रूरत है तो समझते हुए आगे बढ़ने की, जानने की और फिर सही कोर्स अपने लिए चुनने की।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations

0: come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Mangal Bhavan, Mangal Hari.
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

आकाशवाणी रेनबो आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन और हमारे साथ प्रोग्राम अल्फा जेन और अल्फा जेन के सेगमेंट करियर पाथवेज में हम आज बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र की। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को तलाशते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार सूर्य की शक्ति सोलर पावर अपने अंदर अपार संभावनाएं समेटे हुए है। जी हाँ, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में भारत की सूर्य ऊर्जा सोलर पावर 2.82 गीगावाट की थी, जो 2026 तक बढ़कर 164 गीगावाट हो चुके हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सोलर पावर के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं समेटे हुए हैं। इसी के साथ साथ भारत सरकार की कई सौर ऊर्जा से संबंधित योजनाएं हैं, जिनमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लाखों रोजगार सृजित करने का मादा है। जी हाँ, उत्पन्न करने की क्षमता है। और जब आप इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशेंगे तो जरूरत है कि आप दक्ष हों, आप निपुण हों इन क्षेत्र में, और कई सारे कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। 12वीं के बाद के कोर्सेज की बात की जाए तो आप सर्टिफिकेट इन सोलर एनर्जी कर सकते हैं, सोलर पीवी डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, डिप्लोमा इन रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम कर सकते हैं, बीटेक रिन्यूएबल एनर्जी कर सकते हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सोलर टेक्नीशियन सोलर पीवी इंस्टॉलेशन का कोर्स भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज की बात की जाए तो पीजी डिप्लोमा इन रिन्यूएबल एनर्जी आप कर सकते हैं, जो लगभग एक साल का रहता है। एमटेक इन रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी कर सकते हैं, और ये लगभग 2 साल का कोर्स रहता है।

सर्टिफिकेट इन सोलर पीवी डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, सोलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MBA इन एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट। ओह, कई सारे कोर्स हैं, जब आप ढूंढने जाएंगे तो आपको इतने सारे कोर्सेज मिलेंगे कि आपको लगेगा कि इस क्षेत्र में जाना जाना वाकई बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आने वाले वक्तों में बहुत सारे जो रोज़गार हैं, जो अलग अलग नौकरियां हैं, वो इस क्षेत्र में रहेंगी। और जहां तक भारत के शहरों की बात की जाए तो शहरों के साथ साथ गांव में भी अब सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है और कई सारी योजनाएं हैं जिन्हें, जी हाँ, आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेलकम बैक। जी हाँ जनाब, हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा की, और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई सारे कोर्सेज करने के बाद आप कई सारे जॉब ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। सोलर पीवी टेक्नीशियन अगर आपको बनना है तो आप वो बन सकते हैं। इसमें आपको सोलर पैनल लगाना और उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेंगी। सोलर इंस्टॉलर के तौर पर भी आप इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। इसमें आप रूफ टॉप और सोलर सिस्टम इंस्टॉल कैसे किया जाता है सही तरीके से, उससे संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ सोलर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन अगर आप बनना चाहते हैं तो इसमें आपको वायरिंग, इन्वर्टर्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इससे संबंधित आप काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। सोलर डिजाइन इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं और बनते हैं तो आप सोलर प्लांट और सिस्टम को डिजाइन करने का काम करेंगे। इसी के साथ अगर आप सोलर प्रोजेक्ट इंजीनियर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग करेंगे, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट करेंगे, कौन से सोलर पैनल को वहां पर लगाना चाहिए, उसका साइज क्या होगा, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, पूरी जो प्लांट है उसमें ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ अगर सोलर साइट इंजीनियर आप बनते हैं तो साइट पर इंस्टॉलेशन और पूरे काम की निगरानी और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसी तरीके से अगर आप सोलर क्वालिटी इंजीनियर बनते हैं तो इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन की क्वालिटी की जांच करना और सर्टिफिकेट देना और उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। इसी के साथ अगर सोलर सेल्स एग्जीक्यूटिव आप बनते हैं तो सोलर प्रोडक्ट जो होते हैं और सिस्टम जो होते हैं उनकी बिक्री से संबंधित जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो आपकी होंगी। कई सारे शिक्षण संस्थान हैं जहाँ से आप सोलर पैनल से संबंधित कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें IIT से लेकर, जी हाँ, IIT से लेकर ITI तक भी है। NPT मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो गुड़गांव में है आप वहाँ से कर सकते हैं। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये आता है, npti.gov.in। आप यहाँ से कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप solarpathshala.com पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप अच्छे से जान सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो वेबसाइट है आप वहां पर जाकर भी कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग IISDT.IN पर जाकर भी आप कई सारे प्रोग्राम्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सोलर के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। और अब वक्त ये कह रहा है कि मुझे तो अब जाना होगा, अगले प्रोग्राम जो रहेगा वो रहेगा सिटी लाइट्स, और आपके साथ रहेंगी गीतांजलि सोनी। इसी के साथ मुझे दीजिए विदा, और ज़रूर सोचिएगा इस क्षेत्र में क्योंकि बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य है। बस आपको करना क्या है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा अपडेट करना है, इन कोर्सेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके सही डिसीजंस लेना है। बाय, टेक केयर।

नमस्कार, अब समय है शाम के 5 बजे के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सभी सदस्य देशों के आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर सुरक्षा कवच लगाने के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भारतीय रेलवे ने गुजरात के भावनगर पारा यार्ड पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 125 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। नई सीमा 15 सितंबर को 30 नवंबर तक लागू रहेगी। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की आपूर्ति की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बर्फ से ढके इलाकों में एक महीने तक चलने वाली जनसंख्या गणना आज से हो रही है। गणनाकर्ता केंद्र शासित प्रदेश से 16 जिलों में घरों का दौरा करके विवरण दर्ज करेंगे। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3925 लोग लापता हैं। नीदरलैंड्स के यूट्रैक्ट शहर में बलूच नेशनल मूवमेंट ने प्रदर्शन किया। इसके माध्यम से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित नॉर्वे दूतावास जाकर सम्राट हेराल्ड पंचम के निधन पर शोक व्यक्त किया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फुटबॉल में AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ये थे रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। जितने भी हमारी रेनबो फैमिली से जुड़े हुए लोग, इनफैक्ट जो सिटी लाइट्स का खास कर इंतज़ार करते हैं, उनका तो बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, वो समय आ गया है जब आप और मैं मिलके सिटी के बारे में बात करते हैं। क्या चल रहा है आपकी और मेरी लाइफ में, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा ज़रूर करते हैं। लेकिन इससे पहले हम सिटी लाइट का पूरा आगाज़ कर दें, आपसे मैं फिर एक बार कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो भी आपके सवाल होंगे, खासकर कुछ ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स को लेकर या फिर कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस को लेकर, उनका जो जवाब है ना, वो मुझे देने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए होता है। तो उसको आप जब भी मुझे भेजेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शो है, बार बार हम कहते हैं ना कि बेसिकली हम मैसेजेस नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको ज़रूर दे सकते हैं। तो आपको लगता है ऐसी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो इंस्टेंटली पहले ही मुझे शो के दौरान मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं ड्यूरिंग द शो आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेके दे पाऊँ। सो आई थिंक मेरी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, अभी शो के थोड़े दिनों पहले, मुझे लगा शो की बिगनिंग में आपको बोल देती हूँ, क्योंकि फिर एंड तक सब कहते रहते हैं कि अरे मैंने अब आपसे ये पूछा था, आज के इवेंट के बारे में आपने बताया नहीं। तो अगर आप लास्ट पूछेंगे 6:05 पे, तो बताना मुश्किल हो जाएगा ना। तो प्लीज़ आप ज़रूर से मुझे बताइएगा। और आप जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से आप बातें लिखते हैं। और फिलहाल मैं एक बार फिर आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, और मैं हूँ आपकी अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी, ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन।

आपने? मोस्टली आजकल तो बहुत चीज़ें एफर्मेशंस पे काम कर रहे हैं. जो भी आप सेलिब्रिटी को सुनो या फिर जनरल आप पढ़ो भी, सब कहते हैं अच्छी चीज़ें अफर्म करो, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ. तो यही है, गाना बार बार अफर्म कर रहा है कि मैं हैप्पी हैप्पी हूँ. और इसमें पसीने की बात की गई, गर्मी की बात की गई, तो जी बिल्कुल, अगर आप 34-35 डिग्री में भी हैप्पी हैप्पी हैं, बिकॉज इट वॉज मोस्टली सनी टुडे, वार्म रहा है. हालांकि पता नहीं, एवरी सेकेंड डे

रहूँगी। शाम को कहीं बाहर जाना चाहते हैं, 27 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है, विच इज़ नॉट मच, है ना। बस आप तैयारी के साथ निकलिए क्योंकि ह्यूमिडिटी तो रहेगी, 58% ह्यूमिडिटी है, माई गॉड। अच्छा, गर्मी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी से ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर गर्मी हो, मुझे याद है हम जब स्कूल से आते थे, छोटे थे, बहुत ज़्यादा लू होती थी, लेकिन हवा चल रही होती थी ना, तो वो गर्मी इतनी ख़राब नहीं लगती थी। मतलब वो लू वाली हवा चल रही होती थी और हम घर पहुँचते थे, देखते थे तो हमारे जो चीक्स है ना वो मरून, मतलब मैं कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रही, जैसे मरून ब्लड जम जाता है ना, ऐसे हमारे चीक्स हो जाते थे बिकॉज इतनी हैवी लू होती थी। बट यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर चाइल्डहुड कि आपको उस टाइम वो जो लू है वो भी अच्छी हवा लगती है और मम्मी को खींच के आपको लाना पड़ता है कि ऊपर घर में आओ फटाफट, नीचे लू चल रही है और हमें क्या लगती है, हवा चल रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को लेके करेंगे हम आज जिसकी चर्चा, बिकॉज उनके बारे में बात किए बिना तो सिटी लाइफ पूरा हो ही नहीं सकता, बिकॉज द सिटी इज़ अबाउट द किड्स एंड द यंगस्टर्स। ऐसा नहीं है कि मतलब मिड एज के लोग या फिर जितने भी हमारे एल्डर जनरेशन है, मुझे ना बुजुर्ग कहना ठीक नहीं लगता है, ऑलवेज लाइक टू कॉल देम एल्डर जनरेशन, तो उनका कोई महत्व नहीं है, बात वो नहीं है। बात ये है कि बिकॉज जो हमारी उम्मीदें हैं ना वो यंगर जनरेशन से, जेंजीज से बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके बारे में थोड़ी ज़्यादा बात करते हैं। बहुत सारी सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको, कौन सी हैं, कैसी हैं, वो भी बताएंगे। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी के साथ।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: एब्सोल्युटली पॉसिबिलिटी विल बिकम प्रोग्रेस अगर आप ट्राई करते रहेंगे. और पता है अब तो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन हो गई है. क्या होता है ना कि जब भी इवेंट्स होते हैं ऐसे बड़े इवेंट्स, ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, आज आपको पता है ना उसका कैर केड रिहर्सल थी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, तो बहुत ट्रैफिक डाइवर्जन भी था, लोगों को दिक्कत हो जाती है ऑब्वियसली बिकॉज कई लोगों को नहीं पता होता, इतने सारे लोग अवेयर नहीं होते ना क्या चल रहा है. सो जनरली पीपल डोंट रियली रीड अबाउट कि क्या चल रहा है आसपास. सुबह इतनी भागदौड़ रहती है और इसीलिए तो हम आपके जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं ना, उनको क्लियर करने आते हैं. और मैं तो खासकर कहती हूँ जो मेरा सिटी लाइट्स होता है दैट आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट. वो इसलिए क्योंकि मैं आपको याद दिलाती हूँ, क्योंकि आज की जो तारीख है वो नंबर वन, आई एम नंबर वन, द डेट इज़ नंबर वन. जो न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं वो तो नंबर वन को बहुत ही स्पेशल मानते हैं, लेकिन नंबर वन के साथ ये भी याद रहना चाहिए कि ये सितंबर मंथ का आगाज़ हो गया है. और यू नो ये ना पहले हंसी आती थी इन बातों में कि लोगों को पता नहीं है, तो बहुत ही कैजुअल बात हो गई, इसीलिए मैं बताती हूँ बार बार आपको. और ये भी कहती हूँ कि आज की डेट से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं आपकी लाइफ के, चाहे वो बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, कोई बिल जमा कराना है, फ़ीस जमा करानी है, प्लीज़ रिमेंबर देम नाइसली. अभी तक अगर आपको नहीं याद था और मैंने याद दिला दिया है, देन कूडोज टू मी आई थिंक. और आप सिर्फ इतना कीजिए कि अगर कुछ छूट गया है, कुछ चीज़ याद नहीं है आपको, तो यू प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट. और इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी एक बार फिर से कि जितने भी ऐसे, जैसे मैंने अभी बोला ब्रिक्स समिट हो रहा है, तो जितने भी इवेंट इस तरीके के होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी मतलब एक ट्रैफिक का लोड रहता है, तो प्लीज़ उस टाइम मोस्टली आप लोग मेट्रो यूज़ कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, जितना कम सड़कों पे भीड़ लगेगी. बिकॉज आज मैंने देखा था इट वाज रियली रियली क्राउडेड ऑन द रोड्स. सो अभी शाम को भी बहुत ट्रैफिक रहने वाला है, तो इसलिए जब घर से निकलेंगे या फिर ऑफिस से निकलेंगे तो प्लीज़ अच्छे से पूरी ट्रैफिक की डिटेल लेके निकलिएगा, क्योंकि रोड रेज के मामले एवरी सिंगल डे बढ़ते जा रहे हैं. आप पेपर उठाओगे, पढ़ोगे, उफ़ तो ऐसा लगता है पढ़ने से पहले बंद कर दो. एवरी सिंगल डे देयर इज़ अ रोड रेज. तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग लेस प्रिपेयर्ड निकलते हैं, फिर गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, कई बार डैमेज ज़्यादा हो जाता है. सो प्लीज़ बी केयरफुल, आई रिक्वेस्ट यू.

वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। और ये लास्ट में जो बड़ा इनोसेंट गाना है ये मन्नू, जो बाद में बोला ना अरिजीत सिंह ने। अच्छा, जब भी गानों में ना किसी किसी के नाम आते हैं ना, पीपल गेट रियली रियली नॉस्टैल्जिक अबाउट इट। कह रहे उस गाने में मेरा नाम था या किसी के फ्रेंड का नाम होगा, तो उसी गाने को लेकर बहुत सारी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस करते हैं। एक गाना जो राजेश खन्ना का था ना, मेरे सपनों की रानी कब आई गीतू, तो बहुत लोग ऐसे गाना गाते थे बिकॉज गीतांजलि से थोड़ा सा गीतू शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। हालांकि मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी ये शॉर्ट फॉर्म, बट समटाइम्स यू नो पीपल हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड दे वॉन्ट टू हैव फन। बट आप क्या फ़न चाहते हैं सिटी लाइट्स में और मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ, ख़ासकर उनके लिए जो बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स में अपडेट की जा रही हैं और लगातार कुछ ना कुछ नया सुनने को आता ही है। तो आपको जान के खुशी होगी कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनको अब जल्द ही मेडिकल रूम्स भी मिलने वाले हैं। वो इसलिए मिलने वाले हैं क्योंकि अगर कोई बेसिक उनको इशू आ गया जब वो स्कूल में हैं, या फिर कोई मेडिकल एडवाइस लेना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर बेसिक एलिमेंट है जो कि इंस्टेंट जिसको ट्रीट करना है, तो फिर आप मेडिकल रूम में जाके ट्रीट करवा सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है, ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि अगर स्कूल में बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है तो कई बार फ़र्स्ट एड चाहिए होती है। हालांकि हर स्कूल में फ़र्स्ट एड बॉक्स होता है, लेकिन अगर एक मेडिकल रूम हो सो दैट रियली हेल्प्स। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड डेवलपमेंट फॉर एवरीबडी हु आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। और जो पेरेंट्स हैं वो अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, सो इट्स नाइस। लेकिन हम जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं या फिर हम उनसे कॉन्वर्सेशंस करते हैं अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर करियर,

तो आजकल की यंगर जो जनरेशन है और जो जेंजीज़ हैं, अल्फाज हैं, उनके जो आइडियाज़ अबाउट देयर जनरेशन्स अपलिफ्टमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। आपको पता है क्या है वो? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ ना, बताऊँगी आपको। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वी आर हाफ वे, ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू, अगर आप अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिनके लिए आप विशेज मांग रहे हैं, तो आप उनको बोल दीजिएगा कि ड्यूरिंग द एंड ऑफ द शो हम सबको कलेक्टिव विश देते हैं हमेशा आकाशवाणी की तरफ से, वो ज़रूर देंगे। लेकिन अभी के लिए आपको बहुत ही रॉकिंग गाने भी सुना रहे हैं। थैंक यू सो मच दैट यू आर लविंग द म्यूज़िक। और जी बिल्कुल, एक और चीज़ कहना चाहती हूँ मैं आपसे, बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, वायरल इज़ एक्चुअली इन दी एयर, तो उससे कैसे प्रिवेंशन करनी है वो भी बताऊँगी। सुनते रहिए सिटी लाइट्स।

अब देखिए, ये तो आपको और मुझे ही पता है कि नैनो का क्या कसूर होता है भाई। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्लांस, पता है। जब तक आप देखते नहीं हो ना किसी को, तब तक ना तो कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। तो ये जो आँखें हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बहुत सारी चीज़ों में। हालाँकि इसको रोमांटिकली भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, नज़रें, नैनो का मिलना एंड ऑल ऑफ इट। बट अगर आप एक लार्जर पर्स्पेक्टिव देखो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखो, तो नथिंग स्टार्ट्स अनलेस यू आर लुकिंग इन टू समवन्स आईज और जस्ट यू आर लुकिंग इन टू समथिंग। इट्स अबाउट कि अगर आप कोई चीज़ समझना भी चाहते हैं, उसको ध्यान से देखना ही पड़ता है आपको। और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हमारे दिल्ली में होते हैं जो कि बहुत सारे लोग जाते भी हैं, उनको इन्जॉय करते हैं, लेकिन अक्सर कहते हैं अरे कोई फ्री के इवेंट हो तो मज़ा आए। वो भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो फ्री में होते हैं, विदाउट कॉस्ट, आपकी जेब बिल्कुल भी जिसे कहते हैं हम चोट नहीं लगती आपकी जेब को। तो ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, धीरे धीरे मैं आपको बताती रहूँगी। लेकिन एक ज़रूर मैं आपको चीज़ कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें ना पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो वो अगर ऐसा कुछ इवेंट होगा तो वो फिर मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि उसका टाइम जा चुका है। लेकिन हाँ, अगर आपको फ्री कल्चरल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, या फिर अगर आप त्रिवेणी कला संगम जाना चाहते हैं जो तानसेन मार्ग पे नहीं है, वहाँ पे आर्ट गैलरी और स्कल्पचर कोर्ट की परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं जो सुबह 11 बजे से 8 बजे तक रहेंगी रात को। तो अभी बहुत टाइम है, अगर आप आसपास है तो जा सकते हैं। इस वक्त बिल्कुल फ्री एडमिशन है। और सिमिलरली जनपद में एक आर्ट गैलरी हो रही है विच हैज़ ओपन 10:30 इन द मॉर्निंग, लेकिन उसका समय 7 बजे तक ही है। DAG गैलरी आपने सुनी होगी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्री आर्ट गैलरीज होती हैं, लोग जाते हैं, देखते हैं, कुछ सीखते हैं। ऐसे ही फ्री एंट्री होती है जो म्यूज़िकल फाउंटेन नहीं है सेंट्रल पार्क में कनॉट प्लेस, वो 10 से 6 बजे तक, तो वहाँ तो बैठ के आप देख ही सकते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि कैसे आप उन इवेंट्स को इन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाइए, ज़रूर इन्जॉय कीजिए, बट रिस्पॉन्सिबली कीजिए। हर बार हम कहते हैं कि जितनी भी जगहों पे आप जाते हैं, आप प्लीज़ मेक श्योर, अगर आप चिप्स खा रहे हैं या फिर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, केन आपके हाथ में है, चिप्स आपके हाथ में है, लोग मैंने देखा है जहाँ बैठते हैं वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इवन मेट्रो के नीचे जो जगह होती है ना, पैर रखते हैं उसके नीचे सीट के, बस उसमें रखते हैं और अपना आगे बढ़ जाते हैं। आई डोंट नो वट विल इट टेक फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर आपको गंदी जगह बैठना पसंद नहीं है तो फिर गंदी जगह करके उठना कैसे पसंद है। आई फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे सीरियसली ये बात समझ नहीं आती है। अगर आपको आती है तो मुझे ज़रूर बताना। और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम सिटी लाइट्स में। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन।

0: Vietnam.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: जी, हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं आप। बिल्कुल इंस्टेंटली जो कनेक्शन होता है वो आप सबका रहता है हमसे। एक बार फिर आपको बताना चाहती हूँ, आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ। और एक बार फिर आपको कह देती हूँ कि देखिए, जितनी भी बातें हम लोग अपने शो में करते हैं, खासकर सिटी लाइट्स में करते हैं, वो इसीलिए होती हैं कि हमारी सिटी इतनी बिजी है और बहुत सारी चीज़ें वो अनफॉर्चुनेटली कई बार मिस कर देते हैं। तो हमारा जो एक ध्येय होता है ना, कोशिश वो यही रहती है कि आप कुछ मिस ना करें। हालांकि बार बार हम कहते हैं कि जब कुछ ऐसी चीज़ें हम बार बार कहते हैं, जैसे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रोट इशू आ रहे हैं, आपने देखा है काफ़ी फ्लू की भी इशू आ रही है, तो प्लीज़ कुछ चीज़ें हमेशा आपको बाय डिफ़ॉल्ट कर लेनी चाहिए। याद है जब कोविड आया था तो हम बार बार कहते थे कि मास्क ज़रूर लगाइए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सिमिलरली जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंजा इश्यूज़ आते हैं, उसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में हैं, मेट्रो में हैं, बसेस में हैं, ऑफिस में जा रहे हैं। वैसे तो अगर आपका बहुत ही ज़्यादा खांसी ज़ुकाम है तो प्लीज़ अवॉइड गोइंग टू द ऑफिस। आई थिंक आपके बॉसेस भी समझेंगे अगर एक एम्प्लॉय के आने से बाकी बीमार पड़ जाएंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सैड सिचुएशन। सो मेक श्योर इफ़ यू आर अनवेल, देन प्लीज़ डू नॉट विजिट एनी पब्लिक प्लेस। ये आपकी भी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर है कुछ, आपको ऐसा लगता है आप बाहर से आए हैं और यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपकी गले में कुछ खराश सी हो रही है, तो प्लीज़ डू द सलाइन गागल्स, मतलब जो नमक के पानी है ना, उसके गागल कीजिए। दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। अदरवाइज़ क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ जाती हैं और फिर इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑल्सो कई बार। तो प्लीज़ ध्यान रखिए और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह आपको ये चीज़ें करनी चाहिए कि इन केस यू आर हैविंग अ कॉफ, स्नीज, प्लीज़ डू वेयर द मास्क। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।

इश्क का तो ऐसा है कि जब होता है ना तो बस क्या ही कहिए। और ये इश्क इट्स नॉट ओनली अबाउट अ मैन एंड अ वुमन। आपको प्यार होता है अपने देश से, आपको प्यार होता है अपने शहर से, आपको प्यार होता है अपने कपड़ों से, अपनी ज्वेलरी से, खाने से, जिसको हम कहते हैं ना ऑब्सेशन है, वी आर ऑब्सेस्ड विद फूड। कुछ चीज़ों के बारे में ऐसे बोलना ना, आई एम ऑब्सेस्ड विद फूड एंड क्लोथिंग, बड़ा फैशनेबल लगता है, अच्छा लगता है, बट बहुत हार्मफुल होता है ये। ऑब्सेशन इज़ ऑलवेज बैड। इफ़ यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट लर्निंग ओनली दैट्स गुड। हाँ अच्छा, अब क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, प्यार मोहब्बत है गुरुग्राम से, बिकॉज ऑब्वियसली मैं वहाँ रहती हूँ। लेकिन जब भी बारिश आती है, प्रॉब्लम आती है, बहुत ढेरों मेरे पास मैसेजेस, वीडियोस आ जाते हैं कि ओ माय गॉड तुम लोग कैसे मैनेज करते हो ऐसा हाईटेक जगह और इतनी ज़्यादा ख़राब हालत। मैं आपको पहले ये बता दूं, इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत हर जगह नहीं होती, कुछ एरियाज़ होते हैं वहाँ पर होते होंगे। सो एक तो ये बहुत तगड़ी परसेप्शन बन जाती है, तो इसलिए जब भी गुरुग्राम की बात करते हैं लोगों को तो पहले ही हो जाता है कि ओ माय गॉड गुरुग्राम आना है। तो भाई पहले तो मेट्रो इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, और दूसरा जो ओल्ड गुरुग्राम रहते हैं ना, ओल्ड गुड़गांव में, उनके लिए एक अच्छी खबर बताना चाह रही हूँ मैं। जो सेक्टर 45 है ना, अगर आप गुड़गांव से हैं तो आपको पता ही है, तो वहाँ पे 3 स्टेशंस, मेट्रो स्टेशंस, उनको जो वो वाले हैं ना, यूनिटेक साइबर पार्क, सेक्टर 72A, इन सबको मल्टी मॉडल बनाया जा रहा है। वो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एक तो यहाँ पे स्काई वॉक की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो लोग नीचे से भाग भाग के सड़क क्रॉस करते हैं। और फिर एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहाँ पे ऑटो के पिकअप का, ड्रॉप का एक पर्टिकुलर पॉइंट हो। तो इसमें एक बस का बे भी बनाया जाएगा। सो बेसिकली जस्ट टू फैसिलिटेट कम्यूटर्स। और ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहन मिले। आपने देखा है ना जो मिलेनियम हमारा है मेट्रो स्टेशन, उसमें इट्स लाइक अ ह्यूज मॉल, उसमें क्या नहीं है। तो बेसिकली इसीलिए ताकि लोगों को एक प्रेरणा मिले, वो जाना पसंद करें मेट्रो से, दे हैव अ गुड प्लेस टू पास द टाइम एज वेल। सो बस इतना मैं कहना चाहती हूँ, इतनी सब चीज़ें, इतनी डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसमें सपोर्ट हम सब करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड ऐसी बहुत सारी न्यूज़ मैं आपको देती रहती हूँ सिटी लाइट्स में। आपकी अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी।

0: Let it be.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: इंडीड आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगा माइंड ब्लोइंग हर्ट्ज़ और मैं हूँ आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी। अच्छा अभी मैंने ये फार्म टू सिटी सुना, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कितने लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि आपके घर में जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनिक फूड आता है वो वाकई ऑर्गेनिक होता है, बिकॉज़ इसकी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस डिस्कशंस होती हैं, बिकॉज़ ऑर्गेनिक फूड जितना भी मिलता है चाहे वो फल हों सब्जियाँ हों दालें हों वो वे वे एक्सपेंसिव होती हैं। सो आई डोंट नो, अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो मुझसे ज़रूर शेयर करना, बिकॉज़ चाहें या ना चाहें जब हमें लगता है ऑर्गेनिक अवेलेबल है तो हम 100% कोशिश करते हैं कि ठीक है ऑर्गेनिक खाते हैं, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। लेकिन जब आप इतनी सारी कोशिशें करते हैं अबाउट द फूड, अबाउट इट्स वैरायटी, जानना चाहते हैं कि भाई हाँ ये जो खाना है ये हमें सूट करेगा या नहीं, फिर मैं ये अपनी खासकर एक बार फिर मैं अपनी यंगर जनरेशन के पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जितने भी हमारी एल्डर जनरेशन है वो तो अक्सर हमें कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं कि तबीयत ख़राब हो तो ये करना चाहिए वो करना चाहिए, क्या इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। लेकिन अभी मैं अपने यंगस्टर्स को बताना चाहती हूँ बिकॉज़ मेरे पास मौका है, बिकॉज़ ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है जो कि 1st of September यानी कि आज से स्टार्ट हुआ है, 7th चलेगा ये। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ टू बिगिन विथ कि आपको पता है व्हाट इज़ द बैलेंस फूड, यानी कि हिंदी में बताऊँ तो संतुलित आहार, इसकी बेसिक जो नींव है ना, व्हाट इज़ द बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर दिस। तो आपको ऐसा क्या खाना चाहिए, आपकी थाली में क्या होना चाहिए जो कि आप एक बैलेंस्ड मील लें, संतुलित आहार लें, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, वसा यानी कि फैट्स हैं। बिलीव यू मी, मुझे नहीं लगता आप जब खाते हैं मुंह में उठा के कुछ भी डालते हैं तो इतना सोचते होंगे। मैं उनको बिल्कुल अभी कंसिडर नहीं कर रही जो लोग बड़ी हैवी जिमिंग में हैं और फिटनेस जर्नी पे हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल लोगों की बात करो ना जो कॉलेज जाते हैं स्कूल जाते हैं वो इतना नहीं सोचते, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप जब भी मुँह में कुछ डालते हैं ना, अपने शरीर के अंदर कुछ भी डालते हैं खाने के लिए, तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस ज़रूर दिया कीजिए कि क्या ये आपके शरीर को ऊर्जा दे रहा है, उसके साथ साथ आपकी जितनी भी बॉडी की फूड नीड्स हैं क्या वो उसको फुलफ़िल कर रहा है, चाहे उसमें फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपको पता है ना क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो चावल है गेहूँ है आलू है ओट्स ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। देन प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, प्रोटीन नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा, उसी से तो आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, बहुत ज़रूरी है प्रोटीन खाना। और इसमें अगर जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो हमेशा बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन जैसे अंडे हो गए नॉन वेज हो गया, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए दाल सोया पनीर ये बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। और मैंने देखा है कि बच्चे ना आजकल जो थोड़े से भी फिटनेस उस पर जाते हैं, हम फैट नहीं खाते जी, हम घी नहीं खाते जी, बाकी सब खाते हैं लेकिन फैट नहीं खाते, सो वो भी बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर देसी घी जो कि बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया था ना लोगों ने खाने से, अब तो डाइटिशियंस ही कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 चम्मच बड़े देसी घी के एवरी सिंगल डे खाने चाहिए। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड अ वे टू बैलेंस योर मील ताकि आपको एक पूरे दिन की नरिशमेंट मिले। ये जो हमें फटीग रहता है, थकान रहती है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, इसका ठीक है एनवायरमेंटल रीज़न भी है, लेकिन प्रेडोमिनेंट रीज़न है कि हम ठीक से बैलेंस्ड न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हैं और हम लोग नहीं ध्यान रख रहे हैं कि हमारे शरीर में जो जा रहा है खाने के लिए वो इनफ नहीं है। सो मेक श्योर कि ये जो न्यूट्रिशन वीक चल रहा है 1st to 7th तक, ये आप अच्छे से फॉलो करें और अपने आप भी एक संकल्प लें दैट यू विल ईट हेल्थी बट नाइस। ये चावल कोई मोटापा नहीं देगा, आटा कोई मोटापा नहीं देगा, इस वहम से बाहर निकल जाइए। अगर आप इसकी वजह से कि आपका वेट गेन हो जाएगा नहीं खा रहे हैं, एक प्रॉपर हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर हेल्थी एंड फिट और एक संतुलित आहार ज़रूर खाएँ।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: ऑल राइट, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी और आप बहुत सारी चीज़ें और जानना चाहते हैं, लेकिन समय हमें बस इतना ही परमिट करता है बिकॉज मुक्ति सैन इज़ ऑलरेडी देयर इन द स्टूडियो। वो आपको अपने मैसेजेस की जर्नी पे लेके जाएंगी। एंड फॉर फुटबॉल लवर्स, जाते जाते कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है लेकिन दे देती हूँ, बिकॉज लियोनेल मेसी ने अनाउंस कर दिया अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। ही इज़ एक्चुअली 39 ऑफ एज, लेकिन वो 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जो कि उनका लास्ट मैच है वो खेलेंगे। सो या आई जस्ट विश ऑल द स्पोर्ट्स लवर ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से स्पोर्ट्स इन्जॉय कीजिए और ख़ासकर वो लोग जो सड़कों पर हैं वो किसी भी तरीके के एक्रोबैटिक्स दिखाने की कोशिश ना करें, बिकॉज इट इज़ जस्ट फॉर यू एंड फॉर पीपल सेफ्टी। अपना ध्यान रखें, अपने आस पास वालों का ध्यान रखें, अपनी तबीयत का ध्यान ज़रूर रखें। फ़िलहाल के लिए आपको अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी को देनी होगी इजाज़त। जल्द मुलाकात होती है आपसे। खुश रहिएगा, सबको खुश रखिएगा। जाऊँ, जाने दीजिए, मिलते हैं जल्दी आपसे। बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, 6 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्तपोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर सुरक्षा कवच लगाने के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भारतीय रेलवे ने गुजरात के भावनगर पारा यार्ड पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 125 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी गई है। नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी बंद करने का आदेश दिया है। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3925 लोग लापता हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष 2019 तक राज्य को पूरी तरह से अवैध मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपके आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। और ये दिल्ली का मौसम बहुत ही सुहावना, बहुत ही प्यारा हो गया। और वो कहते हैं ना कहीं जो मीठी मीठी ठंड है ना, वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। आप कहेंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं जी, अगर आप शाम के वक्त आराम से घूम रहे हो ना, जल्दबाजी में ना हो, आपाधापी में ना हो, तो आप वो महसूस कर सकते हैं। और शाम की ना सही तो आप सुबह की तो महसूस कर सकते हैं। 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं ना, बिल्कुल उठ जाते होंगे। ऑफिस जो जाना है, अपने काम पर जो जाना है, स्कूल में जो जाना है, बहुत सारी ऐसी व्यस्त जगह हैं जहाँ पर आपको जाना होता है अपने दिन की शुरुआत करने के बाद। तो वहाँ जाइए और आप देखिएगा, जब आप एक जर्नी पर निकलेंगे, आप जिस भी तरह से रास्ते में तैयार होकर अपनी मंजिल की ओर निकलेंगे, आपको एहसास होगा कि हाँ, उस हल्की हल्की भीनी भीनी ठंडक ने जो है वो कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी है। और वैसे भी अगर घर में कहा जाए तो जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, दादी नानी कहा करती थी अक्सर कि जन्माष्टमी से एक मुट्ठी जाड़ा जो है वो आ जाता है। तो अभी जन्माष्टमी कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो उसके बाद जो ठंडक है वो अपने आप हमारे घरों तक, हम तक पहुँच ही जाएगी। तो बस थोड़ा सा कुछ और वक्त और है ये पसीने बहाने का, बहा लीजिए, सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और अपना ध्यान जरूर रखा कीजिए। फिलहाल इतनी

बनाना चाहें तो आप उस फिल्म का नाम क्या रखेंगे और क्यों, ये आपको हमें बताना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। छोटा सा समय मैं आपको ज़रूर दूंगी। हाँ, म्यूज़िक ब्रेक यहाँ पर लेंगे और उसके आप उसे सुनते सुनते एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ में सोच सकते हैं कि क्या नाम देना चाहेंगे आप उस फिल्म को और क्यों। 9868107070 पर बता दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए।

0: देखिए, आपने सुन लिया है ना कि मेरे सवालों का जवाब दो कि अगर आपके ऊपर कोई फिल्म आप बनाना चाहें तो उस फिल्म का नाम आप क्या रखेंगे, आपको मुझे बताना है 9 9 8 6 8 1 0 7 0 7 0 पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आपके पास आपके मैसेजेस के साथ।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

और ये मैसेज हम तक पहुंचा है, मैसेज मसाला मिक्स में ये पहला मैसेज हम तक पहुंचा है कि अभी कहानी बाकी है, ये फिल्म वो बनाना चाहते हैं क्योंकि लाइफ में भी बहुत कुछ है करना है।

है जो कि मैं अभी अपनी फिल्म में नहीं डाल सकता। राकेश वोरा का बुरारी से हमको ये मैसेज आया है, और ये मैसेज है कि सोनी का देवीगढ़ पटियाला से, और वो लिखती मेरी फिल्म का नाम होगा मिस्टर अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि मुझे कोई नहीं समझ सकता है कब क्या करूँगा। वाह भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया नाम है और बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। अगर मैं अपने जीवन पर कोई फिल्म बनाती तो मैं उसका नाम सफ़र रखूँगी, क्योंकि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी ज़्यादा। निधि का प्रयागराज से हमको ये मैसेज आया है। भाई काफ़ी आपने रिसर्च कर रखी है अपने बारे में, अगर फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप क्या बनाना पसंद करेंगे। अगर मुझे अपने पर फिल्म बनाने का मौका मिले तो फिल्म का नाम जुबान बुढ़ा रखूंगा, जवान बुढ़ा रखूंगा, क्योंकि मैं खुद बूढ़ा हूं और बुढ़ापे में बालक नाती जैसा बचपन अनुभव करना चाहता हूं। अनिल शर्मा का सरिता विहार से ये मैसेज आया है। अगर मुझे फिल्म बनाने का मौका मिले तो हम उसका नाम रखेंगे हमारी दास्तान, क्योंकि मेरे और मेरे पति की शादी और हमारी मुलाकात बहुत ही अजीब क्षणों में हुई थी, और बहुत ही मुश्किलों का सामना करके आज हम जिंदगी के उसको पार कर पाए हैं जहां हम अपनी दास्तान सुनाते हैं। मैं नेहा गाजियाबाद से ये मैसेज आया है। वे बहुत ही खूबसूरत और एकदम उतना काफ़ी अच्छा नाम लग रहा है, और कोई भी इस फिल्म को देखना ज़रूर चाहेगा। ये है कि संगीत आप चला रही हैं, हमें पसंद है, फिल्मों का बहुत शौक है, और फिल्म बनाना है तो फिल्म का नाम मिस्टर खिलाड़ी पार्ट वन स्पाई रखूँगा। ये कहीं ना कहीं मुझे कॉपी होकर नाम कैसा, कॉपी जैसा नाम क्यों लग रहा है। राजकुमार का महाराष्ट्र से ये मैसेज आया। वैसे स्पाई जो आपने जोड़ दिया ना, उससे कहीं ना कहीं इस नाम में जान आ गई है। और बॉलीवुड वालों को फिल्मों के नाम नहीं आ रहे हैं, हम सब जितने भी सुनने वाले हैं अपनी अपनी बात रखेंगे और जवाब भी देंगे, कहीं ना कहीं उनका नाम कुछ और फिल्मी दुनिया वाले नाम रख लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, हम समझ नहीं पाए आपकी बात। मैं अपने ऊपर इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वाली फिल्म बनाना चाहूँगा, और अपने ऊपर मैं रखूँगा माई नेम इज़ राम, जो कि दिल्ली ग्रेटर कैलाश वन से है, पर मैं अभी भी बहुत कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं वो भी हमें बता दीजिए। और ये अगर मुझे फ़िल्म बनाने का मौका मिले तो फिल्म का नाम होगा मायूसी के पल, मेरे पल भी ऐसे ही गुजर रहे हैं। गुन्नौर से आदिल कमीर तस्दीक का ये मैसेज आया। भाई ऐसा मत कहिए, कुछ पल गुजर रहे हैं ना, उसके अलावा जो पल हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे, यादगार होंगे। अगर आप फिल्म ऐसी बनाएंगे, सोच ऐसी रखेंगे तो सोचिए जीवन में सब कुछ ऐसा ही बीतेगा, लेकिन ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है। ख्वाब और हकीकत, यदि मैं कोई फिल्म बनाता हूँ तो उस फिल्म का नाम ख्वाब और हकीकत रखूँगा, क्योंकि मैंने बचपन में स्टूडेंट लाइफ में जो ख्वाब देखे थे उसे अपने दम पर पूरी कड़ी मेहनत के साथ पूरा किया और कामयाबी भी मिली। हीरामणि वर्मा का छत्तीसगढ़ से ये मैसेज आया। भाई बहुत ही खूबसूरत बात है ये। और ये है कि प्रदीप का, वैसे तो ये शांत रहता है लेकिन जब से इसे कोई पंगा लेता है तब ये सनी देओल बन जाता है, 2.5 किलो का हाथ, शायद इस मूवी का रखना चाहते हैं। ये है आओ चुगली करें, यही होगा मेरी फिल्म का नाम। मैंने अक्सर देखा है जहां चार लोग मिलते हैं वह अन्य की निंदा बुराई शुरू कर देते हैं, ये टॉपिक हिट रहेगा। देहरादून से आलोक पवार और मिनी का ये मैसेज आया। चलिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम जो है मुझे इस समय आपसे मिल रहे हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि आप एकदम खुलकर, दिल खोलकर अपने जो जवाब हैं हम तक पहुँचा रहे हैं, क्या कुछ आप चाहते हैं क्या कुछ नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी भेजते रहिए अपनी बातें मुझे तक, 9868107070 पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी।

0: होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय, गजब का स्वाद।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। अगर आप पर कोई फिल्म बने तो आप उसका नाम क्या रखेंगे और क्यों, बता देना है 9868107070 पर। मुक्ति को है आपके मैसेजेस का इंतजार। प्रोफेसर AK टंडन ने हमें मैसेज भेजा है कि 42 साल की उनकी एज है और वो प्रोफेसर रह चुके हैं। 55 साल से अलग अलग कॉलेज में अध्यापन कार्य उन्होंने किया है और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, इसीलिए अगर उन पर फिल्म बने तो वो उसका नाम रखेंगे एज इज मेयरली अ नंबर। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा नाम आपने सोचा है। और ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से। हमारे ऊपर अगर कोई फिल्म बने तो उसका नाम होना चाहिए जिंदगी का सफ़र, क्योंकि जिंदगी का सफ़र है ये। कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। और ये है नरेंद्र सोनी का पटियाला से मैसेज है और वो लिखते हैं कि अगर उन पर फिल्म बनेगी। नरेंद्र सोनी का जो मैसेज है, उनका फिल्म जो उन्होंने लिखा था ना, मिस्टर अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि मुझे कोई और नहीं समझ सकता मैं कब क्या करूँगा। तो उन्होंने भेजा है कि आपने नाम नहीं पढ़ा। जी भाई, नरेंद्र सोनी जी नाम पढ़ दिया है हमने आपका। जोया का मैसेज है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जीते रहो, मज़े करो, लेकिन अगर आपकी फ़िल्म का नाम है ये या फिर किस बात पर आपने ये लिखा। एक लंबा सा मैसेज हम तक भेजा है भाई, आप हमें ये बताइए कि फ़िल्म का नाम आपका क्या होगा। थोड़ा सा शॉर्ट में बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। अगर मुझे मौका मिले तो अपनी फ़िल्म का नाम संघर्ष रखूँगा, ऐसा क्योंकि मैं अपने संघर्ष से बहुत क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने संघर्ष से बहुत गुजरा हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन की दास्तान इस फिल्म के माध्यम से बताना चाहूँगा। सोनू का बिजनौर से ये मैसेज आया है, भाई बहुत ही खूबसूरत बात। मैं युवराज चौहान मध्य प्रदेश से और मैं किसान हूँ, क्या करूँ, बस मेरे को सॉन्ग सुनवा दीजिए। और बस उनके सॉन्ग सुनने का है। फिल्म का नाम होगा भगवान होगा, ठीक है। और ये है मैसेज हमारे पास, मैं अपनी मूवी का नाम मदन रखूँगा, बिकॉज एक बार प्रोड्यूसर सुभाष घई ने अमिताभ के साथ मुहूर्त किया बट बनाई नहीं, मैं उसे बनाऊँगा। स्टोरी है मेरे पास जर्मनी से, सनी कपूर। वाह भाई क्या बात है, कहाँ कहाँ से ये मैसेज का जो मैसेज आ रहे हैं और फिल्म बनाने का, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जोश जो है आप में बढ़ चढ़ कर आगे आ गया है। मैं नाम रखूँगा दूँगा क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझसे शादी करोगी या नाम रख दूँगा। ये तो है, नाम उसे शादी करोगी ये नाम रख दोगे, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं। इसमें सलमान को बहुत गुस्सा आता था और मैं भी वही किरदार निभाऊंगा, मैं तो मुझसे शादी करोगी या नाम रख दूंगा। समझ नहीं आ रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। फिल्म का नाम ही इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि स्क्रीन पर जैसे ही दिखे लोग फिल्म देखने ज़रूर जाएं। मैं अपने नाम पर फिल्म सिविक सेंस डिसिप्लिन यही फिल्म का नाम रखूंगा और मैं इस फिल्म में सभी रोज़मर्रा के कामों को ईमानदारी से करने का फिल्मांकन करूंगा। जैसे किसी भी काम को लेना तो पूरी जिम्मेदारी से पूरा करना, कहीं पर भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान देना, कोई व्यक्ति गंदगी कर रहा है तो उसे रोकना और उसे समझाना। मनीष गोट का मैसेज है जिला मध्य प्रदेश राजगढ़ से। और ये मैसेज हम तक आया है, कुछ मैसेज हम तक पूरे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। ये मैसेज है, अगर मुझे अपने जीवन पर फिल्म बनाने का मौका मिला तो मैं अपनी फिल्म का नाम रखूंगा दरिया दिल, क्योंकि मैं हर किसी के लिए बहुत दरिया दिल इंसान हूँ। मैं किसी की भी कोई परेशानी नहीं देख सकता हूँ, मदद के लिए सामने आ जाता हूँ। वाह भाई क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है आपकी। ये मोहम्मद फुरकान का मैसेज हम तक पहुँचा है। तो चलिए आप भी बताते रहिए कि आप अपनी ज़िंदगी पर अगर फिल्म बनाएं तो उस मूवी का नाम क्या होगा और क्यों होगा। और हमारे साथ जुड़ जाइए इस दास्तान में, इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये अपनी गति से चल रहा है और जब तक आप

के मैसेजेस आ जाएंगे मैं ले लूंगी, लेकिन 7 बजे से पहले पहले उसके बाद मैं आपके मैसेजेस नहीं ले पाऊंगी। तो शिकायतों का दौर थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि शिकायतें और कहते हैं ना, शिकायतें और जो तारीफ़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं एक जगह विराम लग ही जाता है। तो उसी तरीके से शिकायतों पर भी विराम ज़रूर आप लगा सकते हैं। फिलहाल ये सॉन्ग आपके लिए है।

जी आप भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं और आप ही के साथ के साथ ये जो कारवां आगे बढ़ता और बेहद खूबसूरत हो जाता है, तो हमारे साथ रहिए इस कारवां में, क्योंकि आपके होने से ही हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे ही और पहुंच जाते ही हैं। 9868107070 अगर आप अभी अभी हमें सुन रहे हैं, ट्यून इन किया है, तो अगर आप अपने ऊपर कोई फिल्म बनाते हैं तो इस फिल्म का नाम क्या होगा बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजू दोस्त मुक्ति सैनी। आई वुड लाइक टू से दैट इफ अ फिल्म इज made on my life, I would like to give it to the name Mr. Happy because I am a blind person but I am still very happy and I want others to get inspired by my story. Side by side people also say that I make everyone happy. देखिए कितनी inspiring चीज है जो हम तक पहुंची है और ये message है जीवन चलने का नाम क्योंकि ये जिंदगी कहीं भी रुकती नहीं है, चलती ही रहती है। नीलम स्वाति का किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से ये मैसेज आया है और ये बलवंत सिंह चौहान का विलेज टिहरी गढ़वाल से उत्तराखंड से मैसेज आया है। प्रोग्राम सुन रहे हैं लेकिन लेकिन पिक्चर का नाम क्या होगा हम तो वो जानना चाहते हैं, वो बताइए। अगर आप हमें सुन रहे हैं इतनी दूर से तो आपका बेहद दिल से शुक्रिया। जीवन पर फिल्म बनाने का अवसर मिले तो मैं अपनी फिल्म का नाम रखूंगा राही मतवाला। भाई बहुत ही खूबसूरत नाम। भेरू राल का मैसेज हमें आया है मध्य प्रदेश उज्जैन से और यह है संगीता का मैसेज। यदि मेरे नाम से मूवी बनी तो उसका नाम होगा हनी, तो हनी है तुम बनी है, मेरा निक नेम हनी है। वाह भाई क्या बात है, आप है तो पैसा है। देखिए आपकी फिल्म देखने ना बहुत से लोग आएंगे, भाई ऐसा क्या है हनी में जो इतना पैसा है। अगर हम पर फिल्म बनी तो फिल्म का नाम रखूंगा जिंदगी अनमोल है सही इस्तेमाल करो। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह का मैसेज हम तक पहुँचा है। भाई खूबसूरत खूबसूरत नाम आपने सोच के रखे। मोहम्मद इम्तियाज का न्यू दिल्ली से मैसेज है जिंदगी बहुत जिंदा भूत। फिल्म का नाम रखूंगा क्योंकि मैं जिंदा हूँ ये मेरे दोस्तों और परिवारों को नहीं मालूम, क्योंकि जब से माता पिताजी की डेथ हुई है तो परिवार में सभी ने मुझे इग्नोर करना चालू कर दिया, इसलिए मैं अपने परिवार पे इस फिल्म को बनाना चाहता हूँ। नहीं जी आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा, आप सबके साथ हैं और बहुत ही बखूबी सबके साथ हैं, खुशी के साथ आपके साथ हैं। ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अकेले हैं, किसी के होने ना होने से हम अकेले या अपने को ये नहीं महसूस कर सकते कि हमारे साथ सब है। हम अकेले नहीं होते, हम हमेशा अपने साथ हैं, तो हम दुकेले हैं। हिमांशु राणा का मेरठ से ये मैसेज आया है छुपा रुस्तम। क्या बात है, क्या कुछ ऐसी दास्तान है, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने छिपा के रखी हुई है। आप भी भेज सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत मैसेज। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक मेरे पास है, मैं चाहती हूँ कि हम और आप मिलकर खूबसूरती के साथ उसे सने। इस शाम में इस तरीके की जो सॉन्ग्स जब सुनते हैं ना तो मूड ना कुछ अलग ही हमें ले जाता है और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक इस समय हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, इस पल में चाहते हैं, अपने को आराम देना चाहते हैं।

0: हाँ, बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, आप खुश रहना चाहिए, कोई आपके साथ हो ना हो, और अगर कोई आपके साथ है ना, तो बस उस पल को जी लीजिए। अगले ही पल क्या होगा आप नहीं जानते, आप नहीं समझ सकते। तो फिर इसी खुशी के साथ, इसी प्यारी सी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेहनत के रंग, कैलाश शर्मा का गुरुग्राम से ये मैसेज आया है। वही बहुत खूबसूरत मस्त रहो शैलजा का नीमराणा से ये मैसेज आया है। अच्छा है ना, और ये है खामखा, क्योंकि मेरी लाइफ में सब कुछ खामखा ही होता है। विश्वास का ये मैसेज हम तक पहुंचा है। और ये है कपिल हेयर फ्रॉम तंपा, और वो लिखते हैं कि अपनी जर्नी पे लिखना चाहेंगे, द नेम ऑफ माय फिल्म वुड बी जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। भाई बहुत ही प्यारा नाम है आपका फिल्म का, और ये है फिल्म का नाम रखूँगा मैं दीवाना हूँ क्योंकि मैं किसी के लिए दीवाना हूँ। कृष्ण इंदा का मैसेज हम तक पहुंचा है नागौर राजस्थान से। भाई नागौर का जो घेवर है ना, वो बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब इतना यमी होता है ना कि क्या कहें। भाई सावन में अगर घेवर नहीं खाया तो फिर क्या खाया। और ये है सोनिया शर्मा का चंडीगढ़ से मैसेज, लेकिन आप फिल्म का नाम तो आपने बताया ही नहीं। मेरी मूवी का नाम होगा जिंदगी मिलेगी क्या दोबारा, अच्छे से जियो, क्या पता कल हो ना हो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। भाई इतनी सारी फिल्में आप बनाएंगे, ये पूरी ही फिल्म का एक नाम है। अगर एक नाम है तो भाई कोई इस मूवी को नहीं देखा, नाम ही इतना बड़ा है तो सोचिए फिल्म कितनी बड़ी होगी। राखी का मैसेज हमें आया है अजमेर से, किशनगढ़ से ये हमको मैसेज पहुंचा है। और ये मैसेज आया है, एक मैसेज हम तक पहुंचा है, लेकिन आपने यही नहीं लिखा है ना कि पिक्चर का नाम क्या होगा। बाकी सारी बातें आप लिख देते हैं दिल खोल कर, लेकिन आप ये तो बताते ही नहीं है कि जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जिंदगी है खुलकर जियो, बिल्कुल जिंदगी है, एक जिंदगी है, या फिर आप सोच रहे हैं कि हजार जिंदगी आपको मिलेगी अगर इसी कश्मकश में आप रहेंगे ना, तो फिर कुछ हाथ लगेगा और कुछ शायद हाथ ना भी लगे। तो इस सोच के साथ, इस कश्मकश के साथ अगर हम अपनी जिंदगी को जीते रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पीछे छोड़ आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिंदगी खुलकर जीनी है, जिंदगी को खुशी के साथ जीना है, या फिर जिंदगी में सिर्फ अपने आप को परेशान कर कर जीना है। मुझे आपकी बातों से क्यों ऐसा लग रहा है कि आप जिंदगी से कहीं परेशान हो चुके हैं। मेरी जिंदगी का नाम होगा परेशानी खत्म नहीं होती। मैं कह रही हूँ ना, आपके मैसेज देखकर ऐसा लग रहा है कि परेशानी खत्म नहीं होती। भाई देखिए, परेशानियां खत्म हो जाएं, लेकिन क्या हम परेशानियों को खत्म होने देते हैं? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। हम परेशानियों को खुद से नहीं छोड़ना चाहते, बस ना किसी चीज का सॉल्यूशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है मेरे दोस्त। तो आप सोचिए मेरी फिल्म का नाम होगा कि नाम में क्या रखा है, क्या वाकई नाम में कुछ है, आप ही बताइए। देखिए अगर आपकी फिल्म का नाम है और आप रखना चाहते हैं तो कोई ना कोई इसमें बात होगी। कहीं ना कहीं आप इस दौर से गुजर चुके हैं कि क्या फिल्म में कोई नाम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई कश्मकश तो आपके साथ हुई होगी इस बात को लेकर, इसलिए आप ये नाम रखना चाहते हैं। तो चलिए हमें बताइए, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं कब? अभी नहीं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 8 बजे प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में, क्योंकि अभी तो मेरे को जाना होगा, क्योंकि ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए है। मोरी गेट से मैसेज आया है कन्हैया लाल का, शिल्पा रानी का, ये लिखते हैं कि तेरे चेहरे पर अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा, और हमारा संदेश भी शामिल कर लीजिए, फिल्म का नाम बता दीजिए, हम आपका संदेश भी ज़रूर ज़रूर ज़रूर शामिल करेंगे। भाई हमें आपसे क्या ही इशू हो सकता है, अगर आपने हमें कुछ भेजा है तो हम आपके अपनों तक वो बात ज़रूर पहुँचाएँगे। फ़िलहाल एक ज़रूरी बात आपके लिए, और उसके बाद एक ब्यूटीफुल ट्रैक।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम

0: सिर्फ ऐसे अंदर से आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है,
1: ठीक है।
0: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अच्छा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: सावधान, आपका लालच ही साइबर अपराधियों की ताकत है। कैशबैक पाओ, क्लिक करो पैसे कमाओ, रेट करो पैसे कमाओ, शेयर मार्केट में पैसे बनाओ, आईपीओ अलॉटमेंट कंफर्म पाओ, महंगी चीजें सस्ते में पाओ, तत्काल लोन पाओ, ऐसे दावों के झांसे में ना आए। साइबर अपराधियों से सावधान रहें।
1: शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
2: गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: Welcome back to the Delhi studios of FM Rainbow 102.6 MHz. You are listening to US for it, a program of requested music. Thank you so much, dear listeners, for sending us such wonderful request, and this is brightening up everybody's evening today. The next one is from Nidhi in Panchkula, and she writes, "Dear RJ, your soothing voice and infectious energy always make the airwaves brighter, sending you a lot of happy vibes and smiles. Thank you very much, Nidhi from Panchkula." And she asked me to play a song by Taylor Swift, adding a little Taylor magic to make the evening even more special. Of course, a request program cannot be complete without a track by Taylor Swift, isn't it? There are Swifties all over. So Nidhi in Panchkula, here's the track you asked for.

नमस्कार, 8 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सभी देशों से आतंकवाद के वित्तपोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूर्ण तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया है। भारतीय रेलवे ने गुजरात के भावनगर पारा यार्ड पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 125 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की आपूर्ति की जा रही है। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,925 लोग लापता हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के नवन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल रायपुर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। ईस्ट जोन में सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ मुकाबले के तीसरे दिन 4 विकेट से जीत दर्ज की है। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं हूँ आपके साथ आपके आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में। म्यूजिक की मस्ती रहेगी ठीक 9 बजे तक आप तक, और नॉन स्टॉप हिट्स आपके लिए रहेंगे, और कुछ खास प्लेलिस्ट है आज की, तो आप जरूर जुड़ कर रहिए यहाँ पर, क्योंकि बैक टू बैक सॉन्ग्स का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन और भी बहुत कुछ खास है, हमारी ज्ञानवर्धक बातों का सिलसिला भी होने वाला है। फिलहाल मौसम जो है बहुत ही खूबसूरत हो चुका है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल लाल हो चुके हैं, कहीं कहीं बरसात भी हो रही होगी, तो बहुत ही सुहावना मौसम। तो ये प्यारे से गीत जो हैं आपको, कहीं अगर ट्रैफिक जैम में भी आप हैं, कहीं फंस गए हैं, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो बस इनकी वॉल्यूम थोड़ी सी अप कर लीजिए और फिर देखिए आप कितनी ताजगी, कितना सुकून जो है महसूस करेंगे। देखिए सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, बस नज़रिए का फ़र्क होना चाहिए, दूसरी साइड भी देख लेना चाहिए, और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पे जाइए और वहाँ से हमारे साथ जुड़ जाइए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

0: बिल्कुल, दिल को गाने दीजिए, एकदम झूमने दीजिए और आप भी झूमते जाइए। दिमाग जो कच कच कच कच आपका चला जा रहा है ना, कहीं शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, इसे थोड़ा सा विराम दीजिए क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और जब अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा दिमाग होगा, अच्छा दिल होगा और फिर आप भी अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छी चीज़ें वो सब कर पाएंगे जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं। तो अपना खास ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक्स के साथ।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Mangal Bhavana, Mangal Hari.
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: जो स्टील देश के रेलवेज

0: और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: बेलिसिमा।

0: कि अगर चाहते भी है ना तो कह देना चाहिए, इतना तो तरसाना नहीं चाहिए। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिल्कुल आप निर्भर हो चुके हैं म्यूजिक मस्ती पर, और जिम जाना और एक्सरसाइज करना या फिर वॉक पर जाना आपने छोड़ दिया। देखिए ऐसी चीटिंग ना बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब आप मौसम को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि बहुत गर्मी है, उमस है, पसीना आता है। देखिए सबसे अच्छा टाइम ना यही होता है। वैसे अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हैं ना तो देखिए जिम में जाइए या फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं ना, मौसम का वैसे उसे ज़्यादा लेना देना नहीं। जितना पसीना अगर आपको आएगा तो उतना ही बेहतर भी है, और अगर ज़्यादा पसीना आपको आ रहा है तो ORS आप पी सकते हैं, इलेक्ट्रोल आप पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके BP को कंट्रोल रखेंगी और कहीं ना कहीं आपको भी कंट्रोल रखेंगी। लेकिन अगर आपने इन तीनों में से कोई चीज़ छोड़ दी ना तो वो आपके लिए बहुत ही डिसबैलेंस हो जाएगी लाइफ में। तो लाइफ में बैलेंस होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी नहीं कर सकते, जिम में खर्चा नहीं कर सकते, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं अगर योग की, मेडिटेशन की, जुम्बा की या एरोबिक्स जो भी होते हैं, तो कम से कम वॉक पर तो निकल सकते हैं। ये तो कोशिश आप कर सकते हैं। घर में जगह नहीं है, आसपास जगह नहीं है, स्ट्रीट है, गलियां हैं, उनमें चले जाइए, ये कुछ नहीं तो छत पे चले जाइए। देखिए अगर आप चाहेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। बहाने ढूंढने के लिए तो फिर इतने बहाने हैं ना कि मैं क्या बताऊं, चार बहाने तो मैं ही शायद आपको बता दूंगी। तो बहानों में नहीं पड़ना है, आगे बढ़ना है और आगे अच्छी चीजें करनी है। फिलहाल ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है मेरे पास आपके लिए।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: इसी उम्मीद के साथ मुझे ये पता है कि आपको प्रोग्राम जो है पसंद आ रहे होंगे। बैक टू बैक सॉन्ग्स का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है और लगातार मैं बैक टू बैक सॉन्ग्स आपके लिए प्ले कर रही हूँ, क्योंकि एक रिदम जब बन जाती है ना तो सुनने का मजा ही कुछ और हो जाता है। तो ये रिदम मैं बिल्कुल भी आपकी नहीं तोड़ना चाहती थी, मैं सोचती थी मुक्ति सुकून से सुनने दो ना, और सुनने में जो मजा आता है ना कहीं ये जो गाने हैं ना इन पे थिरकने में भी बहुत मजा आता है। म्यूजिक की मस्ती जब होती है ना, थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लिया जाए ना तो पैर खुद ब खुद जो है वो डांस करने के लिए उतारू हो ही जाते हैं। अगर आप कहीं बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं तो शायद आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, या फिर हाथ या कह सकते हैं ना कि भाई गर्दन को हिला सकते हैं, कहीं ना कहीं मूड तो बन ही जाता है चीज़ों को लेकर। तो यही कोशिश रहती है म्यूजिक मस्ती में कि म्यूजिक की मस्ती में आप इतना डूब जाएं कि जो भी आपको दुख परेशानी वो है कुछ देर के लिए ही सही थोड़ा सा सुकून तो देकर जाती है। और जब हम उन चीज़ों को भूलना चाहते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बेहद तकलीफ लेकर आती है, तो उनके सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे सामने आते हैं या उससे बेहतर पार पाने की चीज़ें भी हम तक पहुँचती हैं। आप यकीन माने या ना माने ऐसा होता ज़रूर है। फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा ब्रेक। जिंदगी में भी बेहद जरूरी है कहीं ना कहीं जब आप अटक जाए, आपको लगे कि कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, तो छोटा सा ब्रेक लीजिए, अपने काम से ब्रेक लीजिए, अपनी उन बातों से ब्रेक लीजिए, या फिर अपने मोबाइल से ब्रेक लीजिए। जो रेगुलर वाली जिंदगी है ना उसे ब्रेक लेना चाहिए और फिर थोड़ा सा समय अपने साथ, अपने फैमिली के साथ बिताना चाहिए, और फिर हमें पता लगता है कि क्या कुछ है हमारे पास जिंदगी में जिसके चलते हम उनके साथ आगे तक बढ़ सकते हैं। वैसे ज्ञानवर्धक बातों का सिलसिला जारी रहता है प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में मुक्ति के साथ, और मुक्ति रहेगी आपके साथ ठीक 9 बजे तक ब्यूटीफुल ट्रैक्स लेकर। तो कहीं फिर और क्यों जाना,
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है,
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
9: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
10: मंगल भवन मंगल हारी,
11: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: तो दोस्तों फिलहाल वक्त हो चला है मेरे जाने का। आप कहेंगे भाई मुक्ति इतनी जल्दी, इसीलिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है मेरे पास और मैं चाहती हूँ कि इसे आप पूरा सुनिए और सुनकर आप खुश ना हो जाए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना प्यारा सॉन्ग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और आखिरी सॉन्ग मस्त हो ना तो फिर पूरी यादों का जो पिटारा है ना वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। मैं आपको आगे बता देती हूँ आने वाले प्रोग्रामों की रूपरेखा क्या रहेगी। अब से आप कुछ ही देर में यानी कि 9 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही हिना मौज के साथ, और उसके बाद प्रोग्राम रहेगा म्यूजिक मिक्स लिपिका दास के साथ, और फिर रंगे महफिल हिना मौज के साथ। तो बेहतरीन प्रोग्रामों का सिलसिला रूपरेखा आपके लिए तैयार की गई है, तो आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। फिलहाल अपनी आरजू दोस्त मुक्ति सैनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

9 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सभी सदस्य देशों से

आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मामले में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया है। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। कांधा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की आपूर्ति की जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में कल आयोजित होने वाले मोटर कार के रिहर्सल के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया है कि कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1000 को पार कर गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार लगातार हो रही बारिश के बीच राहत और बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल रायपुर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 9:03, आदाब कबूल कीजिए हिना मौज का प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर हाजिर खिदमत हूँ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कहते हैं कि रिश्तों का एतबार वफाओं का इंतजार, रिश्तों का एतबार वफाओं का इंतजार, हम भी चिराग लेके हवाओं में आ गए। तो जी वेलकम टू द शो, आपकी याद आती रही। और जहाँ तक रही रिश्तों की बात, एक और हम जब रिश्तों की डोर से बंधते हैं ना, तो ये खूबसूरत एहसास होता है कि ये रिश्ते हमारे लिए कितने अहम और कितने बेहतरीन हैं, इनके बग़ैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। तो जी बात तो आज होगी रिश्तों से मुतालिक, लेकिन एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता जो हमारी ज़िंदगी में हर रिश्ते में जिसका जज्बा शामिल है, मौजूद है, और वो है मोहब्बत का जज्बा। मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो हमें ऊपर वाले की नेमत के तौर पे मिला है, और ये नेमत हमारे लिए कितनी खूबसूरत, कितनी कारगर है, ये हमें जानना है, पहचानना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपने आसपास के लोगों के साथ अपने जुड़े हुए एहसास जज्बात को महसूस कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये मोहब्बत का रिश्ता कहाँ और कैसे, किस तरह जुड़ा हुआ है। मोहब्बत भरे रिश्ते हमें संभालते हैं दोस्तों, टूटने नहीं देते, और ये रिश्ते इतने अहम बन जाते हैं जिनके बग़ैर हमारा ज़िंदगी में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हीं रिश्तों पर बात करेंगे जो एक मोहब्बत भरे दिल के साथ हम जोड़ते हैं, ऊपर वाला जोड़ कर भेजता है और हमारे साथ ता उम्र चलते हैं। तो बने रहिए, ये खूबसूरत लफ्ज़ जो मोहब्बत के हैं, ढाई अक्षर जो प्रेम के हैं, उन पर बात करेंगे आपकी याद आती रही प्रोग्राम के तहत आज आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। बने रहिए मेरे यानी हिना मौज के साथ।

बिल्कुल ढाई अक्षर प्रेम के, यही है सार पूरी जिंदगी का, हर रिश्ते का, हर एहसास जज्बात का। वो कहते हैं ना कि दोस्तों जहाँ से गुजरता कौन है, दोस्तों जहाँ से गुजरता कौन है, इश्क हो जाता है करता कौन है। दोस्तों जिंदगी वैसे तो हमें बहुत सी चीज़ें और रिश्ते विरासत में अता करती है, और उन रिश्तों में अमूमन जो रिश्ते शामिल हैं वो हैं जैसे दोस्त का रिश्ता, आपके परिवार के रिश्ते, आपको मिली हुई खुशियाँ और कुछ ऐसी यादें जो उम्र भर हमारे साथ चलती हैं। लेकिन इन सब को खूबसूरत बनाने वाली चीज़ तो मोहब्बत है। जी हाँ, मोहब्बत, जिसको सिर्फ हम समझते हैं कि एक इंसान से प्यार करने का नाम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोहब्बत तो एक ऐसा बेशकीमती और वास्ट तरीके का एहसास है जो हमें अपनेपन का मतलब समझाता है, जो हमें या तो माँ की ममता में मिलता है, पिता की चिंता में झलकता है, भाई बहन की नोकझोंक में भी मिलता है, और दोस्तों की परवाह में दिखता है, और जीवन साथी के साथ निभाए गए हर छोटे बड़े वादे में भी तो नजर आता है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर

0: किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

9:22 हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। बात कर रहे हैं हम एक ऐसे खूबसूरत जज्बे की जिससे हर रिश्ता जुड़ा हुआ है, जो हर रिश्ते की खूबसूरती है। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो दिखलाई नहीं जाती। ये बिल्कुल सही कहा है किसी कहने वाले ने, क्योंकि ये वाकई ऐसी धड़कन है जो सिर्फ समझी और महसूस की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि मोहब्बत एक ऐसी नेमत है जो हमें मिली हुई है और जो बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है? और मोहब्बत है क्या चीज़? मोहब्बत मेरे ख्याल से उदास इंसान से प्यार से दो शब्द कह देना, किसी की परेशानी को बिना पूछे समझ लेना, किसी की गलती को माफ़ कर देना, किसी के दर्द में उसके साथ खड़े रहना और उसकी खुशी में दिल से खुश हो जाना, यही तो मोहब्बत की असली खूबसूरती है। और हम जाने मोहब्बत को क्या समझ बैठे हैं। हमें लगता है कि सिर्फ एक इंसान से जब आपको इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो मोहब्बत सिर्फ वहीं तक महदूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसे मोह के धागे हैं जो कहाँ, कब और किसके साथ दिल से जुड़ जाए पता ही नहीं चलता।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

9:34 और 52 सेकेंड प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही, यादों का दरीचा खुला हुआ है और एक के बाद एक सुहानी हवा के झोंके यादों की मानिंद हमारी आंखों से टकरा रहे हैं। आकाशवाणी FM रेनबो पर हिना मौज के साथ हैं आप। दोस्तों बात चल रही है मोहब्बत की, तो मोहब्बत हमें कहीं ना कहीं ये सिखाती है दोस्तों कि रिश्ते सिर्फ और सिर्फ शब्दों से नहीं चलते, बल्कि इनकी बुनियाद रखी होती है यकीन, सम्मान और एहसास पे। और अगर ये चीज़ें मोहब्बत में शामिल नहीं हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन मोहब्बत को पाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे निभाना। ये चीज़ लोग भूल जाते हैं क्योंकि सच्ची मोहब्बत बड़े बड़े वादों की मोहताज तो नहीं होती, वो तो छोटी छोटी बातों में दिखाई देती है। किसी का एक फ़ोन कॉल आ जाना, आपका हालचाल पूछ लेना, इंतज़ार करना और मुश्किल समय में खड़े रहना। दोस्तों कहते हैं

दौलत इंसान को सुख सुविधाएं तो दे सकती है, लेकिन सुकून और इत्मीनान की अलामत तो क्या है? ये मोहब्बत। ये मोहब्बत का जज्बा, सच्ची मोहब्बत। और एक ऐसा इंसान भी अगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत लकी हैं और ये मोहब्बत की नेमत आपके पास मौजूद है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिना मौज के साथ हैं आप। प्रोग्राम आपकी याद आती रही चल रहा है और ये प्रोग्राम हम आपको बहुत सारी चीज़ों से मुतारिफ करवाने के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि रिश्ते हमारी ज़िंदगी का एक अहम पहलू हैं जिनके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। इन्हीं रिश्तों से जुड़ी कुछ अहम बातों पर नज़र हम डालते हैं इस प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं कि आपकी समातों तक ये पहुँच कर कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में अच्छी तौर पर एक अच्छी सनत पैदा करने की कोशिश में ज़रूर कारगर साबित होते होंगे हमारे ये खूबसूरत से छोटे छोटे से टिप्स जो हम अपनी समझ से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मोहब्बत की बात चल रही थी तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो आपको समझता हो, आपकी परवाह करता हो, आप पर वक्त लगाता हो और हर जगह आपके अच्छे बुरे में खड़ा रहता हो, तो अपनी ज़िंदगी की ये बहुत बड़ी नेमत समझिए जो ऊपर वाले ने आपको दी है। लेकिन मोहब्बत सिर्फ पाने का तो नाम नहीं है ना, मोहब्बत तो देने का नाम है। तो कोशिश कीजिए कि बराबर से रिश्ता निभा सकें ऐसे इंसान के साथ जो आपकी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत और इतनी नायाब चीज़ लेकर शामिल हुआ है, जिसे हम मोहब्बत कहते हैं।

नमस्कार। 52 मिनट और 53 सेकेंड हुए हैं और बहुत कम वक्त रह गया है। बस चलते चलते ये वादा चाहिए आपसे कि आप आज ही अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा सा और प्यार, थोड़ा सा और सम्मान और थोड़ा सा और अपनापन रखेंगे और वक्त भी निकालेंगे इन रिश्तों के लिए जो बहुत नायाब हैं, जिनके बग़ैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। ये हसीन रिश्ते हैं जो हमारी ज़िंदगी को और भी हसीन बनाते हैं, ख़ास तौर पे मोहब्बत से जुड़े हर वो रिश्ते जो हमारी ज़िंदगी में एक माइलस्टोन का काम करते हैं। उन रिश्तों के लिए सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में ऐसा मकाम आप रखिए कि जहाँ पर आपको सिर्फ़ उनके लिए मोहब्बत का एहसास हो, आप मोहब्बत बांटें, मोहब्बत ही उनसे पाएं और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह खुशियों के साथ आगे बढ़ाते रहें, चलते रहें, एक हमसफ़र के तौर पर, एक ऐसे दोस्त के तौर पर, एक ऐसे रिश्ते के तौर पर जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियों का सामान करे। फ़िलहाल एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। 11 बजे आऊँगी रंग महफिल में, रहूँगी आपके साथ। आकाशवाणी FM रेनबो पर बने रहिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

11 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों से आतंकवाद से पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्यवाही और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री की किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है और अफगानिस्तान के साथ 3

टी20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्य भारतीय टीम घोषित। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

आदाब आप सभी को रंगे महफिल के साथ एक बार फिर हिना मौज हाजिर है। समीन बात रंगे महफिल में जैसे कि मौसिकी और शायरी की होती है, जब शायरी मौसिकी के पैराए में जाती है तो और भी हसीन और दिलफरेब हो जाती है और सुनने और पढ़ने वाले के दिल पर यूं असरअंदाज होती है कि जैसे इस वक्त हमारे दिलों पर असरअंदाज हो रही है। ये फिल्मी गज़लें जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगी, क्योंकि ये गज़लें फिल्मों में इसलिए ली जाती थीं क्योंकि ये गज़लें वाकई इंसान के हर एहसास हर जज्बात को बयान करती थीं, और जब इनमें खूबसूरत हसीन मौसिकी शामिल हो जाती थी तो फिर तो कहने ही क्या है, ये फिल्म में बहुत अहम हिस्सा बन जाती थी और फिल्म में इनके बग़ैर ऐसा लगता था कि अगर ये नहीं हुई तो ये नामुकम्मल है। बहरहाल जब शायरी की बात हो तो हम ये कहना ज़रूरी समझते हैं कि सिर्फ अल्फाज को खूबसूरत अंदाज में सजाने का नाम नहीं है शायरी। शायरी तो दिल के उन एहसासात की आवाज़ है दोस्तों, जिन्हें इंसान अक्सर ज़ुबान से कह नहीं पाता। एक आम इंसान के बस की बात नहीं है कि किसी भी एहसास को इतने खूबसूरत लफ्ज़ों के पैराए में बयान करे, और इन्हीं एहसासों जज्बात को एक शायर बहुत ही गहरा एहसास करके बयान करने की ताकत रखता है। ख़ास तौर पे शायरी में जब दर्द का ज़िक्र होता है तो दर्द एक ऐसा गहरा एहसास है जिसको शायरी में बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। शेर है कि आप तो रात सो लिए साहिब, हमने तकिए भिगो लिए साहिब, दर्द की धूल गम की तेज़ हवा, घर का दरवाज़ा खोलिए साहिब।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

11:18:45 हिना मौज के साथ हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबू पर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। इसमें बात चल रही है शायरी की और शायरी से रिलेटेड उस खूबसूरत से एहसास की जो शायरी का हिस्सा कब और कैसे बना, इस पर बात करेंगे। एहसास और जज्बात में लिपटा हुआ ये एहसास दर्द का, सवाल यह है कि आखिर दर्द शायरी का हिस्सा बना कैसे। शायद इसलिए कि इंसान जब खुश होता है तो अपनी खुशी दूसरों के साथ बांट लेता है, लेकिन जब दिल दुखता है, दर्द में होता है, तो वो अक्सर खामोश हो जाता है। इसी खामोशी में पैदा होते हैं कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे लफ्ज़, और यही लफ्ज़ आगे चलकर एक शायर के कलम से जब निकलते हैं तो शेर और गज़ल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दर्द ने शायर को कहीं ना कहीं वो गहराई दी है जहाँ से उसने इंसानी ज़िंदगी को नए अंदाज में देखना शुरू किया। किस तरीके से, कहाँ और कौन कौन से दर्द महसूस होते हैं और इंसान उन दर्द को अपने अंदर इन लफ्ज़ों के ज़रिए कैसे महसूस करता है, इस पर भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एक और प्यारी सी गज़ल आपके लिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर रंगे महफिल में हैं आप हिना मौज के साथ। दोस्तों, बात कर रहे हैं शायरी में दर्द की। किस तरीके से दर्द शायरी का हिस्सा बना और कहां कहां और किस किस तरीके से एक शायर ने दर्द को लेकर शायरी की है। शायर ने जब दर्द की बात की तो दर्द किस किस तरीके से हमारे शायरी में आया और कहां कहां उसका इस्तेमाल हुआ। जुदाई का दर्द हो, मोहब्बत में नाकामी का दर्द हो, किसी अपने की याद हो या फिर ज़िंदगी की कोई तल्ख हकीकत, इन सब ने शायरी को एक नए मायने दिए हैं। जब जब ये एहसास और जज्बात शायरी का मफहूम बने हैं, शायर ने अपने दर्द को सिर्फ अपना नहीं रहने दिया, क्योंकि उसने हर उस दर्द को उठा कर लिखा है जो एक आम इंसान अपने सीने में महसूस करता है। उसने उसे अल्फाज दिए और उन अल्फाज में, उन लफ्ज़ों में ऐसी सच्चाई पैदा हुई कि पढ़ने और सुनने वाला भी उसमें अपना दर्द महसूस करने लगा। इसीलिए इस तरीके के जो भी अशार होते हैं वो हमें मुतासिर भी करते हैं और हमारे जहनों में कहीं गूंजना भी शुरू कर देते हैं। वो है ना एक शेर के, गूंजूंगी तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, गूंजूंगी तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको भुला सके न तू वो गुफ्तगू हूँ मैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुन रहे हैं आप प्रोग्राम रंगे महफिल। गज़ल मौसिकी का सिलसिला रवा दवा है। उम्मीद करते हैं आज की गज़लें आपको पसंद आ रही होंगी। इस प्रोग्राम में आपके साथ है हिना मौज। दोस्तों, बात चल रही है मोहब्बत और दर्द के रिश्ते से मुतालिक, जो शायरी में पैवस्त होता है। ख़ास तौर पर दर्द का रिश्ता जब जिस तरीके से शायरी में लफ्ज़ों के माने बयान करता है और किस तरीके से हमें एहसास दिलाता है कि ये दर्द सिर्फ एक इंसान का नहीं है, ये दर्द साझा है। हर इंसान कहीं ना कहीं दर्द अपनी ज़िंदगी में महसूस ज़रूर करता है और एक जैसे दर्द भी कभी कभी हर इंसान के साथ ज़िंदगी में होते हैं और गुज़रते हैं। यही वजह है कि कभी किसी शेर में हमें अपनी अधूरी मोहब्बत दिखाई देती है तो कभी किसी गज़ल में अपनी तन्हाई की तस्वीर भी नज़र आती है। दर्द की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है दोस्तों कि वो इंसान को भीतर से यानी अंदर से झकझोरता है, और जब ये दर्द हसास दिल से होकर अल्फाज में उतरता है तो शायरी पैदा होती है, और ऐसी शायरी हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती है

जी हाँ दोस्तों, दर्द के कई पहलू हैं जिन पर नज़र डालने की कोशिश आज है रंगे महफिल में। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि एक आंसू वो बात कह देता है जिसे हज़ार लफ्ज़ भी बयान नहीं कर पाते। यही वजह है कि शायर उसी आंसू को शेर बना देता है, उसी तन्हाई को गज़ल बना देता है और उसी टूटे हुए दिल को आवाज़ दे देता है। इसीलिए कहा जाता है कि शायरी में दर्द सिर्फ उदासी नहीं है, दर्द एहसास की गहराई है और यही गहराई शायरी को असरअंदाज बना देती है। इसीलिए शायद दर्द भरी शायरी पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे शायर हमारे दिल की ही बात कह रहा हो, क्योंकि दर्द भले ही हर इंसान का अपना होता है लेकिन उसका एहसास अक्सर सबका एक जैसा ही होता है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

11:48 हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। कुछ अशार हैं जो आप तक पहुंचाने हैं, क्योंकि दर्द की बात हुई है तो अशार तो बनते हैं। कहते हैं कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जा में उतर जाएगा। वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है, एक झोंका है जो आएगा गुजर जाएगा। वो जब आएगा तो फिर उसकी रफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। मुझको तहजीब के बरजख का बनाया वारिस, जुर्म ये भी मेरे अजदाद के सर जाएगा। आखिर वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, तेरा ये प्यार भी दरिया है उतर जाएगा। वो जब आएगा तो फिर उसकी रफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। इसमें कुछ शेर ऐसे हैं जो आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के एहसास व जज्बात से हर इंसान गुज़रता है और उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे जज्बात हर इंसान की ज़िंदगी में अंगड़ाइयाँ ज़रूर लेते हैं। इन लफ्ज़ों को पढ़कर, इनके मानी समझकर, हमें ये कहीं ना कहीं जहन में ख़्याल ज़रूर आता है कि ये शायर जिसने ये खूबसूरत अल्फाज लिख कर इस गज़ल को तामीर किया, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मसनत पर बैठकर नहीं हुआ, ये हर इंसान के एहसासों जज्बात को छूते हुए गुज़रते हैं ये जब शेर, तो यूँ लगता है कि उसने सोच में हर किसी को शामिल किया होगा।

0: वही बन गए फसाना, मिली खाक में मोहब्बत।
1: धनक धनक मेरे पोरों के ख्वाब कर देगा, वो लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अना परस्त है इतना कि बात से पहले वोट के बंद मेरी हर किताब कर देगा। इन खूबसूरत अशार के साथ हिना मौज आप सबसे रुख्सत तलब करती है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, टेक केयर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की चार दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ पूरे तंत्र के एकजुट होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोधी प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द कराने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कर्स्टन श्नाइडर से मुलाकात की। इसके अलावा भारत में डेटा सेंटर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुगमता पर एक बैठक की। जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कर्स्टन श्नाइडर ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकारी फाइलों और पत्राचार में अधिकारियों की पहचान स्पष्ट करना अनिवार्य किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से दो दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास होगा। एयर मार्शल विवेक हांडे ने भारतीय वायुसेना में महानिदेशक चिकित्सा सेवाओं का पदभार संभाल लिया है। 1995 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर मणिपुर के मुख्य सचिव नियुक्त। कि नेपाल बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1050 हुई। 4000 लोग अभी भी लापता। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को जलवायु परिवर्तन का परिणाम बताते हुए वैश्विक जिम्मेदारी का मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रिनबो पर अब करते हैं आपका स्वागत हमारे अगले कार्यक्रम के लिए जिसका शीर्षक है जीरो आर शो। तो आइए लेते हैं आनंद कुछ खूबसूरत फिल्मी गीतों का जिसमें बहुत से ऐसे गीत भी शामिल हैं जिन्हें सुनकर आपको यकीनन एक पुराना दौर फिर से याद आएगा।

से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी

0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्रोता सुन रहे थे अब तक जीरो आवर शो अर्चना के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोग्राम रहेगा सुहानी रात, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद। उससे पहले सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की 4 दिन की किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हुई। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। CJP ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद प्रस्तावित मार्च वापस लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कार्स्टन श्नाइडर से मुलाकात की। पर्यावरण पर समन्वित प्रयासों को लेकर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कार्स्टन श्नाइडर ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास होगा। एयर मार्शल विवेक हांडे ने भारतीय वायुसेना में महानिदेशक चिकित्सा सेवाओं का पदभार संभाला। 1995 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर मणिपुर के मुख्य सचिव नियुक्त हो गए। यूक्रेन पर हाल में हुए रूसी हमलों में मारे गए 12 लोगों में से एक भारतीय नागरिक भी शामिल। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने के प्रयास तेज। नेपाल बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1050 हुई। 4000 लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आपदा को जलवायु परिवर्तन का परिणाम बताते हुए वैश्विक जिम्मेदारी का विषय उठाया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय,

बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों के मद्देनजर मोटर कारकेड रिहर्सल आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगी। सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और बारखंबा रोड सहित विभिन्न मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित की गई। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर कुछ ही देर में हाजिर होगा सुहानी रात, मेरे यानी रजत के साथ। आप जुड़े रहिए, इसके साथ साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो आप सभी का स्वागत सुहानी रात में मेरे यानी रजत के साथ, बस कुछ ही देर में।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो।

इस खूबसूरत गाने के साथ जिसे कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों ने पहुंचाया आप तक फिल्म बड़ा दिन के मार्फत, और इसी के साथ इस खूबसूरत गीत के साथ हम देना चाहेंगे इस कार्यक्रम को, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम। सुहानी रात आप जुड़े थे, अब कुछ ही देर में यानी समाचारों के बाद एक बार फिर जुड़िएगा हमारे साथ अर्चना के साथ। प्रोग्राम रहेगा भुलाए ना बने, जरूर दीजिएगा साथ, हम हैं आपके साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिन की किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हुई। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोधी प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। सीजेपी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद प्रस्तावित मार्च वापस लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कर्स्टन श्नाइडर से मुलाकात की। पर्यावरण पर समन्वित प्रयासों को लेकर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास होगा। एयर मार्शल विवेक हांडे ने भारतीय वायुसेना में महानिदेशक चिकित्सा सेवा का पदभार संभाला। 1995 के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर मणिपुर के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। यूक्रेन पर हाल में हुए रूसी हमलों में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल। भारतीय दूतावास ने कहा पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जाएगा। नेपाल बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1050 हुई, 4000 लोग अभी भी लापता। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों के मद्देनजर मोटर कार की रिहर्सल आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और बाराखंबा रोड सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारत टीम घोषित। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: आया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मुलायम ना बने में आप थे अर्चना के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6। इससे पहले हम मिडनाइट मेलोडीज का आगाज करें और आपको मध्य रात्रि के लुभावने गीतों से आपको अवगत कराएं, या यूं कहें कि आपको उनके अतराफ भेजें उसका पूरा लुत्फ उठाने के लिए। आइए सुन लेते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिन की किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हुई। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। सीजेपी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद प्रस्तावित मार्च वापस लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कार्स्टन श्नाइडर से मुलाकात की। पर्यावरण पर समन्वित प्रयासों को लेकर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को आज से 2 दिन की यात्रा पर गोवा दौरे पर रवाना किया। जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने का इस गोवा दौरे पर प्रयास रहेगा। एयर मार्शल विवेक हांडे ने भारतीय वायुसेना में महानिदेशक चिकित्सा सेवाएं का पदभार संभाला। 1995 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर मणिपुर के मुख्य सचिव नियुक्त हुए। यूक्रेन पर हाल में हुए रूसी हमलों में मारे गए 12 लोगों में से एक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जाएगा। नेपाल बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1050 हो गई है, 4000 लोग अब भी लापता हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों के मद्देनजर मोटर कारगेट रिहर्सल आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और बारखंबा रोड सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैचों की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम भारत की तरफ से घोषित हुई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। वक्त हो चुका है 3:03 और ये समय अब हमें बता रहा है कि अब आकाशवाणी 102.6 और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप सभी जुड़ेंगे हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज में मेरे यानी रजत के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत, बस कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। फरवरी 2025 में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री बॉट डी वेवर की ये पहली भारत यात्रा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली के ले मेरिडिन होटल में ग्रीन एनर्जी सेमिनार 2026 में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास होगा। यूक्रेन पर हाल में हुए रूसी हमलों में मारे गए 12 लोगों में से एक भारतीय नागरिक भी शामिल। भारतीय दूतावास ने दुख जताया, पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जाएगा। नेपाल बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1050 हुई, 4000 लोग अब भी लापता, तलाशी अभियान जारी। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों के मद्देनजर मोटर कारकेड रिहर्सल आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और बाराखंबा रोड सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा और लेते हैं कुछ सुबह की ऊर्जा से भरे हुए गीतों का आनंद।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

सुबह के 5 बज चुके हैं। कुछ ही देर में प्रस्तुत होगा भक्ति संगीत पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम, हमारा नियमित कार्यक्रम आराधना। लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र अब तक की

मुख्य न्यूज हेडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। फरवरी 2025 में पदभार संभालने के बाद से प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर की ये पहली भारत यात्रा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में ग्रीन एनर्जी सेमिनार 2026 में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने का ये एक प्रयास होगा। यूक्रेन पर हाल में हुए रूसी हमलों में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने इस घटना पर दुख जताया है और पार्थिव शरीर को जल्दी भारत लाए जाने की बात कही है। नेपाल बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1050 हो गई है। 4000 लोग अब भी लापता बताए गए हैं। तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों के मद्देनजर मोटर कार के रिहर्सल आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और बाराखंबा रोड सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैचों की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। थोड़ा सा इंतजार, फिर मिलते हैं कार्यक्रम आराधना में भक्ति संगीत की खूबसूरत, मीठी और भक्तिमयी धुनों के साथ।

0: बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरे तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।